मीडियम वेव 230.98 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 22वीं तिथि, तदनुसार आज है दिनांक 12 मई 2026। प्रातः के 5:57 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में राष्ट्रीय समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: सर फिरोजी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित

0: करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत कार्यक्रम आराधना। आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले करते हैं मातृभूमि की आराधना।

ये देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे नीलम साहनी के गायन स्वर में। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत कार्यक्रम आराधना। आइए इस कड़ी में आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये पहला भक्ति गीत अजीत कड़कड़े के गायन स्वर में।

अजीत करकड़े के गायन स्वर में आप ये भक्ति गीत सुन रहे थे। रचना थी कबीर दास की, संगीत दिया था विलास पाटिल ने। आइए सुनते हैं ये पारंपरिक भक्ति गीत हरिहरण के गायन स्वर में।

एक बात बताओ, माँ कंजक रूप में भी दर्शन देती है, ये बात कभी भुलाना नहीं। कंजकों को खाली हाथ लौटा

कविता पौड़वाल और साथियों के स्वरों में ये भक्ति गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे रवि चोपड़ा, संगीत दिया था सैमुअल पाल ने। अब सुनते हैं अनूप जलोटा का गाया ये अगला भक्ति गीत।

0: अनूप जलोटा के गायन स्वर में आप ये भक्ति रचना सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत कार्यक्रम आराधना का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर और FM बैंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का आलेख है सत्यता। वाचन स्वर हैं जयमाला के।
1: सत्यता अर्थात सत्य बोलना, सत्य का पालन करना और जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी बनाए रखना मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यह केवल एक नैतिक आदर्श नहीं बल्कि समाज और व्यक्ति दोनों के संतुलित विकास की आधारशिला है। सत्यता से ही विश्वास जन्म लेता है और विश्वास से ही मजबूत रिश्ते, स्वस्थ समाज और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण होता है। सत्यता का अर्थ केवल झूठ न बोलना ही नहीं है बल्कि अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में एक रूपता बनाए रखना भी है। जब व्यक्ति जो सोचता है वही कहता है और वही करता है तब वह सच्चा और विश्वसनीय बनता है। ऐसे व्यक्ति पर लोग सहज ही विश्वास करते हैं और उसे सम्मान देते हैं। इतिहास और महापुरुषों के जीवन में सत्यता का विशेष महत्व रहा है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया परंतु अंततः विजय सत्य की ही हुई। सत्य का मार्ग कभी कभी कठिन अवश्य होता है लेकिन यह मन को शांति और आत्मबल प्रदान करता है। जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है वह भीतर से निडर और आत्मविश्वासी होता है। सामाजिक दृष्टि से भी सत्यता अत्यंत आवश्यक है। यदि समाज में लोग असत्य का सहारा लेने लगे तो विश्वास समाप्त हो जाता है और अराजकता फैलने लगती है। व्यापार, शिक्षा, राजनीति और पारिवारिक जीवन में हर क्षेत्र में सत्यता का होना अनिवार्य है। यह सामाजिक समरसता और विकास के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सत्य को ईश्वर का स्वरूप माना गया।

0: सत्य का अनुसरण करने वाला व्यक्ति आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। भारतीय दर्शन में सत्यम वद धर्मम चर का उपदेश दिया गया है, जो जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। आज के आधुनिक युग में जहां प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ बढ़ते जा रहे हैं, सत्यता का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। हमें अपने जीवन में सत्य को अपनाकर न केवल अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना चाहिए, बल्कि समाज में भी सत्य के प्रति जागरूकता फैलाना चाहिए। सत्यता केवल एक नैतिक गुण नहीं, बल्कि जीवन की वह आधारशिला है जिस पर व्यक्ति का चरित्र और समाज का विश्वास टिका होता है। हर संबंध की नींव विश्वास पर टिकी होती है, और विश्वास का अर्थ है सत्य। चाहे वह परिवार हो, मित्रता हो या कार्यस्थल, जहां सत्यता होती है वहां संबंध लंबे समय तक टिकते हैं। एक छोटी सी असत्य बात भी रिश्तों में दरार पैदा कर सकती है। विद्यार्थी जीवन में सत्यता का विशेष महत्व है। नकल, धोखा या गलत तरीके से प्राप्त की गई सफलता स्थायी नहीं होती। जो विद्यार्थी ईमानदारी से मेहनत करता है, वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है और जीवन में आगे बढ़ता है। सत्य बोलना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है जहां असत्य बोलना आसान लगता है, लेकिन सत्य पर टिके रहना ही वास्तविक साहस है। यही साहस व्यक्ति को महान बनाता है। भारतीय संस्कृति में सत्य को सर्वोच्च धर्म माना गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ ही है अंततः सत्य की विजय होती है। सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल बाहरी जीवन में सफल होता है, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी प्राप्त करता है। सत्य केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जिसे हमें रोज अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति सत्य का पालन करे तो समाज में विश्वास, शांति और प्रगति स्वतः स्थापित हो जाएगी। अंततः सत्यता ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को महान बनाती है और समाज को मजबूत। इसलिए हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यही जीवन की सच्ची सफलता का मार्ग है।
1: विचार बिंदु में आज का आलेख था सत्यता। वाचन स्वर थे जयमाला के। आकाशवाणी का यह अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस का गायन। आज के प्रसंग में मुख्य गायन स्वर हैं महेंद्र कपूर के, संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

राजा प्रताप भानु उस घोर वन में रात्रि विश्राम के लिए आश्रय देने वाले मुनि से बहुत प्रभावित हुआ, अतः सविस्तार उसका नाम धाम जानने की इच्छा प्रकट की। मुनि कपट में डुबोकर मधुर वचन बोला, तुम पवित्र विचार तथा तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो, अतः तुमसे यदि कुछ छिपाऊं तो मुझे दोष लगेगा। जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई, तब से मैंने दूसरी देह नहीं धारण की, इसी कारण मेरा नाम एक तनु है। फिर उसने राजा को तपस्या की महिमा बताई। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और तप से ही प्राप्त शक्ति से रुद्र उसका संहार करते हैं।

0: ये था गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायन स्वर थे महेंद्र कपूर के, संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है, सुबह के 6:45 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं खेती की बात। आज का विषय है कृषि वानिकी का महत्व।
1: भूमि की ऊपरी सतह की मिट्टी का एक बार क्षरण या अत्यधिक विदोहन होने पर इसे पुनः उपजाऊ बनाने में काफी समय लग जाता है। मिट्टी ऐसा ही प्राकृतिक संसाधन है जिसका नवीनीकरण यदि असंभव नहीं पर मुश्किल अवश्य है। इस प्राकृतिक संसाधन को हमेशा से पर्यावरणीय और सामाजिक उथल पुथल ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। मानव प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने का मुख्य कारक है, जिसके फलस्वरूप आज पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और भूमि की उत्पादन क्षमता भी प्रभावित हो रही है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही कृषि में फसलों और पशुओं के साथ साथ वृक्षों को सम्मिलित किया जाता रहा है। कृषि क्षेत्र में कृषि वानिकी एक महत्वपूर्ण कृषि पद्धति है, जिसका आज भी उतना ही महत्व है। आज के आधुनिक युग में भी कृषि वानिकी द्वारा आम किसान काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में कमी और बढ़ते हुए कृषि रसायनों के कारण भूमि की उपजाऊ क्षमता में गिरावट के कारण न केवल भविष्य में मनुष्य के लिए खाद्यान्न की समस्या हो सकती है, बल्कि पशुओं के लिए चारागाह और चारे के अभाव और ईंधन के लिए लकड़ी की कमी की संभावना भी प्रबल है। कृषि वानिकी द्वारा न केवल खेती योग्य भूमि और जंगलों पर बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव कम किया जा सकता है, बल्कि इसके द्वारा मृदा संरक्षण के अलावा पर्यावरण प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। कृषि वानिकी भू उपयोग की वह पद्धति है जिसके अंतर्गत सामाजिक और पारिस्थितिकी रूप से उचित वनस्पतियों के साथ साथ कृषि फसलों या पशुओं को लगातार या क्रमबद्ध ढंग से शामिल किया जाता है। कृषि वानिकी में खेती योग्य भूमि पर फसलों के साथ साथ वृक्षों को भी उगाया जाता है। इस प्रणाली द्वारा उत्पाद के रूप में ईंधन की लकड़ी, हरा चारा, अन्न, मौसमी फल इत्यादि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रणाली को अपनाने से भूमि की उपयोगिता बढ़ जाती है। मानव जीवन के लिए संतुलित पर्यावरण आवश्यक

0: है, वनों की कटाई, पानी की कमी और अन्य कारकों द्वारा मृदा का क्षरण होने से पर्यावरण संतुलन निरंतर बिगड़ता जा रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि ऐसी कृषि पद्धति अपनाई जाए जिसमें खाद्यान्न, लकड़ी और चारा की पूर्ति भी हो जाए और पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे। कृषि वानिकी की महत्ता इस संदर्भ में वर्तमान समय में काफी बढ़ गई है। इसके द्वारा भूमि की उर्वरा बढ़ाई जा सकती है, सीमित भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सकता है, ईंधन और इमारती लकड़ी प्राप्त की जा सकती है, बंजर भूमि का सुधार किया जा सकता है और पशुओं को वर्ष भर हरा चारा मिल सकता है। इसके अलावा उद्योगों हेतु कच्चा माल का उत्पादन किया जा सकता है। वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में भूमि का तापमान बढ़ने से रोकते हैं, जिससे भूमि में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट होने से बचाया जा सकता है, जो हमारी फसलों के लिए लाभकारी होते हैं। वृक्ष अपनी लंबी और गहरी जड़ों के द्वारा भूमि की निचली सतह से पोषक तत्वों को ग्रहण करके भूमि की ऊपरी सतह पर लाने में मदद करते हैं। यदि सूखा, ओलावृष्टि, आंधी, तूफान, प्राकृतिक प्रकोपों के कारण सालाना फसल नष्ट हो जाती है, तो भी वृक्षों द्वारा हमें कुछ न कुछ प्राप्त हो सकता है। कृषि वानिकी को अपनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है कि किस प्रकार के पेड़ वहाँ की जलवायु के अनुकूल हैं, वहाँ की सामाजिक आवश्यकता कितनी है, पेड़ों के साथ किस प्रकार की फसल उचित और उपयोगी होगी। कृषि वानिकी को सफल बनाने हेतु यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जलवायु और भूमि के अनुसार पेड़ और फसल का चुनाव कर लिया जाए। पेड़ और फसल भी एक दूसरे के अनुरूप हों, जिससे उन्हें एक साथ उगने पर अधिक उत्पादन मिल सके। पेड़ और फसलों के बीच पोषक तत्वों, वायु, सौर ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धा कम करने के दृष्टिकोण से समय समय पर पेड़ों को काटते छांटते रहना चाहिए। इस सब के लिए किसानों को मिट्टी, जल और वृक्षों संबंधी अच्छी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बात। आज का विषय था कृषि वानिकी का महत्व। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:50 होने को हैं। आइए आज आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सुबह 7:15 पर हम लेकर आएंगे सुगम संगीत कार्यक्रमों में कुछ चुनी हुई गजलें। जनसंपर्क से प्राप्त समाचारों, सूचनाओं और पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा हम आपके लिए लाते हैं हर सुबह 7:30 पर। सुबह 8:30 पर आकाशवाणी रायपुर से आज हम रिले करेंगे छत्तीसगढ़ी में समन्वित कार्यक्रम मोर भुइयां। बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन सुनिएगा सुबह 9:00। सुबह 10:00 आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। सुबह 10:30 पर मौसम की जानकारी और नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने हम लेकर आएंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिएगा आपकी पसंद सुबह 11:05 से। दोपहर 12:00 हम लेकर आएंगे CIET और NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। दोपहर 12:30 पर सुनिएगा एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन। महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन सुनिएगा दोपहर 1:10 पर।

आपका चहेता ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज हम लेकर आएंगे दोपहर 1:40 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। जंगली हाथियों से जुड़ी जानकारी और उनके विचरण क्षेत्रों के बारे में हम आपको बताते हैं हर शाम 5 हमारे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ में। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे युवाओं की वाणी युववाणी। शाम 6:20 पर लोक संगीत कार्यक्रम गोधूली का प्रसारण होगा। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम माधुरी। सुगम संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा शाम 7:05 पर प्रसारित होगा। शाम 7:20 पर हम लेकर आएंगे हमारे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। इसी अंतर्गत आज शाम 7:30 पर सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम में आज होगी हेलो किसान वाणी। लाइव कार्यक्रम में आप कॉल मिला सकते हैं और सीधे विशेषज्ञ से बातचीत कर सकते हैं। रात 8 सुनिएगा सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम, जिसमें गीत होंगे सोशल मीडिया आधारित पोस्ट पर मिले कमेंट्स में आप श्रोताओं की पसंद और फरमाइश पर। रात 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे मनी टॉक और मंथन कार्यक्रम। रात 10 सुनिएगा ईमेल की गूंज का रात्रिकालीन भाग और रात 10:30 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। ये है आज के हमारे कुछ मुख्य आकर्षण। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। संस्कृत में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिमैशियायाः सङ्घर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु सङ्कटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी राष्ट्रियसंसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरानगरे सरदारधाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां सम्बोधयन् आसीत्।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रोक्तवान् यत् केन्द्रप्रशासनस्य निरन्तरप्रयासैः भारतं पश्चिमैशियासङ्घर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जासङ्कटस्य प्रभावीरीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षितविदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीयवस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन

0: देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी शुक्रवासरात् आरभ्य संयुक्तारबामीरात् नीदरलैण्ड स्वीडन नॉर्वे इटली इत्येतेषां देशानां षड्दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय पञ्चदेशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामीरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमन्त्री शुक्रवासरे नीदरलैण्ड देशं सम्प्राप्स्यति। 17-2000 वर्षे स्वान्तिमयात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नीदरलैण्ड देशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति। यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे स्वीडन देशस्य गोथेनबर्ग नगरं गमिष्यति। श्रीमोदी स्वीडन देशस्य समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन्स इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु द्विपाक्षिक वार्तां करिष्यति। विदेश मन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आगामी यात्रा सद्यः सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सहमतेः दृष्ट्या विविध क्षेत्रेषु विशेषतया व्यापार निवेश सम्बन्धेषु यूरोपेन सह भारतस्य सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं करिष्यति इति। भाजपा दलस्य नेता हिमंत बिस्वा शर्मा इत्येषः अद्य चतुर्मन्त्रिभिः सह असमराज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं ग्रहीष्यति। असमराज्ये तृतीयवारं एनडीए प्रशासनं भविष्यति, यस्य नेतृत्वं शर्मा वर्यः निरन्तरं द्वितीयवारं मुख्यमन्त्रित्वेन करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां धर्मशाला इत्यत्र हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम इत्येतस्मिन् क्रीडांगणे दिल्ली कैपिटल्स दलेन पंजाब किंग्स दलं 30-2 पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 238.9 मीटर और एफएम बैंड 100.2 MHz पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत कार्यक्रम गूंजे जंगल। इस कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं ये सरगुजिहा लोकगीत। पियर साय और साथियों के स्वरों में आइए सुनते हैं ये भुईहारी गीत।

पियर साय और साथियों का गाया ये भुईहारी गीत सरगुजिहा बोली में आप सुन रहे थे। सुनते रहिए लोक संगीत कार्यक्रम गूंजे जंगल आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम गूंजी जंगल में। आइए अब सुनते हैं बलराम राम और साथियों के स्वरों में सादरी बोली में ये हकवा कर्मा गीत।

बलराम राम और साथियों के गायन स्वरों में अभी आप सुन रहे थे हकवा कर्मा गीत सादरी बोली में। कार्यक्रम में जाते जाते आपको सुनाते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा में ददरिया गीत। गायन स्वर हैं ममता सिंह और साथियों के।

ममता सिंह और साथियों का गाया ये छत्तीसगढ़ी में ददरिया गीत आप सुन रहे थे। इसी के साथ ही लोक संगीत कार्यक्रम गुंजे जंगल का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। लीजिए अब पेश है सुगम संगीत कार्यक्रम।

चित्रा सिंह की गाई ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे। शायर थे रईस अख्तर, जगजीत सिंह ने संगीत दिया था। आइए अब आपको सुनाते हैं आशा भोसले की आवाज़ में कार्यक्रम की ये अगली गज़ल। शायर हैं शबीह अब्बास, संगीत दिया है गुलाम अली ने।

आशा भोसले की गाई ये गज़ल आप सुन रहे थे। शायर थे शबीह अब्बास, संगीत दिया था गुलाम अली ने। सुनते रहिए सुगम संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: हरी हरण की सुरीली आवाज़ में ये गज़ल आप सुन रहे थे। शायर थे मुस्तर सिद्दीकी, सगी दिया था हरी हरण ने। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है जनसंपर्क से प्राप्त समाचारों, सूचनाओं और पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: नमस्कार सरगुजा कार्यक्रम में आज समाचारों और पुराने फिल्मी गीतों के साथ मैं हूं पौलमी। आइए नजर डालते हैं पहले समाचार पर। ये हमें प्राप्त हुआ है कोरिया से। वर्ष 2016 बैच की आईएएस अधिकारी ने कोरिया जिले के 20वीं कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। वे जिले की चौथी महिला कलेक्टर हैं। इससे पहले वर्ष 2006 में जिले में पहली महिला कलेक्टर की पदस्थापना हुई थी। अपने प्रशासनिक कार्यकाल में विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुकी हैं। उन्होंने कई जिलों में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ के रूप में सेवाएं दी हैं तथा कलेक्टर बनने से पहले समाज कल्याण विभाग में संचालक की जिम्मेदारी संभाली है।

पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट एवं जिला पंचायत कार्यालय के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण किया और अधिकारियों कर्मचारियों से संवाद कर कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कार्यालय प्रमुखों को सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए, साथ ही नस्तियों एवं अभिलेखों को सुव्यवस्थित एवं अद्यतन रखने पर जोर दिया। उल्लेखनीय है कि पूर्व कलेक्टर का स्थानांतरण कलेक्टर बलरामपुर रामानुजगंज के पद पर किया गया है। उनका कोरिया जिले में लगभग 21 माह का कार्यकाल रहा। आइए इसी बात पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म लूट मार का ये गीत। गीतकार थे अमित खन्ना, संगीत दिया था राजेश रोशन ने। अगली सूचना अंबिकापुर से। राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला एवं सत्य न्यायाधीश सरगुजा अंबिकापुर के मार्गदर्शन में 9 मई 2026 को प्रधान जिला एवं सत्य न्यायालय अंबिकापुर अंतर्गत सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। आयोजित नेशनल लोक अदालत के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय तथा सीतापुर न्यायालय के लगभग 3,500 लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। वहीं राजस्व न्यायालयों में 13,000 से अधिक प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण हुआ। किशोर न्याय बोर्ड के 7 एवं परिवार न्यायालय के 18 प्रकरणों का आपसी राजीनामा के आधार पर निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन मामलों का भी आपसी सहमति से निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत के दौरान परिवार न्यायालय सरगुजा के समक्ष लंबित एक विशेष प्रकरण में भावनात्मक और प्रेरणादायक परिणाम सामने आया। सामाजिक रीति रिवाज से विवाह कर चुके दंपति, जिनके 3 संतानें हैं, आपसी मतभेदों के कारण पिछले 7-8 वर्षों से अलग अलग रह रहे थे तथा परिवार न्यायालय में विवाह विच्छेद का प्रकरण लंबित था। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच आपसी संवाद एवं समझाइश के बाद मतभेद समाप्त हुए। इस प्रकार नेशनल लोक अदालत केवल प्रकरणों के त्वरित निराकरण का माध्यम ही नहीं बनी, बल्कि एक बिखरे परिवार को पुनः जोड़कर उनके जीवन में खुशियों लौटाने का संवेदनशील और प्रेरणादायक उदाहरण भी प्रस्तुत किया। आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत किशोर कुमार के गायन स्वर में।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था मन पसंद। गीतकार थे अमित खन्ना, संगीत दिया था राजेश रोशन ने। आइए अब आपको सुनाते हैं अगला गीत। तो उससे पहले बता दें, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से मिली ये सूचना। जिला प्रशासन मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आगामी सत्र की तैयारियों को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कलेक्टर महोदया के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी ने आगामी 15 मई 2026 को जिले के सभी सरकारी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और सेजेस यानी स्वामी आत्मानंद स्कूलों के प्राचार्यों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई। यह बैठक प्रातः 11 बजे से कलेक्टर सभाकक्ष जिला एमसीबी में आयोजित की गई। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार सभी प्राचार्यों को निर्धारित एजेंडा बिंदुओं पर पूरी जानकारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के मुख्य रूप से बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों और छात्रों के भविष्य से जुड़े निम्नलिखित विषयों पर चर्चा होगी। हाल ही में संपन्न हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों का गहन विश्लेषण होगा। नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूलों की तैयारी और रणनीति और पूरक यानी सप्लीमेंट्री और अवसर परीक्षा के लिए शत प्रतिशत छात्रों का आवेदन सुनिश्चित करना और उनके लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था करना। कक्षा 8वीं और 10वीं उत्तीर्ण कर चुके सभी छात्र छात्राओं का अगली कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित करना ताकि ड्रॉप आउट का दर शून्य किया जा सके। इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं पर होगी चर्चा। आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे ये गीत, फिल्म का नाम था वॉरेंट, आवाज थी लता मंगेशकर की, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। आप सुन रहे हैं नमस्कार सरगुजा आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से।
1: हेल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
2: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
1: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
2: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
1: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07774230600।
0: फिर एक बार स्वागत है आपका नमस्कार सरगुजा में। अब सुनते हैं अगला समाचार कोरिया जिले से। कोरिया जिले के नवपदस्थ कलेक्टर ने पदभार संभालने के बाद आयोजित समय सीमा

की बैठक में राज्य एवं केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की विभागवार समीक्षा की तथा अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व, खाद्य, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, मार्कफेड, सहकारिता, खनिज, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्कूल शिक्षाएं, महिलाएं एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, लोक निर्माण, जल संसाधन, कृषि, वन विभाग तथा नगरीय निकायों में संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जिन विभागों की प्रगति लक्ष्य से पीछे हैं, वे कार्यों में तेजी लाएं और निर्धारित समय सीमा के भीतर जिम्मेदारी पूर्वक कार्य सुनिश्चित करें। उन्होंने जाति, निवास एवं अन्य प्रमाण पत्रों की उपलब्धता, एग्रिस्टिक पंजीयन, मनरेगा के तहत रोजगार, आधार अपडेट, आयुष्मान कार्ड, वय वंदन कार्ड, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत ई KYC तथा प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ दूरस्थ अंचलों में रहने वाले पात्र हितग्राहियों तक प्राथमिकता के साथ पहुंचे। साथ ही मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दिए। आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में आप ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था जोशीला। गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। इसी के साथ ही कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से अब अपनी रेडियो साथी पॉलोमी को दीजिए इजाज़त।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने जा रहे हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकार

0: सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
1: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि LPG वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व सरमा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नेउक शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
4: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर

0: स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर

0: मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
1: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
2: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमेरिका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज पर संपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
4: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना 19वीं सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में

0: आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने ये भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
3: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
2: Prime Minister said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad, and the crisis has led to steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said that his government is working to ensure the impact of the crisis on Indians is minimal.
3: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
2: Senior BJP leader Himanta Biswa Sharma will be sworn in as the Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya

जम्मो श्रोता संगवारी मन ला हमर नमस्कार। मोर भुइया में क्रम हमर संस्कृति हमर कलाकार में आज हमन लोक गायिका श्रीमती जयंती यादव के संग गोठ बात के तीसरा कड़ीला सुनबो। पिछले कड़ी में हमन लगभग 80 वर्षीय जयंती यादव जी के जीवन के जो अनुभव है वोला सुनेन। अपन गीत के माध्यम ले समाज ला एक नवा रद्दा दिखावत है जयंती जी हा। सुनहा बिहान नवा बिहान चंदैनी गोंदा औ दौना पान के समय ले जयंती जी हा गीत के माध्यम ले लोगन मन के दिल में जगह बनाए है। ये तीसरा भाग में फिल्मकार मनु नायक जी और लता मंगेशकर जी के साथ ओकर भेंट कैसे होइस तेला सुनबो। ता आवो सुनथन भेंट वार्ता के तीसरी कड़ी।

0: मनु नायक हा मनु नायक ला जानतो
1: हाँ हाँ कही देवे संदेश फिल्म बनाई
0: संदेश फिल्म बनाई
1: हाँ हाँ
0: वो समय में एक लेखक महतारी रहे हूँ
1: हाँ हाँ
0: नहीं दू जन हो गए रहे
1: हाँ हाँ
0: अब वो घर लली पत हो
1: हाँ हाँ
0: मनु नायक
1: हाँ
0: अब मलाई चक्रवर्ती खोजात
1: हाँ
0: वो दीपक गुरुजी मर गए बेचारा पोटिया के गा
1: दीपक चंद्राकर
0: चंद्राकर
1: हाँ हाँ
0: ओला धार के आई दीपक घर की सर कोई छत्तीसगढ़ में खोद डाल रहे गांव गांव खोद रहे दुर्ग में चले गया कहाँ कहाँ रायगढ़ चले गया बोला छत्तीसगढ़ी गवा मोर पिक्चर में गवा आज बार मैं चाहत हूँ ऐसे छत्तीसगढ़ के गवैया बोला भिड़ा देते थे है ये ला हम पुलिस दीपक ला
1: हाँ
0: तो हमें फिर चाहे क्या थे

0: तू हूँ। खेरागढ़ के
1: हाँ
0: जेला लता मुंगेशर ला वो सिखाए रही से गुरु
1: हाँ,
0: जी
1: हाँ, हाँ,
0: ते मोला देखे ला इस ये गाना कौन गा है।
1: अच्छा तो कहीं देवे संदेश में ये गीत लगाए रहे हो आप।
0: हाँ
1: अच्छा
0: ईचे गा रहे हो।
1: हाँ आकाशवाणी ले।
0: हाँ
1: अच्छा
0: ये लग गिरी से यहाँ के सब मशीन लग गिरी से।
1: हाँ हाँ अच्छा
0: मुरली चंद्रा कर घर में।
1: हाँ हाँ
0: पूरा मशीन धर के गिरी से।
1: हाँ
0: वो नाम बता तो डूब
1: बरसाती भी
0: बरसाती
1: हाँ।
0: अब एक जनऊ
1: बिसाहू
0: बिसाहू
1: हाँ।
0: अब एक जनऊ रही से
1: हाँ हाँ
0: तीनों जन गेरी से
1: हाँ।
0: मोर गाना ला
1: हाँ हाँ।
0: रिकॉर्डिंग करे बर।
1: अच्छा
0: ता वो मन गेरी से
1: हाँ।
0: तो ये गाना मन ला सुने तो वो रेडियो में आए
1: हाँ हाँ
0: तो वो रेडियो लो सुन के
1: हाँ हाँ
0: खेरागढ़ के
1: हाँ
0: पड़ोसर आके मोला के थे बेटी ये गाना कैसे गाए है
1: हाँ हाँ
0: ये गाना तो लो कौन ऐसे
1: हाँ
0: गुरु जी तो लो बता है और सिखा है।
1: हाँ हाँ
0: लो मोर कोई गुरु नहीं है
1: हाँ हाँ
0: मोए अपन
1: हाँ
0: गाथो छत्तीसगढ़िया गाना।
1: हाँ
0: अच्छा मनु नायक है
1: हाँ
0: गाल लिपत रहे हो अब दीपक चंद्रा कर के आप बैले आए
1: हाँ हाँ
0: पड़ोसा रहा है बड़े जान साहब आए जंती
1: हाँ
0: कब
1: हाँ
0: अरे तोर गाना गवाए बा फिल्म में
1: हाँ हाँ
0: मोर फिल्म में गाना गाऊं ये देई कतका बहागे मोर।
1: हाँ
0: अब वो मनाइन
1: हाँ
0: बैठा रहे हूँ वो मल्ला
1: हाँ
0: मनु नाइक ला
1: हाँ
0: भाई मनु राखी बांधे हूँ।
1: हाँ
0: अब बोला
1: हाँ
0: का कहते मलाई चक्रवर्ती आई आए ले तो गा
1: हाँ
0: तो गायू गाना
1: हाँ
0: वो मन खुश हो गए।
1: हाँ
0: तब खरहोरा में होतरी से
1: हाँ
0: शूटिंग
1: हाँ
0: ओकर
1: हाँ
0: मन के
1: हाँ हाँ कहीं देवे संदेश फिल्म के। हाँ
0: फिल्म के
1: हाँ
0: मोहम्मद रफी आए रही से
1: हाँ हाँ
0: लता मंगेशकर आए रही से।
1: हाँ हाँ
0: आ वाह देखे आ लता मंगेशकर ला देखे
1: हाँ
0: चित
1: हाँ हाँ
0: मैं कहूँ माँ सरस्वती देखा थो
1: हाँ
0: आज मैं हाँ रेडियो में माता ला
1: हाँ
0: सुने कर आवाज ला वो में गाय वो मेरी सोनारी सोनारी सोनारी दे दूंगी जान जुदा मैं तू हो न रे मैंने तुझे पड़ा दे रुमियाना होया कसु रुखपा मैं तू हो न रे मैं तोर बहुत पुजारी हूँ माता
1: हाँ
0: और तोरे गाना गा के मैं बहुत आज ऊंचा हूँ
1: हाँ
0: फिर छत्तीसगढ़ी गाना सीखी हूँ।
1: हाँ हाँ
0: ता यह सब चलत रहा है
1: हाँ
0: मोहम्मद रफील देखियो
1: हाँ
0: हाँ कल मोर रसीफ तो देखो
1: हाँ हाँ
0: ऐसे ऐसे कलाकार के संगत हो इस मूर्ते
1: हाँ हाँ
0: ए
1: हाँ
0: तो वो गात रहा है ओकर यह गाना रहा है मोहम्मद जमकत नंदिया बहनी लागे पर्वत तोर मितान रे रे भाई पर्वत तोर मितान हो ये सब
1: हाँ
0: अरे बाप रे ऐसे ऐसे कलाकार
1: हाँ
0: और माता ला छत्तीसगढ़ हिंदी बोले ला है।
1: हाँ हाँ
0: कौन ला
1: लता जीला
0: नहीं आए
1: हाँ हाँ
0: छत्तीसगढ़ ही गाना नहीं आए हो
1: हाँ
0: आ गाय वो हा बोला
1: हाँ
0: गवाए बर लाए रही से मनु नायक का पैसा में
1: हाँ तब
0: वो हा गानी से के छत्तीसगढ़ ही
1: हाँ हाँ
0: अब वो हा कहा पंजाबी गवैया
1: हाँ हाँ
0: मद्रासी गवैया
1: हाँ
0: आए
1: हाँ
0: मराठी गवैया
1: हाँ
0: माता हा
1: हाँ
0: गा
1: हाँ
0: छत्तीसगढ़ ला वो हा बासी साग नून चटनी वो का गानी और का

0: हुआ हमरे सरी हमन का गोठा थनते से कहा जाता तो का सागे हो नूने का वो मिर्चाय का वो गोंदली रामकलिया ओला जान ही वो लता मंगेशकर
1: हाँ हाँ आए तब फिर कैसे हुई
0: ओला गाना दिली समाला बिहनिया ली उगबी

0: माता मोला कथे छत्तीसगढ़िया कैसे गाती है बेटी तू बता। बोलो बोला टोक दे हूँ माता ला नहीं हमार छत्तीसगढ़िया में ऐसे नहीं गाए माँ। तो कैसे गाती है डर के मारे ऐसा था भाई इतना बड़ा कलाकार वो कर सामने में गाना कौन ला इसे लगी बेटा। तब मैं माताल बोलूं देख माँ छत्तीसगढ़ ये छत्तीसगढ़ की गाना बड़ा सुरीली है छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़ ऐसे गढ़े माता जे में भारत ही में समाए है ये सारी इंडिया पूरा ही छत्तीसगढ़ में समाए है एक अर पीरा ला माता हम गाथन छत्तीसगढ़ महतारी मोर हम गाथन आर पैरी के ढार महानंदी है अपार ओकर अंग अंग ओकर उंगरी के नख नखल हमन जोड़ के कभी मन बता बना है ऐसे तेला हमारी आवाज के माध्यम से ओला हम पीरोथन माँ छत्तीसगढ़ ला हम जागृत करथन माँ छत्तीसगढ़ ला। बोले कितनी अच्छी सोच है तेरा तर रिहर्सल हो 15 दिन ले रहे हो माता के साथ में लता मंगेशकर के माता के साथ में वही मोला पढ़ाई से माता बोला लेगद्री से बम्बे तेरी आवाज बहुत सुंदर है कही ये दादा मोर नाना लेके मैं नहीं जाऊँ मोर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ ऐसे कही के तब वो गाइस
1: कौन से गाना
0: ओ बिहनिया ली उगबी सूरज देवता तेरी मैं बोला नहीं माँ छत्तीसगढ़ तेरी नहीं है हिंदी हो गए माँ हिंदी में नहीं क्या गाऊं तो बच्चे बोल बेटी ऐसे है गाना गाना बिहनिया ली उगबी सूरज देवता तोर चर

0: माँ मुला लेंगे बॉम्बे।
1: अच्छा
0: धार के लेंगे।
1: हाँ हाँ
0: यही लेंगे। तोर का कथे
1: मनु नायक जी हा।
0: मनु नायक हा।
1: हाँ हाँ
0: चल ऊंचे चल कह के।
1: हाँ हाँ
0: तोर लोग लेके उधार के चल कह लेके हम माता।
1: हाँ
0: तोला तनखा मिली।
1: हाँ
0: तोर बहुत बड़े बिल्डिंग रही।
1: हाँ
0: ते वहाँ चल।
1: हाँ
0: मैं काकरो भाड़ को निम नहीं आए बेटा।
1: हाँ
0: मोर छत्तीसगढ़ महतारी
1: इंचे सेवा करूं की के नहीं
0: मोर छत्तीसगढ़ की पीरा ते का जान में बम्बई वाले मन।
1: हाँ हाँ
0: अपन ढंग से तुम गाओ बजाओ माता राम।
1: हाँ हाँ
0: अपन ढंग से मैं हाँ अपन छत्तीसगढ़ में एक दिन ते जागृत हो बे माता।
1: हाँ
0: छत्तीसगढ़ में मोहूला जागृत होना है।
1: हाँ
0: मोला पैसा नहीं चाहिए।
1: हाँ
0: मैं पैसा तो दुनिया कमाईस।
1: हाँ
0: और गाइस मगर मैं हाँ पैसा नहीं कमाई बेटा।
1: हाँ
0: मैं सिर्फ तुम्हार मन के आशीर्वाद।
1: हाँ
0: तुम्हार मन की प्यार ला छत्तीसगढ़ के मोर आचराम समेट के रखे।
1: हाँ
0: तब तो बुला है का।
1: हाँ
0: तभी तो मोर याद करतो का।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: नहीं तो मोला कौन जाने।

0: दीदी आप मन ह बड़ सुघर जानकारी देवत हो, और हमर जो नवा पीढ़ी है, हमर छत्तीसगढ़ के जो श्रोता संगी है, हमर छत्तीसगढ़ के नोनी बाबू है, ते मन ला आप आशीर्वचन के रूप में अपन का संदेश देना चाहू।
1: ओहो हो हो, धन्य धन्य। अरे कोनो गात रथे पहली जमाना के छत्तीसगढ़ ला, हमार कितना बड़ा ये दिस है, हम देहेन छत्तीसगढ़ ला, हम गा के पीरो के बासिल खा के चटनी रोटी खा के

0: हमार छत्तीसगढ़ ला जगा है
1: हाँ।
0: आज के लइका मन हा
1: हाँ।
0: हमार जैसे हम तपस्या करें अपन छत्तीसगढ़ ला
1: हाँ।
0: जगाएं
1: हाँ।
0: और छत्तीसगढ़ में हम फोड़ता नहीं गायन
1: हाँ।
0: गायन

0: थांग रामायण गीता भागवत
1: हाँ।
0: का मैयाला
1: हाँ।
0: भगवान तक ला घलो कलाकार मन अपन बस में करथन
1: हाँ।
0: गा के
1: हाँ।
0: जन जन के दुख पीर चिन्हैया ते भूई

0: झील तो क्या है?
1: हाँ।
0: वो में डूबो।
1: हाँ।
0: उसमें डूबो।
1: हाँ।
0: माता
1: हाँ।
0: को कैसे गाया जाता है जस गाना
1: जी?
0: अभी हाँ। अभी लड़का मन गाते
1: हाँ।
0: अभी के जो गाना मन है
1: हाय
0: हाय
1: हाय
0: मैं कहा ये मन हाय रे मन हाय रे मन तोर मन कैसे लागे प्रभु तोर मन। यहाँ तो संपस है भगवान मन तो यहाँ है कहाँ को जतते है कहाँ मंदिर में जावे वो तो स्थापना दे है तेला घंटी बजा था ना तोर में तो सबे भरे है
1: हृदय में
0: भगवान मन है तो तोर मन कैसे लागे राजा महल की भीतरी में तोर मन कैसे लागे लड़का मन ल खोजे हो।
1: हाँ।
0: अरे मैं तो चले जाऊ
1: हाँ।
0: मगर तू मन हो तो बढ़िया से तो गाओ।
1: हाँ।
0: ऐसे ऐसे धुलंदर धुलंदर कलाकार मन चलेगी बेटा।
1: हाँ।
0: आए
1: हाँ।
0: छोड़ छोड़ के गाना मन ला
1: हाँ।
0: मगर वो गाना काबर बिगाड़ थो।
1: हाँ।
0: खुनुर खुनुर सुर में बोले चुटकी चटक बोले रे बैरी परिला खुनुर खुनुर सुर में बोले चुटकी चटक बोले रे बैरी परिला छी बैरी परिला चिटकु शरम न लागे परिला चिटकु शरम न लागे
1: जी हाँ हाँ
0: ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले ले तीन जुड़ी लहर गंगा ले ले तीन ना पुण्य के मेला में जाते दुख लाए करिया तीन गंगा स्नान ले ले तीन केला चढ़ा दे तीन भेला मना ले तीन भोला भगवान काया माया के नहीं है ठिकाना काया माया के नहीं ये ठिकाना मिला ठेला देखा तीन जो

0: तीन
1: दीदी, बड़ सुघर आपसन गोड बात हुआ थे, बड़ सुघर जानकारी मिला थे। और हमर जो नवा पीढ़ी है, नवा कलाकार है, आपसन होए बातचीत ल सुन के जरूर प्रेरणा लीही। और आप
0: भगवान मोर मोर आशीर्वाद है। ये अभी गा थे लड़का मन हा, जैसे भी गाय वो जनती आदत नहीं बन जाए। वो का कथे लता मंगेशकर के गाना जे गाते थे, लता मंगेशकर तो नहीं बन जाए। मोहम्मद रफी के गाना गाते तर मोहम्मद रफी तो नहीं बन जाए। मगर नहीं, जैसे भी गाते उस बच्चे लोग भगवान उसको सरस्वती मैया ने छत्तीसगढ़ माता ने कर्मादाई ओला रक्षा करे
1: जी जी।
0: उस आगे बच्चा मल्ला बढ़ाए का है मोर नो है वो गाना है बेटा किसी कवि की कलम है उसकी आत्मा मरना नहीं चाहिए। उसकी आत्मा ला मैं नहीं गात हूँ तो दूसरा गात है, मैं कोई और दूसरा गात है, कोई और दूसरा गात है तो वो गाना हम मरे नहीं है। वो नहीं मरे है जे लिखे है कलम से, वो मरे नहीं है, उसकी आत्मा जियर है। उसकी आत्मा
1: अक्षर अमर है,
0: अमर
1: गीत अमर है,
0: गीत अमर है। हाँ, गाना अमर करत है लड़का।

0: धन धन है मोर भाग, तुमन जीवित रखे हो मोला। सुरिता समागी, सुरिता समागी जुआनी खयाले रगा। सुरिता समा हमन हा ओ गाना ला
1: हाँ।
0: सुरिता ल चंदन सु घोरत हो सपना लबीर बीर आगोरत हूँ। यहाँ सब गाना है।
1: जयंती यादव जी, आप मन हा हमर श्रोता मन ला अपन जीवन के अनुभव ला गीत के माध्यम ले कैसे आप मन हा समाज ला नवा रद्दा दिखाए हो और नवा पीढ़ी ला गीत संगीत लोक गायकी के शिक्षा दे के वो मल्ला घलो ये लोक गायन की परंपरा ला आगे बढ़ाए के प्रेरणा दे हाओ, हमन ला समय दे हाओ, स्टूडियो में आए हाओ, एक हर बराप ला बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। कुछ ही पलों पूर्व आकाशवाणी रायपुर से हमने रिले किया था छत्तीसगढ़ी में समन्वित कार्यक्रम मोर भुइयां। सुबह के 9 बजने को हैं, अब पेश है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां में अभी आप सुन रहे थे लोक गायिका श्रीमती जयंती यादव ले भेंट वार्ता, भेंट करता थे नेमीचंद साहू। आप सुन रहे थे इस भेंट वार्ता का तीसरा भाग। थोड़ी देर

गुंजन। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं कुछ सुने अनसुने खूबसूरत नगमे और करते हैं समसामयिक विषयों पर बातें। आज गुंजन में बातों और गीतों का कारवा लेकर मैं हूं आपकी रेडियो साथी पॉलोमी।

जिस तेज़ी से गर्मियां बढ़ी हैं उसी तेज़ी से हाल ही में आंधी तूफान ने भी दस्तक दी है। घनी बरसात से अंबिकापुर को थोड़ी राहत तो मिली है। इस बरसात का आना प्रकृति के लिए बहुत उपयोगी है। अमूमन वैशाख माह में इसका आगमन होता है, इसीलिए इसे काल वैशाखी कहते हैं। बेहद तेज आंधी और मूसलाधार वर्षा इसकी पहचान है। जितनी अधिक गर्मी बढ़ती है उतनी अधिक तीव्रता से काल वैशाखी अपनी फुहार बरसाता है। मौसम फिर ठंडा हो जाता है और पशु पक्षियों को तेज धूप से राहत मिलती है। अद्भुत है ये प्रकृति का खास नियम। आज के इस क्रम में काल वैशाखी पर कुछ बातें हम लेकर आपके लिए आए हैं और आपको इसी बात पर सुनाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था जैकपॉट। गीत को लिखा था एम शिराजी, अहमद शिराजी और तुराज ने। संगीत दिया था शारिब तोशी ने। कहते हैं काल वैशाखी सदैव वैशाख माह के अंतिम कुछ दिनों पर आती है। बंगाल के लोगों का यह भी मानना है कि 25वीं वैशाख को बारिश होती है, क्योंकि उस दिन महाकवि महान साहित्यकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पड़ती है। इस बार भी यह तिथि 9 मई को पड़ी थी और हैरानी की बात यह है कि इस दिन हमारे नगर अंबिकापुर में भयानक आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जन्म 7 मई सन 1861 को हुआ था, बंगला कैलेंडर और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से उनकी जन्मतिथि 25वीं वैशाख बताई जाती है। हर वर्ष यह अलग अलग दिन पर पड़ता है और इस दिन बंगाल व समस्त बंगाली समुदाय में जश्न मनाया जाता है। रविंद्र संगीत और गुरुदेव पर चर्चा, उनके कार्यों को

के माध्यम से वे व्यक्ति के भीतर की गहराइयों को स्वर देते थे। उनकी अनेक कालजयी रचनाएं आज भी लोग गुनगुनाते हैं। उन्होंने दो देशों को राष्ट्रगान दिए हैं। ऐसी रचनाएं जो केवल व्यक्तिगत भावनाओं को नहीं बल्कि देशव्यापी चेतना को जगा जाए, इसके लिए उन्हें पूजा जाता है। आइए इसी बात पर सुनते हैं उन्हीं की ये रचना।

एकला चलो रे। इस गीत को आप सुन रहे थे अमिताभ बच्चन और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था कहानी और इसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, संगीत दिया था विशाल शेखर ने। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

स्वानंद किरकिरे और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज़ों में आप सुन रहे थे फिल्म लुटेरा का ये गीत। अमिताभ भट्टाचार्य ने गीत के बोल लिखे थे, संगीत से सजाया था अमित त्रिवेदी ने। फिर एक बार स्वागत है आपका गुंजन के आज के अंक में, और आज हम बातें कर रहे थे काल वैशाखी के बारे में।

0: काल वैशाखी, जिसे अंग्रेजी में विभिन्न नामों से जाना जाता है, पर साइंटिफिकली इसे नॉर्वेस्टर कहा जाता है। अंग्रेजों ने इसकी गतिविधियों पर रिसर्च किया था। उन्हें अपने जहाजों के आने जाने के लिए हवाओं की दिशाओं पर जानकारी रखनी होती थी, और उन्होंने पाया कि बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में अप्रैल के अंत से लेकर मानसून के आगमन तक एक अलग तरह की वर्षा देखी जाती है। इस दौरान हवाएं काफी तेज चलती हैं और विस्फोटक वर्षा होती है। इन हवाओं की उत्पत्ति छोटा नागपुर प्लेटू यानी कि सरगुजा अंचल के पहाड़ों और झारखंड के पहाड़ों से मानी गई है। सीधी रेखा में ये आंधियां उठती हैं और अन्य राज्यों जैसे उड़ीसा, बंगाल, असम आदि तक पहुंचते हुए बड़ी ही तीव्र गति पकड़ लेती है। कई स्थानों पर भयावह आंधियों के साथ ओले भी पड़ते हैं। कभी कभी आंधियां इतनी तेज हो जाती हैं कि टॉर्नेडो यानी बवंडर भी बन जाता है। ये तूफान अधिकतर पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा जैसे स्थानों पर देखे जाते हैं। काल वैशाखी के कारण सन 1989 में बांग्लादेश में एक ऐसा बवंडर उठा था जिसमें 1000 से अधिक लोग भी मारे गए थे। आज तक की ये वहां की सबसे बड़ी त्रासदी मानी गई है। आई इसी बात पर आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आशा भोसले, उदित नारायण की आवाजों में, साथी कलाकार हैं सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले, तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले। जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले। मिले मिले मिले मिले दिल मिले, मिले, मिले, मिले, मिले, मिले, मिले, मिले, मिले।

आशा भोसले, उदित नारायण, सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में सुन रहे थे आप ये गीत। फिल्म का नाम था यादें। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की, संगीत दिया था अनु मलिक ने।

यूं तो काल वैशाखी अपनी भयावह आंधियों से पेड़ों तक को उखाड़ देता है, मगर खरीफ की फसलों के लिए ये बेहद आवश्यक भी है। सूखी जमीन में काल वैशाखी की वर्षा अच्छी पैदावार लाती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आजकल काल वैशाखी का आवेग कमजोर हो गया है, वह अधिक देखने को नहीं मिल रहा। एक समय था काल वैशाखी को साहित्यकार अपनी रचनाओं में करते थे। बंगाल के महान कवि मोहित लाल मजुमदार ने न जाने कितनी कविताओं में काल वैशाखी की उत्कृष्ट रूपरेखा उकेरी है। स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी ऐशो हे वैशाख नामक कविता लिखी थी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि अब इन हवाओं का दर्शन दुर्लभ हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धीरे धीरे प्रकृति की इस अनमोल विरासत से हम हाथ धो बैठ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इसी बात पर कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अनुराधा पौड़वाल की।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में आप ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था पापा द ग्रेट। संगीतबद्ध किया था निखिल विनय ने और शब्द रचना थी फैज अनवर की। सुनते रहिए बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
2: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
1: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
2: क्या 230-600?
1: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
2: पक्का?
1: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
3: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
4: पुलिस?
5: मिस सीमा
4: जी,
5: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों? लेकिन मैं
5: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
5: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
4: इतने पैसे?
5: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें।

0: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा,
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन, और हम बात कर रहे थे वैशाख माह की खास वर्षा काल वैशाखी के बारे में। अंग्रेजी में काल वैशाखी को मैंगो शावर भी कहते हैं, क्योंकि इस बरसात के आने का समय अप्रैल से मई के बीच होता है। इस समय आम भी भर भर कर फलते हैं, मगर इस जबरदस्त आंधी में कच्चे आम झड़ जाते हैं। उन आमों से फिर हम बनाते हैं अचार, अचार, मुरब्बा, चटनी, आम पन्ना। पूरी गर्मी कच्चे आमों का इस्तेमाल कर हम मज़े लेते हैं आम के स्वाद का, और जो आम रह जाते हैं पेड़ों पर वो सबसे मीठे आम गंगा दशहरा के आसपास हमें खाने को मिलते हैं। ये काल वैशाखी के दौरान ही हमें चारों तरफ आम झड़ते हुए दिखते हैं, इसलिए अंग्रेजी में इसका ये मज़ेदार नाम मैंगो शावर रखा गया है। आप भी किसी न किसी रूप में आम का स्वाद चख ही रहे होंगे, तो इसी बात पर आपको सुनाते हैं ये अगला गीत।

अभिजीत और के एस चित्रा की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था अशोका, गुलजार की शब्द रचना थी, संगीत दिया था अनु मलिक ने।

0: आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 0777 4 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 0777 4 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

जो है पता वो ना बता, राज छुपाने में है सच्चा मजा। कहना है जो कह दोगे ना, बातें बनाने को है कुछ ना बचा।

फिल्म पा का ये गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज़ में। गीतकार थे स्वानंद किरकिरे, संगीत दिया था इलाई राजा ने।

काल वैशाखी से जुड़े अनेक रोचक बातों को लेकर आज हमने गुंजन की महफिल सजाई थी। आशा है गुंजन की आज की कड़ी में हमारी ये प्रस्तुति आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगली कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और बातों और गीतों का ताना बाना लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र पर। तो अब इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अपनी रेडियो साथी पॉलोमी को अब कार्यक्रम गुंजन से दीजिए इजाज़त।

0: आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों को अप्रैल से जून महीने तक आवंटित खाद्यान्न के एकमुश्त वितरण की समय सीमा बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। और जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद एक बच्चे की मौत और 3 अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। कल वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। यह जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। प्रधानमंत्री ने स्कूलों से भी आग्रह किया कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। साथ ही उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि जब तक हालात सामान्य न हो सोने की खरीदी न करें। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं है और देश के पास 60 दिन के कच्चे तेल, 60 दिन के प्राकृतिक गैस और 45 दिन के एलपीजी का भंडार है। यह जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पश्चिम एशिया पर मंत्रियों के अनौपचारिक समूह की 5वीं बैठक के दौरान दी गई। बैठक में संघर्ष में नवीनतम घटनाक्रमों का जायजा लिया गया और जनता पर इसके न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए देश की तैयारियों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के उत्कृष्ट रखरखाव में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। मध्यप्रदेश के सीहोर में आयोजित योजना के रजत जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य को सम्मानित किया। राज्य की ओर से पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह और प्रमुख अभियंता के कटारे ने पुरस्कार ग्रहण किया। प्रदेश में अब तक 32,000 किलोमीटर लंबी 8,000 से अधिक सड़कों का नवीनीकरण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण और तीसरे चरण के सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा राशन कार्डधारी परिवारों को अप्रैल से जून महीने तक आवंटित खाद्यान्न के एकमुश्त वितरण की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब हितग्राही को 15 मई तक एकमुश्त राशन का वितरण किया जाएगा। खाद्य विभाग ने सभी उचित मूल्य के दुकानदारों और संबंधित अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। खाद्य विभाग ने राशन कार्डधारी परिवारों से अपील की है कि वे समय रहते अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर लें। नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन कार्यक्रम जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं वहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। चुनाव प्रचार में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। लंबे चोंगे वाले लाउडस्पीकरों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। चुनावी सभाओं और प्रचार वाहनों में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद

0: एक बच्चे की मौत और तीन अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम और एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए। बीमार बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। प्रशासन ने तरबूज के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर में 10वीं और 12वीं की प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनकी सफलता के अनुभव और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों को अप्रैल से जून महीने तक आवंटित खाद्यान्न के एकमुश्त वितरण की समय सीमा बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। और जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद एक बच्चे की मौत और तीन अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: शिक्षा ज्ञान के लिए होनी चाहिए। इस उक्ति के प्रकाश में लोक कल्याणकारी सरकारें नित नई योजनाओं को लागू करती हैं। इसी के तहत नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू की गई है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि एक पुराने ढर्रे पर चलने वाली शिक्षा नीति केवल कुछ क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसर प्रदान कर पाती है, जबकि परिवर्तित नीति बहुत सारे शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को विकसित करती है। भारत एक प्रगतिशील देश है, यहाँ की एक बड़ी आबादी आज भी रोजी रोटी के संघर्ष से जूझ रही है। ऐसे में जमीनी स्तर पर शिक्षा के प्रचार प्रसार की अत्यंत आवश्यकता है। बात यदि हम अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति एक समान नहीं है और न ही समान संसाधन है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला किया है कि हर वो विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा पाना चाहता है उसे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना का लाभ दिया जाएगा। आज ये योजना प्रदेश भर में लागू है। इस संबंध में और अधिक जानकारी दे रहे हैं छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के सहायक महाप्रबंधक व्यवसाय एवं सांख्य श्री अमरजीत सिंह खनुजा।
1: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना छत्तीसगढ़ शासन की उच्च शिक्षा हेतु ब्याज का अनुदान देने की योजना है। यह योजना तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु लागू होती है। योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना है। इस योजना में अधिकतम 4 लाख तक के ही शिक्षा ऋण पात्र होते हैं। हितग्राही की पात्रता के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं हो सकती है। योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान मॉरेटोरियम अवधि के पश्चात जो ब्याज लगता है उस पर देय होता है। ब्याज अनुदान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 100% अर्थात 100% छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा वहन किया जाता है। अन्य जिलों में 1% जो है वो विद्यार्थियों को देना पड़ता है और 99% राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऋण किस्तों का नियमित भुगतान करना अत्यंत आवश्यक है। यह योजना ड्रॉप आउट निष्कासित विद्यार्थियों को योजना का के लिए नहीं है, उनको इसका लाभ नहीं मिलता है। जितने भी उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम है उसके लिए लागू है और जितने भी संस्थान है लाइक IITs, IIMs, NITs और एम्स, MCI, DCI, INC इत्यादि में ये स्कीम लागू होती है। अप्लाई तो एक्चुअली बैंक के थ्रू जाता है। जब बैंक में आप शिक्षा ऋण लेते हैं तो बैंक इसका क्लेम करता है गवर्नमेंट को पात्रता अनुसार जो खाते होते हैं। जब आदमी अप्लाई करता है लोन की तब बताना पड़ता है कि हाँ मेरी जो लाइफ मेरी जो परिवार की वार्षिक आय है वो 2 लाख से कम है और टोटल जो मुझे 4 लाख के लोन चाहिए, कौन सी जगह मैं पढ़ने जा रहा हूँ, क्या पढ़ने जा रहा हूँ, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि ये इस योजना का पात्र है कि नहीं। पात्र खातों का जो अनुदान क्लेम है वो बैंक के द्वारा सब्सिडी क्लेम इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम की जाती है। दस्तावेज में आप जहाँ पर हायर एजुकेशन लेने जा रहे हैं उसके सारे दस्तावेज जिसमें आपको फीस वगैरह सब रहेगा, एजुकेशन फीस, हॉस्टल फीस वगैरह सारा कुछ, और इसके अलावा आपका KYC लगेगा, जो भी एजुकेशन लोन के डॉक्यूमेंट है सब एज इट इज लगेंगे।
2: और इसको लौटाने की अवधि क्या होती है सर?
1: जो एजुकेशन लोन की नॉर्मल पॉलिसीज बैंक की होती है उसके अनुसार, मतलब जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन लोन में ही अपनी ओर से एड ऑन दे रहा है छत्तीसगढ़ शासन ताकि इसको प्रमोट कर सके एजुकेशन लोन को भी और उनके लिए एजुकेशन के साधन भी हो सके जिनके पास आर्थिक रूप से जो कमजोर विद्यार्थी है। देखिए शिक्षा ऋण तो एक्चुअली एक बार मिलता है क्योंकि आप पूरे कोर्स का पैसा ले लिए रहते हैं ना, तो दोबारा मतलब इसमें कोई डोज सिस्टम तो रहेगा नहीं, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए मेडिकल करना है तो मेडिकल आपका 5 साल का अगर कोर्स है तो 5 साल में जो फीस लगनी है जो भी लगना हो तो पहले प्रोजेक्ट होकर आपको लोन मिल जाता है, तो दोबारा लोन जैसा कोई इसमें होता नहीं है।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के पात्र वे सभी विद्यार्थी हैं जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो। इस योजना के तहत डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ एक लंबे समय से नक्सलवाद से पीड़ित रहा है। बस्तर और सरगुजा संभाग के वे सभी जिले जहां कभी हिंसा का आतंक था, वहां मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना ने शिक्षा का परचम फहरा दिया है। अब यहां उच्च शिक्षा से वंचित छात्रों को समुचित संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा के बंद द्वार सरकार ने सभी के लिए खोल दिए हैं।

0: छत्तीसगढ़ के मेधावी छात्र छात्राओं को अपने उच्च शिक्षा पाने के सपनों को पूरा करने का आधार प्रदेश सरकार ने दिया है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा महंगी होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे अक्सर उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ये योजना ऐसे छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके करियर को सुदृढ़ सोपान प्रदान करने में भरपूर सहयोग देती है।
1: ब्याज नहीं लग रहा है लोन लेने में, तो अच्छी बात है। और पेरेंट्स भी ज्यादा प्रेशराइज्ड नहीं रहेंगे, बच्चे भी ज्यादा प्रेशराइज्ड नहीं रहेंगे और वो अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उनके में कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि हमको ब्याज देना है तो हमको उस चीज़ के लिए भी पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे, सेव करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ अच्छा है, वो बिना टेंशन के पढ़ सकते हैं।
2: मैं मोदी और विष्णुदेव साय को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा योजना कल निकाला। जो सभी छात्राएं हैं उनको बहुत तकलीफ होती थी ब्याज देने में, वो सभी उन सभी के लिए माफ़ हो गए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

छत्तीसगढ़ में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए आज कई शाखाएं हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी शाखाएं भी हैं जिनमें पढ़ाई के लिए अन्यत्र जाने की ज़रूरत होती है। AICTI, UGC, MCI, DCI और INC जैसे मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भी मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना छात्र छात्राओं को अध्ययन के लिए ऋण की व्यवस्था करता है। ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा

0: 4 लाख रुपए है। ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिए नियमित रूप से ऋण किश्तों का भुगतान अनिवार्य है। ये मॉरिटोरियम अवधि के उपरांत नियमित भुगतान की स्थिति में ऋण राशि के ब्याज भार में छूट प्रदान करता है।
1: आप हैं भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक श्री राकेश सिन्हा।
2: यह जो राज्य सरकार की उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना है, यह तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित छात्रों के लिए योजना सत्र 2012-13 से लागू है। इस योजना में ऋण किस्तों के नियमित भुगतान की स्थिति में ऋण पर ब्याज अनुदान राज्य के चरम वामपंथी प्रभावित जिलों पर जो वहां के जो विद्यार्थी हैं उनके ब्याज का संपूर्ण भार राज्य प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है और राज्य के शेष जिलों में जो निवासी शिक्षार्थी हैं उन्हें केवल 1% की दर से ब्याज का भार वहन करना पड़ता है और शेष राशि की ब्याज जो है वह राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह योजना जो है केवल छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए लागू है। इसमें जो पेरेंट्स हैं उनकी इनकम जो है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। स्कीम जो है जो विद्यार्थी फेल हुए हैं या ड्रॉप आउट हुए हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है और जैसा कि मैंने पहले बताया जो नक्सलाइट बेल्ट है वहां पे मोरेटोरियम पीरियड का पूरा ब्याज राज्य सरकार वहन करती है और बाकी जो जिले हैं उसमें विद्यार्थियों को केवल 1% ब्याज दर से ब्याज देना पड़ता है। केनरा बैंक इसका नोडल बैंक है लेकिन राज्य के विद्यार्थी जो है वो किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक या 21 प्राइवेट बैंक से लोन ले सकते हैं और इस स्कीम में मैक्सिमम लोन जो है वह 4 लाख है। तो सरकार की ओर से यह एक पहल है जिसमें जो शिक्षार्थी हैं उनको एकदम कम किस्त में कम ऋण में ऋण की सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे उच्च शिक्षा का लाभ उठा सके और अपने को खुद को सक्षम बना सके। डॉक्यूमेंट्स जो स्कूल के उनके जो राज्य के निवासी हैं उसका प्रमाण और स्कूल और कॉलेज के जो सर्टिफिकेट्स हैं और जहां उनको एडमिशन मिला है उस एडमिशन का जो कॉपी है वो केवल चाहिए और कुछ नहीं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस योजना का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिल सकता है जिनकी पारिवारिक इनकम जो है 2 लाख से कम है तो वो एक इनकम प्रमाण पत्र जो होता है वो चाहिए होता है, आय प्रमाण पत्र। तो पंचायत से या राज्य सरकार के किसी अथॉरिटी से जो आय प्रमाण पत्र होता है वो लगता है।

छत्तीसगढ़ राज्य विकास के पंख फैलाए हर क्षेत्र में तरक्की की परवाज भर रहा है। सरकार ने न सिर्फ पूरे प्रदेश को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है, बल्कि उसकी मंशा ये भी है कि किसी भी मेधावी छात्र को उच्च शिक्षा के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। वंचित वर्ग पर सरकार के लगातार ध्यान देने के कारण ही आज जनजातीय बाहुल्य इलाकों से उच्च शिक्षा प्राप्त युवक युवतियां बड़ी संख्या में दीक्षित होकर आ रहे हैं। ये तस्वीर बयां करती है छत्तीसगढ़ के चौमुखी विकास की बहती अविरल धारा को, जहां हर कोई कदम से कदम मिलाकर बढ़ रहा है उजाले की ओर।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10:30 होने जा रहे हैं। आइए अब आपको बता दें मौसम के बारे में।

स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अंबिकापुर नगर का अधिकतम तापमान रहा 35.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 22.9 डिग्री सेल्सियस। अब आइए आपको रूबरू करा दें आज के हमारे मुख्य कार्यक्रमों से। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद हम लेकर आएंगे सुबह 11:05 पर। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे CIET और NCERT द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन। दोपहर 1:10 पर महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण होगा। इसमें आज घर आंगन मेल और आईनाक्रम होंगे मुख्य आकर्षण। आपका चहेता ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज हम लेकर आएंगे दोपहर 1:40 पर। दोपहर 2:30 पर सुनिएगा गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। गैर जंगली हाथियों से जुड़ी जानकारी और उनके विचरण क्षेत्रों के बारे में हम आपको बताते हैं शाम 5:00 हमारे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ में। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी और फिल्मी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भजन संध्या। युवाओं की वाणी युववाणी हम लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे विचार बिंदु कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोक संगीत कार्यक्रम गोधुली। फिल्म संगीत कार्यक्रम माधुरी का प्रसारण होगा शाम 6:30 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुनेंगे रात शाम 7:05 पर। आज शाम 7:20 पर हमारे ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण होगा जिसमें आज होगी किसान वाणी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे फोन इन लाइव कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। इस कार्यक्रम के माध्यम से

आप हमारे विशेषज्ञ से लाइफ परामर्श ले सकते हैं, कॉल मिलाएं। रात 8 बजे मशहूर कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश, जिसमें सोशल मीडिया पोस्ट पर मिले कमेंट्स के आधार पर हम सुनाते हैं आपकी फरमाइश के गीत, होगा इसका प्रसारण रात 8 बजे से।

रात 9:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत, रात 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे मनी टॉक और मंथन, रात 10 आप सुनेंगे ईमेल की गूंज कार्यक्रम का रात्रिकालीन भाग, और रात 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन। ये हैं आज के हमारे कुछ मुख्य आकर्षण। आकाशवाणी का यह अंबिकापुर केंद्र है, लीजिए अब पेश है नए तराने।

आतिफ असलम की आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे थे। फिल्म का नाम था टाइगर जिंदा है। इरशाद कामिल की शब्द रचना थी, संगीत दिया था विशाल शेखर ने।

0: विशाल मिश्रा, नीति मोहन और साथियों के गायन स्वरों में आप सुन रहे थे ये गीत। फिल्म का नाम था गदर 2। सईद कादरी की शब्द रचना थी, संगीत दिया था मिथुन ने। सुनते रहिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर नए तराने।
1: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
2: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
1: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
2: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
1: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।

फिल्म शिद्दत का ये गीत आप सुन रहे थे, स्वर शब्द और संगीत मनन भारद्वाज का। आइए अब आपको सुनाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म तड़प का ये गीत। इरशाद कामिल की शब्द रचना थी, संगीत दिया है प्रीतम ने।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था तड़प। इरशाद कामिल की शब्द रचना थी, संगीत दिया था प्रीतम ने। कार्यक्रम में जाते जाते आपको सुनाते हैं राघव चैतन्या की आवाज़ में ये अगला गीत। फिल्म का नाम है एक विलेन रिटर्न्स। कुणाल वर्मा ने गीत के बोल लिखे हैं, संगीत दिया है कौशिक गुड्डू ने।

0: राघव चैतन्य की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था एक विलन रिटर्न्स। कृणाल वर्मा ने गीत के बोल लिखे थे, संगीत दिया था कौशिक गुड्डू ने। इसी के साथ ही नए तराने कार्यक्रम का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अब इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो साथी पौलोमी को दीजिए इजाज़त। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है, मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11 बजने को हैं कुछ ही पलों में हिंदी में राष्ट्रीय समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा है। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडापट्टी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दोहरीघाट औड़िहार यात्री पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया। इससे मऊ और गाजीपुर जिलों के यात्रियों को किफायती और सुरक्षित रेल सेवा उपलब्ध होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस रेल सेवा का विस्तार जल्द ही वाराणसी तक किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख 4 लेन का गलियारा गंगा के दक्षिण में प्रयागराज कानपुर आगरा दिल्ली मार्ग के साथ विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म आरोप में। माया गोविंद के शब्दों को संगीत से सजाया था भूपेंद्र हजारिका ने, और इस गीत को सुनना चाहा था आप सभी ने अमरपुर पिंडरा से दीपक कुमार, रोशन कुमार और बंशीलाल, धरसीमा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, पीपरपारा, पालचुआ, मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता, नितिन, वंशिका, भानुप्रिया और इनके परिवार के सभी सदस्य, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, और ग्राम राजापुर लकड़ापारा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेल साय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा संतोषी और रूपमती मरकाम। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद, और ये कार्यक्रम आधारित होता है आपकी फरमाइशों पर जिन्हें आप भेजते हैं पोस्ट कार्ड के जरिए। हमारे कुछ श्रोता ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि वे किस तरह इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, तो आपको परेशान ज़रा भी नहीं होना है क्योंकि कार्यक्रम के ही दौरान कार्यक्रम का पता भी हम ज़रूर बताते हैं। तो सुनते रहिए आकाशवाणी अंबिकापुर, और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद।

आंधी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। गुलजार के लिखे इस गीत के लिए संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। और जैसा कि श्रोताओं, हमने इस गीत से पहले आपको ये कहा था कि कार्यक्रम के दौरान ही कार्यक्रम का पता भी हम ज़रूर बताते हैं, तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारे इस कार्यक्रम का पता। आपको लेना है एक पोस्ट कार्ड और उस पर लिखना है सबसे पहले कार्यक्रम का नाम, आपकी पसंद, आकाशवाणी अंबिकापुर। इसे एक बार फिर सुन लें। आपको लिखना है सबसे पहले कार्यक्रम का नाम, आपकी पसंद, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, पिन है 497001। तो श्रोताओं, आप भी अपनी फरमाइशें हमें पोस्ट कार्ड पर लिखकर जल्द से जल्द रवाना कर दीजिए और सुनते रहिए आपका पसंदीदा फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम, आपकी पसंद। अभी आप सुन रहे थे फिल्म आंधी का ये गीत, और अब आप सुनेंगे फिल्म आरजू से एक गीत। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, शब्द रचना हसरत जयपुरी की, संगीत शंकर जय किशन का, और इन दोनों ही गीतों की मिली जुली फरमाइश कुछ इस तरह है। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेववानी, संगीता नेववानी, आकाश नेववानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सीता सागर, आयुषी हनी और परिवार के सभी सदस्य। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू, वंदना और श्रीवास्तव परिवार के सभी सदस्य। धमतरी से रामचंद माखीजा, सविता बेबी, स्वाति माखीजा और पूरा माखीजा परिवार। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम और इनके बहुत सारे साथी। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही सरिता गवाणकर, सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवाणकर। विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश, वैशाली, श्वेता,

में ध्वनि और इनके परिवार के सभी सदस्य, ग्राम बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे

0: अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
0: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
0: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त शबनम।

आप आए बहार आई। मोहम्मद रफ़ी को इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत के लिए संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम आपकी पसंद इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे फिल्म आस का पंछी से ये गीत। गीत लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का, आवाज़ें लता मंगेशकर और मुकेश की, और इन दोनों ही गीतों की मिली जुली फरमाइश कुछ इस तरह है। लोनी से रज़ा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा, गांव परसा टोली, ज़िला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी खुमेंद्र और तुषारनी मसिया, बलौदा अकलतरा से दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, गांव फरांसी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरिया नामल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, गांधीबाग नागपुर से अशोक मीनाक्षी सावलानी, सारंग भावना जावड़ेकर, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू।
3: बेबी को बेस पसंद है।
4: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम, इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
3: बेबी को बेस पसंद है।
5: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे फिल्म अनुरोध से ये गीत। आनंद बख्शी की शब्द रचना है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज किशोर कुमार की है।

अनुरोध फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत के लिए संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे हसरत जयपुरी का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से ये गीत

आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की और इन दोनों ही गीतों की मिली जुली फरमाइश कुछ इस तरह है। सनावद मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश, इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश गौण और मोहम्मद शादाब खत्री, नैनदास शीला दीवान, ओम प्रकाश रुक्मणि, जयप्रकाश प्रीति दीवान, सिद्धांत सौर्य और कुमारी सानवी संग पूरा परिवार। आप हैं कटघोरा चिरमिरी रोड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश कुमार वर्मा, करुणा देवी वर्मा और वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी, मालती स्वाति प्रयाग चौधरी।

एन इवनिंग इन पेरिस। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। कपड़े बेचने की आड़ में गांजे की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 12 तस्कर गिरफ्तार। करीब 2 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया गया। और आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर प्रदेश भर में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। कल वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पूलिंग को बढ़ावा दें। यह जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। प्रधानमंत्री ने स्कूलों से भी आग्रह किया कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। साथ ही उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि जब तक हालात सामान्य न हो सोने की खरीद को टालें। छत्तीसगढ़ ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के उत्कृष्ट रखरखाव में देशभर में दूसरा स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश के सीहोर में आयोजित योजना के रजत जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य को सम्मानित किया। राज्य की ओर से पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह और प्रमुख अभियंता के कटारे ने पुरस्कार ग्रहण किया। रायपुर रेंज पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जिलों में संयुक्त नाकेबंदी के दौरान कपड़ा फेरी वालों की आड़ में की जा रही अंतर्राज्यीय तस्करी का खुलासा हुआ। पुलिस ने 378 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 1,98,00,000 रुपए बताई गई है। कार्रवाई में 11 वाहन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 12 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो कपड़ों के ढेर के बीच छिपाकर गांजा ओडिशा से मध्य प्रदेश ले जा रहे थे। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ये दिन विश्वभर में नर्सिंग पेशेवरों के लिए बेहतर सहायता, सुरक्षा और संसाधनों की आवश्यकता को बताता है। ये दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाता है। जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद एक बच्चे की मौत और 3 अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम और एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए। बीमार बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। प्रशासन ने तरबूज के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। इस बीच बच्चे का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि मृतक बच्चे के अंगों में बदलाव मिला है। उसका बिस्तर प्रिजर्व किया गया है, जिसे जांच के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश में बारिश में कमी आने के बाद लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहने से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लेकर श्रीलंका के उत्तरी तट के ऊपर बना हुआ है, जिससे कल कुछ इलाकों में विशेषकर दक्षिण छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव और बीजापुर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, वज्रपात और तेज हवा चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। कपड़े बेचने की आड़ में गांजे की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 12 तस्कर गिरफ्तार। करीब 2 करोड़ रुपए का गांजा बरामद। और आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर प्रदेश भर में हो रहे हैं अनेक कार्यक्रम। इसी के साथ

0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ ही में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकेगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स पर और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है NCERT और CIET द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत विचार से जिसे हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, मुश्किलों को कुछ यूं हराते हैं, चलो आज थोड़ा मुस्कुराते हैं। जी हाँ श्रोताओं, मुस्कान वो रोशनी है जो अंधकार और निराशा से भरे किसी भी हृदय को उजाले से भर सकती है। याद रखिए,
2: आपकी मुस्कान किसी के जीवन का सबसे खूबसूरत उपहार बन सकती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है जेल रोड जालंधर से, रोशन जहां, मन्नत जहां और इशरत जहां का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी का।
0: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
2: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
2: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी,
2: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
2: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता
2: है जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
2: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मतिभ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
2: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
0: जी।
2: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
2: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
2: जी।
0: तो क्या हम

0: थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
1: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिएं। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं।
0: जी
1: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओ, ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने।
1: जी
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
1: जी
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है। और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: अपना और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा,
3: तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
4: धीरे से,
3: माँ उठ जाएगी।
4: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से, चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ,
0: आओ चलो खाते हैं। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ, पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा। और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चलें।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे, इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन, और तेज दौड़ो। देखो, मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे, तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन, मोहन।
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई

0: घर से निकलने का टाइम है, लगता है कुछ गड़बड़ है, चलू देखू। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया, यही पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे, तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
2: विद्या, विद्या,
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन, मोहन, मोहन, कुछ बोल मोहन।
0: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
0: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
0: हाँ हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ, ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ, चलिए चलिए।
0: आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं
1: जी।
0: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
0: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
4: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
0: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
4: ओहो, अच्छा इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई, और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए, ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
0: अच्छा डॉक्टर साहब।
4: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
4: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
0: हाँ जी,
4: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
0: जी।
4: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है।
0: जी।
4: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
4: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी।
4: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
4: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
0: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
4: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
4: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए
0: जी।
1: और अगर लू लग जाए तो?
0: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
4: भाई लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए
1: जी।
4: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
1: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
4: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
0: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
1: जी।
0: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
1: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
4: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन

0: पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी न खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
1: गर्म हवा से रहे हम दूर,
2: ठंडक में खेले भरपूर।
1: ठंडक में खेले भरपूर।
0: आग बरसाती धूप।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
4: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
5: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला
6: इन्हें हमारा सलाम।
5: तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
7: साथियों नमस्कार।
5: साथियों, भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
7: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
5: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक का।
7: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
5: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
7: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा,
5: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
7: उनके शौर्य को देख कर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
5: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
7: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
1: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
0: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनकी नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
1: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहां के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते थे तो अल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
0: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
1: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब अल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
0: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुंच गए।
1: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
0: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
1: 3 दिसंबर 1971 का दिन, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
0: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
1: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
0: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
1: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक अल्बर्ट एक्का के पास।
0: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
1: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
0: लेकिन लांस नायक अल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगी।
1: वो जगह माइंस से पटी हुई थी, इस कारण भी बहुत से भारतीय सैनिक हताहत होने लगे। दुश्मनों की मशीन गनें बंकरों से लगातार गोलियां बरसा रही थी। भारतीय सैनिक रेंगते हुए इंच इंच करके आगे बढ़ रहे थे।
0: लांस नायक अल्बर्ट एक्का को समझ में आ गया था कि जब तक पाकिस्तानी मशीन गनों को शांत नहीं किया जाएगा, भारतीय सैनिक बहुत बड़ी संख्या में हताहत होते रहेंगे।
1: और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हथगोलों से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया। इसमें उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन यह काफी नहीं था। एक पाकिस्तानी बंकर से अभी भी लगातार गोलियों की बौछार आ रही थी।
0: और अब समय था इतिहास रचने का। अल्बर्ट एक्का लगातार आगे बढ़ते गए। उनके पास हथगोले थे, गोलियों की बौछारों

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही

0: से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
1: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
0: फिर क्या था, लांस नायक अल्बर्ट एक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
1: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। अल्बर्ट एक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक अल्बर्ट एक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
0: लेकिन इस युद्ध में अल्बर्ट एक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
1: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
0: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम।
2: परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है।

मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12:30 हो चुके हैं। अब पेश है एक ही शब्द पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन।

चयन सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार, आदाब। आज शबनम की ओर से श्रोताओं, आज के चयन कार्यक्रम में हमने खास शब्द ढूंढा है, हम तुम। जी हाँ, हम तुम। दो एहसासों से जन्मी एक खूबसूरत दुनिया है, और सुनने में हम तुम ये जो शब्द है ना, वो केवल दो सरल शब्द लगते हैं, लेकिन अपने भीतर ये भावनाओं का एक विशाल संसार समेटे हुए होते हैं। मैं और तुम जब साथ साथ चलते हैं, हम बन जाते हैं। तब केवल दो लोग नहीं जुड़ते, बल्कि दो धड़कनें, दो सोच, दो सपने और दो जीवन एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। यही हम तुम का सबसे सुंदर अर्थ है, साथ होने का एहसास। जीवन की यात्रा में कई लोग मिलते हैं, कई चेहरे गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ समय बिताने पर मन को एक अनकहा सुकून मिलता है। उनके साथ बातचीत केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भावनाएं भी बोलने लगती हैं। हम तुम के विषय में और भी बातें करेंगे, सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर और इस वक्त आप सुन रहे हैं एक ही शब्द पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन। और आज जिस खास शब्द का चयन हमने किया हुआ है वो है हम तुम। हम तुम का रिश्ता किसी बंधन का नाम नहीं बल्कि विश्वास और अपनत्व की वो डोर है जो बिना शोर किए दिलों को जोड़ देती है। इसमें दिखावा नहीं होता, अधिकार का बोझ नहीं होता, केवल एक सहज साथ होता है। कभी हंसी में, कभी खामोशी में, कभी छोटी सी नाराजगी में और कभी एक प्यारी मुस्कान में ये रिश्ता हर रंग में और भी खूबसूरत लगने लगता है। कभी कभी हम तुम बिल्कुल सुबह और उसकी पहली किरण जैसे लगते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे, लेकिन साथ हों तो पूरा आसमान रोशन कर देते हैं। जैसे बारिश और मिट्टी की खुशबू, जैसे चांद और चांदनी, एक की उपस्थिति दूसरे की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। यही प्रेम और साथ का वास्तविक सौंदर्य है। इस रिश्ते की सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ शब्दों से अधिक एहसासों की अहमियत होती है। कई बार बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ समझ में आ जाता है। सामने वाले की आंखों की उदासी, आवाज़ की थकान या मुस्कान की चमक, सब कुछ दिल महसूस करने लगता है। यही वो गहराई है जो हम तुम को केवल रिश्ता नहीं बल्कि

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी अंबिकापुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं एक ही शब्द पर आधारित फिल्म गीतों का कार्यक्रम चयन। इस वक्त 12:45:19 और आपके साथ कार्यक्रम चयन लेकर मैं हूं शबनम। श्रोताओं, आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में रिश्ते अक्सर समय और परिस्थितियों के दबाव में कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसे समय में हम तुम का सच्चा अर्थ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि रिश्ते केवल साथ रहने से नहीं बल्कि साथ महसूस करने से बनते हैं। जब दो लोग एक दूसरे की खुशियों में मुस्कुराते हैं और दुखों में सहारा बनते हैं तभी हम तुम का रिश्ता पूर्ण होता है। हम तुम केवल दो शब्द नहीं बल्कि जीवन का एक मधुर संगीत है।

आकाशवाणी अंबिकापुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन, जो कि आधारित है एक ही शब्द पर, और आज का खास शब्द है हम तुम। श्रोताओं, एक मुकम्मल एहसास हम और तुम मिलकर जब हम तुम बनते हैं तो दुनिया के सारे गणित पीछे छूट जाते हैं। ये महज दो लोगों का साथ नहीं बल्कि दो दुनियाओं का एक हो जाना होता है। जैसे कागज और कलम, जैसे धूप और छांव, एक के बिना दूसरे की पहचान अधूरी होती है। जिंदगी के सफर में रास्ते मायने नहीं रखते, मायने रखता है वो हाथ जो आपके हाथ में होता है। हम तुम का मतलब है मुश्किलें आएं तो साथ मिलकर लड़ें, और खुशियां आएं तो उन्हें आधा आधा बांटकर दुगुना कर लें। है ना एक प्यारा सा गणित।

जी हाँ, हम तुम। तो चयन कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं एक ही शब्द हम तुम पर आधारित कुछ गीत, और हम कर रहे हैं हम तुम पर कुछ प्यारी प्यारी बातें भी। दुनिया की नज़रों में हम दो अलग अलग शख्स ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम अगर बात करें हम की अलग से और तुम की अलग से, तो बात कुछ अधूरी सी लगती है। जब तक हम उसे एक साथ मिलाकर हम में न जोड़ें, तो बात पूरी नहीं हो पाती। हम तुम महज आज की बात नहीं, ये उन गुजरे हुए लम्हों का संदूक है जिसमें हमारी पहली मुलाकात की झिझक, वो पुरानी तकरार और फिर मान जाने की मिठास भरी होती है। रेडियो पर जब कोई पुराना गीत बजता है ना, तो आप अक्सर ये कहते सुनते पाते होंगे कि ये हम तुम यानी तुम्हारा और हमारा दोनों का पसंदीदा गीत है। कई बार कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं आपकी ज़िंदगी में कि पहले वो केवल आपकी पसंद होती है, जब आप किसी के साथ मिलकर सोचते हैं या देखते हैं या आप अपने अनुभव को शेयर करते हैं, तो वो हम तुम दोनों की पसंदीदा चीज़ हो चुकी होती है। कहते हैं कि अगर हम सफ़र अच्छा हो तो रास्ता छोटा लगने लगता है, पर हम तुम का रिश्ता रास्तों से परे है। ये उस दुआ की तरह है जो हम एक दूसरे के लिए मांगते हैं, जहाँ खुद से पहले दूसरे की सलामती की फ़िक्र हो, वही असली हम तुम है। तुमसे हम तक का सफ़र ही तो मोहब्बत है।

कार्यक्रम में आज आपने सुने खास शब्द हम तुम पर आधारित कुछ गीत। श्रोताओं, हम तुम दो किनारे हैं जिन्हें मोहब्बत की नदी जोड़ कर रखती है। आज के चयन कार्यक्रम में आपने जिन फिल्मों के गीत सुने वे थीं लावा, मिलन, शोला और शबनम, आरंभ और धरती कहे पुकार के। आवाज़ें रहीं लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आरती मुखर्जी और मुकेश की। और आज का ये चयन कार्यक्रम आपके लिए पेश किया आपकी रेडियो दोस्त शबनम ने।

0: अभी आप सुन रहे थे एक ही शब्द पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन, और आज का खास शब्द रहा श्रोताओं हम तुम। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन का 1 बजने को है समाचार, कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ. सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मैं श्री हिमंत बिस्व सरमा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुच्चेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में

0: पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपये नकद और पदक शामिल हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है खेती की बात का पुनः प्रसारण। सामयिक जानकारी का विषय है कृषि वानिकी का महत्व।
2: भूमि की ऊपरी सतह की मिट्टी का एक बार क्षरण या अत्यधिक विदोहन होने पर इसे पुनः उपजाऊ बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। मिट्टी ऐसा ही प्राकृतिक संसाधन है जिसका नवीनीकरण यदि असंभव नहीं पर मुश्किल अवश्य है। इस प्राकृतिक संसाधन को हमेशा से पर्यावरणीय और सामाजिक उथल पुथल ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। मानव प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने का मुख्य कारक है, जिसके फलस्वरूप आज पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और भूमि की उत्पादन क्षमता भी प्रभावित हो रही है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही कृषि में फसलों और पशुओं के साथ साथ वृक्षों को सम्मिलित किया जाता रहा है। कृषि क्षेत्र में कृषि वानिकी एक महत्वपूर्ण कृषि पद्धति है जिसका आज भी उतना ही महत्व है। आज के आधुनिक युग में भी कृषि वानिकी द्वारा आम किसान काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए शहरीकरण के कारण कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल में कमी और बढ़ते हुए कृषि रसायनों के कारण भूमि की उपजाऊ क्षमता में गिरावट के कारण न केवल भविष्य में मनुष्य के लिए खाद्यान्न की समस्या हो सकती है बल्कि पशुओं के लिए चारागाह और चारे के अभाव और ईंधन के लिए लकड़ी की कमी की संभावना भी प्रबल है। कृषि वानिकी द्वारा न केवल खेती योग्य भूमि और जंगलों पर बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव कम किया जा सकता है बल्कि इसके द्वारा मृदा संरक्षण के अलावा पर्यावरण प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। कृषि वानिकी भू उपयोग की वह पद्धति है जिसके अंतर्गत सामाजिक और पारिस्थितिकी रूप से उचित वनस्पतियों के साथ साथ कृषि फसलों या पशुओं को लगातार या क्रमबद्ध ढंग से शामिल किया जाता है। कृषि वानिकी में खेती योग्य भूमि पर फसलों के साथ साथ वृक्षों को भी उगाया जाता है। इस प्रणाली द्वारा उत्पाद के रूप में ईंधन की लकड़ी, हरा चारा, अन्न, मौसमी फल इत्यादि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रणाली को अपनाने से भूमि की उपयोगिता बढ़ जाती है। मानव जीवन के लिए संतुलित पर्यावरण आवश्यक है। वनों की कटाई, पानी की कमी और अन्य कारकों द्वारा मृदा का क्षरण होने से पर्यावरण संतुलन निरंतर बिगड़ता जा रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि ऐसी कृषि पद्धति अपनाई जाए जिसमें खाद्यान्न, लकड़ी और चारा की पूर्ति भी हो जाए और पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे। कृषि वानिकी की महत्ता इस संदर्भ में वर्तमान समय में काफी बढ़ गई है। इसके द्वारा भूमि की उर्वरा बढ़ाई जा सकती है, सीमित भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सकता है, ईंधन और इमारती लकड़ी प्राप्त की जा सकती है, बंजर भूमि का सुधार किया जा सकता है और पशुओं को वर्ष भर हरा चारा मिल सकता है। इसके अलावा उद्योगों हेतु कच्चा माल का उत्पादन किया जा सकता है। वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में भूमि का तापमान बढ़ने से रोकते हैं जिससे भूमि में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट होने से बचाया जा सकता है जो हमारी फसलों के लिए लाभकारी होते हैं। वृक्ष अपनी लंबी और गहरी जड़ों के द्वारा भूमि की निचली सतह से पोषक तत्वों को ग्रहण करके भूमि की ऊपरी सतह पर लाने में मदद करते हैं। यदि सूखा, ओलावृष्टि, आंधी, तूफान

0: प्राकृतिक प्रकोपों के कारण सालाना फसल नष्ट हो जाती है तो भी वृक्षों द्वारा हमें कुछ न कुछ प्राप्त हो सकता है। कृषि वानिकी को अपनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है कि किस प्रकार के पेड़ वहाँ की जलवायु के अनुकूल हैं, वहाँ की सामाजिक आवश्यकता कितनी है, पेड़ों के साथ किस प्रकार की फसल उचित और उपयोगी होगी। कृषि वानिकी को सफल बनाने हेतु यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जलवायु और भूमि के अनुसार पेड़ और फसल का चुनाव कर लिया जाए। पेड़ और फसल भी एक दूसरे के अनुरूप हों जिससे उन्हें एक साथ उगने पर अधिक उत्पादन मिल सके। पेड़ और फसलों के बीच पोषक तत्वों, वायु, सौर ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धा कम करने के दृष्टिकोण से समय समय पर पेड़ों को काटते छांटते रहना चाहिए। इस सब के लिए किसानों को मिट्टी, जल और वृक्षों संबंधी अच्छी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है।
1: कृषि वानिकी का महत्व, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे सामयिक सुझाव खेती की बात के अंतर्गत। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं। अब बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन।

नमस्कार बहनों, घर आंगन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो सखी अनीता। बहनों, अभी गर्मी का मौसम है और देखिए, गर्मी का मौसम अपने साथ तेज़ धूप और तपन लेकर आता है। ऐसे समय में जहाँ हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, वहीं हमारे घर आंगन की हरियाली और पौधों को भी विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। बहनों, पेड़ पौधे केवल हमारे घर की शोभा ही नहीं बढ़ाते, बल्कि हमें शुद्ध हवा, ठंडक और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। बहनों, गर्मियों में पौधों की देखभाल के लिए कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, जैसे सुबह या शाम पौधों को पानी देना, मिट्टी में नमी बनाए रखना, सूखे पत्तों को हटाना और पौधों को तेज़ धूप से बचाने के लिए छायादार व्यवस्था करना, गमलों में लगे पौधों के लिए जैविक खाद और समय समय पर गुड़ाई भी बहुत लाभदायक होती है। और यदि हम थोड़ी सी मेहनत और प्रेम से अपने पौधों की देखभाल करें तो हमारी बगिया पूरे मौसम हरी भरी बनी रह सकती है। बहनों, पेड़ पौधे प्रकृति का अनमोल उपहार हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, वातावरण को शुद्ध रखते हैं और बढ़ती गर्मी को कम करने में मदद करते हैं। आज पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हर व्यक्ति का योगदान आवश्यक है। यदि हर घर एक पौधा लगाए और उसकी जिम्मेदारी से देखभाल करे तो हमारा वातावरण अधिक सुंदर और सुरक्षित बन सकता है। पेड़ों से है जीवन सारा, इनसे ही खुशहाल जग सारा, धरती की मुस्कान है ये, प्रकृति की वरदान है ये। तो बहनों, ये तो हुई हमारी बातचीत और अब चलते हैं क्रम आईना की ओर। आइए सुनते हैं।

आईना के अंक में स्वागत है बहनों। सरगुजा की रिंकी सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीता गोल्ड मेडल। जी हाँ बहनों, सरगुजा जिले की खिलाड़ी रिंकी सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर जिले, प्रदेश एवं देश का नाम रोशन किया है। रिंकी ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में 3 से 7 मई तक आयोजित तीसरी इंटरनेशनल टारगेट वॉल अचीवर्स कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। सरगुजा जैसे दूरस्थ और सीमित संसाधनों वाले क्षेत्र से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक

स्वर्ण पदक जीतना रिंकी सिंह की कड़ी मेहनत, अनुशासन एवं समर्पण का परिणाम है। उनकी यह उपलब्धि क्षेत्र की अन्य बेटी एवं खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसके पहले भी वह अर्ध पदक और सम्मान हासिल कर चुके हैं, लेकिन इस बार वह भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना उनकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जीरा फूल की खेती से बदल गई जिंदगी। बहनों, जीवन में सफल होने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियों की जरूरत ही काफ़ी नहीं है। बड़ी डिग्रियां हमें आगे बढ़ने में ज़रूर मदद करती हैं, पर सफल होने के लिए हमें दृढ़ संकल्प और हमारी मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। आज हम ऐसी ही एक बहन की बात कर रहे हैं, पूर्णिमा बासिन की। कुछ साल पहले तक पूर्णिमा के लिए घर चलाना एक रोज़ की जद्दोजहद थी। खेत था, मेहनत थी, लेकिन आमदनी उतनी नहीं थी कि बच्चों की फीस भर सके या घर की ज़रूरतें बिना सोचे समझे पूरी कर सके। वही पूर्णिमा आज बलरामपुर रामानुजगंज ज़िले में लखपति दीदी के नाम से जानी जाती है। बदलाव की शुरुआत हुई जब वे स्व सहायता समूह से जुड़ी और ऋण मिला, और उन्होंने उस पैसे को किसी साधारण काम में नहीं लगाया। उन्होंने चुना जैविक खेती का रास्ता और उगाया जीरा फूल चावल, एक पारंपरिक सुगंधित किस्म जिसकी मांग आज पूरे प्रदेश में है। अब वह बच्चों को बेहतर पढ़ा पा रही हैं और परिवार की ज़रूरतें भी आसानी से पूरी हो पा रही है, और सबसे बड़ी बात अब उन्हें किसी

उन्होंने उस पैसे को किसी साधारण काम में नहीं लगाया, उन्होंने चुना जैविक खेती का रास्ता और उगाया जीरा फूल चावल, एक पारंपरिक सुगंधित किस्म जिसकी मांग आज पूरे प्रदेश में है। अब वह बच्चों को बेहतर पढ़ा पा रहे हैं और परिवार की ज़रूरतें भी आसानी से पूरी हो पा रही है, और सबसे बड़ी बात अब उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। सही दिशा में किया गया काम हमें सफलता जरूर दिलाता है। बहनों, सरपंच बहू ने बदली गांव की तस्वीर। हरियाणा के यमुना नगर में पश्चिमी यमुना नगर के किनारे बसा गांव कांजनू। कहने को तो यह गांव है, लेकिन यहां शहर के पॉश एरिया सा अनुभव। यहां की सरपंच बहू रिम्पी के प्रयास से ये सब संभव हुआ है। यहां बेटियों को पलकों पर बैठाया जाता है। स्नातक सरपंच रिम्पी के प्रयासों का सुफल स्पष्ट दिखाई देता है। न केवल जन्म से पहले बल्कि बाद में भी बेटियों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। गांव के हर घर की सुरक्षा के लिए 33 हाईटेक कैमरे लगे हैं। सुबह शाम ग्रामीणों की सैर के लिए करीब 2 एकड़ में बलिदानी उधम सिंह पार्क बना है। 8 एकड़ में खेल का मैदान निर्माणाधीन है। बेटियों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हॉकी की टीम का गठन किया है। टीम में 25 लड़कियां हैं और इनके लिए एक महिला कोच भी है। लिंगानुपात में यहां लड़कियां आगे हैं। 1000 लड़कों पर यहां 1400 लड़कियां हैं। विशेष बात यह भी है कि सरपंच प्रत्येक बेटी के जन्म पर 5100 का शगुन देती हैं। शासन की ओर से उनको मिलने वाला मानदेय बेटियों के नाम रहता है। सरपंच बहू रिम्पी ने गाँव की तस्वीर ही बदल दी है। भावना गौतम का BDS परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन। विश्रामपुर की होनहार छात्रा भावना गौतम ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर विश्रामपुर सहित पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित BDS चतुर्थ वर्ष सत्र 2025-26 की वार्षिक परीक्षा में भावना ने प्रवेश की टॉप 10 मेरिट सूची में 3रा स्थान हासिल किया है। तो बहनों, आईना के अंक में आज यहीं तक।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है।
1: अरे?
0: डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: इस संदेश के बाद अब समय है घर आंगन मेल क्रम का। पहला मेल आया है ग्राम पीपरलोड सरगांव मुंगेली से पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, दीपेश और शिवांश वर्मा जी का, और ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ईश्वरा पैकरा जी का भी मेल हमें प्राप्त हुआ है। साथ ही मजनू के टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक जी का मेल हमें प्राप्त हुआ है। और आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर फिल्म नीलकमल से गीत।

0: अगला मेल ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल और दिव्यांश बघेल और उनके परिवार का आया है। और साथ ही पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन जी का मेल प्राप्त हुआ है। और साथ ही ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी और ज्योति वर्मा जी का मेल प्राप्त हुआ है। आप सभी ने फिल्म निकाह से महेंद्र कपूर की आवाज़ में गीत पसंद किया है, तो आइए सुनते हैं।
1: अभी अलविदा मत कहो।

अगला मेल आया है जेल रोड रायगढ़ से, श्रीमती उमा तिवारी, बेबी जोई, यामिनी तिवारी, रिंकी केलविका गोस्वामी, नरेंद्र कुमार तिवारी और महेंद्र कुमार तिवारी जी का। आपने लिखा है, सभी बहनों को हमारा नमस्कार। प्रीति जी के द्वारा 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस पक्षी दिवस पर पक्षियों से जुड़ी रोचक बातें कही गई, सुनकर ढेर सारी जानकारी मिली। साथ ही पक्षियों से जुड़ी गीत भी सुनवाए गए। तो समीक्षात्मक मेल लिख भेजने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमें एक और मेल प्राप्त हुआ है, सालार पहलगाम कश्मीर से गुलशन अख्तर, पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन और केसर उद्दीन का। तो आप सभी ने पसंद किया है ये वादा रहा फिल्म से। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और कार्यक्रम का अंतिम मेल दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से भारती वर्मा, शकुन वर्मा, रुक्मणी वर्मा, रजनी वर्मा, प्रतिमा वर्मा, द्रौपदी वर्मा, धनेश्वरी वर्मा और कुमारी पायल वर्मा का मेल हमें प्राप्त हुआ है। साथ ही लछनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू जी का मेल हमें प्राप्त हुआ है। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म मीरा के मोहन से अनुराधा पौंडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाज़ में। आइए सुनते हैं ये गीत।

बहनों, इसी गीत के साथ हमारा भी चलने का समय हो रहा है, तो बस चलते चलते इतना ही कहेंगे कि गर्मी की इस धूप में रखना तन का ध्यान, बार बार पानी पिए, यही सरल उपचार। तो आज के कार्यक्रम से दीजिए हमें विदा। आप सभी को अनीता का नमस्कार।

बहनें सुन रही थी अभी अपना कार्यक्रम घर आंगन। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:40 हो चुके हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

ईमेल की गूंज सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार आदाब, आज शबनम की ओर से। साथियों, ईमेल की गूंज सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक ऐसा पुल है जहां डिजिटल दुनिया की रफ्तार और दिल के जज्बात एक साथ मिलते हैं। तो चलिए देर न करते हुए सिलसिला शुरू करते हैं आज आपकी मेल पढ़ने का। आज के कार्यक्रम में बहुत सारे मेल हमें मिले हैं, हमारे सामने हैं और हम पहले गीत के लिए इन्हें पढ़ेंगे। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, कुमारी सुजाता पोहरकार, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, आप हैं अनारकली बाजार जगराओं से, खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैंकरा, घुरनी पैंकरा, करिश्मा पैंकरा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्य पैंकरा, परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा संघई परिवार, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और पूरा नेभवानी परिवार, ग्राम सिरकोंतगा, महादेवपारा, पोस्ट लहपटरा, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम राजवाड़े, परमान राजवाड़े, लल्लू, बल्लू, घनु, अमित, अभिजीत, गोविंद, तरुण, सकलराम, प्रियांशु, राजकुमारी, नेहा, नायरा, समायरा, खुशी, सौम्या, उमेश्वरी, मुन्नीबाई, सोनामती, माया राजवाड़े, सिमरन राजवाड़े और पूरा राजवाड़े परिवार, दिलहरन गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, आप सब हैं बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, शास्त्री नगर बीड शहर से किसन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल, अमरावती से साधना रानी और किशोर गुप्ता। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म प्यासा सावन से ये गीत संतोष आनंद के शब्द हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और आवाज़ है लता मंगेशकर की।

प्यासा सावन, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। आकाशवाणी अंबिकापुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज। सुरों की इस गूंज में आज आपकी पसंद के रंग घुले हुए हैं और आप अपनी ही फरमाइशें अपने पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल की गूंज सुन रहे हैं। मैं हूं आज इस कार्यक्रम में आपके साथ शबनम। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म भोला भाला से, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत आर डी बर्मन का, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। और इस गीत के लिए मेल मिले आप सभी के, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान, सौरव, शाइना और मैंडी शर्मा, कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज, ऋषभ, आप हैं लोरमी ग्राम चचेड़ी से, शिव कुमार चौहान, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष, आप हैं बाबा कुटी रायगढ़ से, झारखंड से श्वेता सिंह, सुरेंद्र सिंह, गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, आप लोग हैं दरियापुर भावली महाराष्ट्र से, पश्चिम बंगाल रानीगंज से रेहान शर्मा और करणदीप, ग्राम अनुज

नगर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़े, बबीता राजवाड़े, धिया राजवाड़े, काव्या और मंजू राजवाड़े, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह आप हैं, पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर और कुमार गौरव मधुरकर, आप सभी की फरमाइश पर फिल्म भोला भाला से ये गीत।

0: अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज। आज ये कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त शबनम। अजीब जादू है इन ईमेल्स में, शहर भले ही दूर हो पर शब्द हमें करीब ले आते हैं। शब्द ही नहीं, आपकी भावनाएं, आपकी फरमाइशें, सब कुछ कहीं ना कहीं हमें कुछ जादू सा एहसास दे जाते हैं कि आप हमारे आसपास ही हैं। तो चलिए अगले गीत के लिए आपके मेल्स हम शामिल किए देते हैं। रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल नारे, बुलढाणा वटशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा मानकर, दीपाली और श्लोक, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा, आप हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, पश्चिम विहार नई दिल्ली से लव शर्मा और रोशनी शर्मा, मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, शरीफ नवाज, आप हैं गिरिडीह झारखंड से, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंदर और रौनक सेन, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, सोनल, बेबी सिया, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म खेल खेल में से ये गीत गुलशन बावरा के शब्दों को संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने, और आवाज़ है शैलेंद्र सिंह की।

0: शैलेंद्र सिंह और साथियों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म खेल खेल में। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के संबंध में हम आपको एक सूचना देना चाहेंगे। ईमेल की गूंज में आप अपनी फरमाइशें भेजने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, वहां प्रोफाइल में सबसे ऊपर पिन किए गए पोस्ट को देखें। उस पोस्ट में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही गूगल फॉर्म खुल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी फरमाइश हम तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए फरमाइश को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए ज़रूर प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तुत करते रहे हैं। कृपया ध्यान रखें कि लिंक प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही चालू रहता है और इसी दौरान आप अपनी फरमाइश हम तक भेज सकते हैं।
1: कुछ हमको
2: क्या
1: कुछ तुमको
2: हाँ?

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म अलग अलग में। आनंद बख्शी की शब्द रचना थी, संगीत दिया था आरडी बर्मन ने और इस गीत के लिए मेल मिले आप सभी के। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे। बुड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष बब्बू डब्बू। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशास, शाबिस्ता पलक, लुबना और यश मंसूरी। नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, लखन लाल आप हैं पलारी से। कार्यक्रम ईमेल की गूंज के आखिर में लीजिए सुनिए फिल्म आया सावन झूम के से ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज लता मंगेशकर की और पसंद आप सभी की। मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति, डिकेश आप हैं रसेड़ा छत्तीसगढ़ से। गोवर्धन कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना। नंदकुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबू, ज्योति आप हैं ग्राम चरौदाबार नवापारा बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। येताला महाराष्ट्र से शंकरलाल गणेशलाल, शुभम प्रसाद और दुर्गेश्वरी जायसवाल।

0: आया सावन झूम के, इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। तो श्रोताओं, आप यूं ही हमें अपने फरमाइशें भेजते रहिए, हम सुनाते रहेंगे आपकी पसंद के गीत, क्योंकि ईमेल की गूंज आप ही से शुरू होकर आप ही पर ख़त्म होती है। आज ईमेल की गूंज कार्यक्रम आपके लिए पेश किया शबनम ने, और अब लेती हूँ इस कार्यक्रम से आपसे विदा। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से।

0: क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की।

0: जिसका सदन में पार्टी के नेता के ए सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: आवर एलपीजी किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान

0: विमान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। CBI ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और IPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 2:30 हुए हैं। अब पेश है गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं गुलाम अली की गाई इस गज़ल से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र और इस वक्त आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में ये गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: गीत गंधा कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे बेगम अख्तर की आवाज़ में ये गज़ल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: गीत गंधा कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे अभिजीत की आवाज में ये गीत।

जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 3 बजे हैं। मीडियम वेव पर सभा समापन से पूर्व हम आपको अपनी आज की सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के बारे में बता दें। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है संध्या 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट के साथ। भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या आप सुनेंगे शाम 5:05 पर। युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है शाम 5:30 पर। विचार बिंदु का पुनः प्रसारण किया जाएगा शाम 6:05 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम गोधूली में शाम 6:20 पर आज आप सुनेंगे रामलोचन यादव और साथी।

के गाए भोजपुरी लोकगीत और साथ ही हीरोनंदी कुजूर और साथियों के गाए सरगुजिया लोकगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी पेश करेंगे शाम 6:30 पर। सुगम संगीत का रजनीगंधा कार्यक्रम पेश करेंगे शाम 7:05 पर। किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल शाम 7:20 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का प्रसारण समय है शाम 7:30। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:00। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर। मनी टॉक और मंथन, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात 9:30 पर। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज आपके लिए लेकर आएंगे रात 10:00 और फिल्म संगीत का एक और फरमाइशी कार्यक्रम मनभावन पेश करेंगे रात 10:30 पर। मीडियम वेव पर सभा समापन से पूर्व हम आपको ये भी बता दें कि एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली से एफएम गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5:00 आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। इसी के साथ हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। आइए सभा का आगाज करते हैं। सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये गणेशपुर, दलदली, मदन नगर, धर्मपुर, गौरा, भरदा, सिंघरा, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 23

0: 23 है। ये चिनिया महावीरगंज शिवपुर कनकपुर लुर्गी टकिया मेंढारी प्रेमनगर कोटराही भगवानपुर नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के उदयपुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये लक्ष्मणगढ़ जगन्नाथपुर सायर सस्कालो मुड़ापारा सुखरी भंडार कंडराजा बैरडांड दातीढाब घड़गांव उरंगा बरिमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर जामचुआ चरईमारा रानी कोम्बो खड़ा माचा राजा आमा महेशपुर कुकुरगांव कुदराझरिया साजा पानी तीता पाकेर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल धर्मजयगढ़ बाकारुमा कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 136 है। ये गिरसा पोटिया आमगांव रुपुंगा तेजपुर बेहरामार बनहर अवरानारा कुड़ेकेला पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा लालडी झुनकीडी मुकुआ जुनवानी कुकरी कादर डंग बोरा कोदवारी खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये बंगूरसिया नवागांव चक्रधरपुर जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वनमंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खम्हारपाली पथरीपाली दबगांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी पकरीत ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और तौरेंगा में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराझड़ डडईपानी नगरार खोलापारा जिडार छिंदौला तौरेंगा कावारामा डूमरघाट कोदोमाली कोनारी लूठापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गाँव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं विनोद अग्रवाल की आवाज़ में ये गीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम भजन संध्या की अगली प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गीत। संगीत निर्देशन है गुलशन कुमार का और गीतकार हैं रवि चोपड़ा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

कार्यक्रम भजन संध्या बस यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, जहां बातें होती हैं दिल की, समाज की, हम सब की। मैं हूं आपकी दोस्त रागिनी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जो सुनने में छोटा लगता है लेकिन अगर सच में समझ लिया जाए तो पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। बदलाव की शुरुआत पहले खुद से। दोस्तों, अक्सर हम बातें करते हैं देश बदलना चाहिए, लोग बदलने चाहिए, समाज बदलना चाहिए, लेकिन कभी सोचा है अगर हर इंसान यही सोचता रहे कि पहले दूसरा बदले तो शुरुआत करेगा कौन? सच तो ये है, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से शुरू होता है और वो कदम होता है खुद को बदलना। अगर हमें स्वच्छ भारत चाहिए तो शुरुआत सड़क पर कचरा ना फेंकने से होगी। अगर हमें अच्छे रिश्ते चाहिए तो शुरुआत खुद दूसरों को समझने से होगी। अगर हमें सम्मान चाहिए तो पहले दूसरों का सम्मान करना सीखना होगा। अगर हम सोशल मीडिया पर लंबी लंबी बातें तो लिख देते हैं लेकिन घर में माँ पापा से ठीक से बात करने का समय नहीं निकालते। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें लेकिन क्या हम कभी किसी और को समझने की कोशिश करते हैं? दोस्तों, आज का यूथ बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी आदतों में उलझते जा रहे हैं। लेट नाइट स्क्रॉलिंग, कंपैरिजन, जल्दी गुस्सा होना, हर बात पे जज करना और फिर कहते हैं समाज खराब हो गया है। दोस्तों, समाज कोई अलग चीज़ नहीं है, हम और आप मिलकर ही समाज बनाते हैं। अगर एक इंसान रोज़ एक अच्छा काम करना शुरू कर दे तो सोचिए कितना बदलाव आ सकता है। किसी की मदद करना, घर वालों को समय देना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, नेगेटिव चीज़ को छोड़ना, ये छोटे बदलाव ही जिंदगी को बड़ा बना देते हैं। याद रखिए, पेड़ कभी एक दिन में बड़ा नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता है और फिर एक दिन सबको छांव देता है। ठीक वैसे ही खुद में किया गया छोटा बदलाव एक दिन आपकी पूरी पहचान बदल देता है। इतिहास गवाह है दोस्तों, जिन लोगों ने दुनिया बदली उन्होंने शुरुआत खुद से ही की थी।

महात्मा गांधी ने कहा था, वो बदलाव खुद बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वो इंसान हूँ जिस जैसा समाज मैं चाहता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बदलाव की सबसे अच्छी बात यही है कि इसकी शुरुआत कभी भी की जा सकती है। आज से, अभी से खुद से शुरुआत कीजिए, क्योंकि इंसान जब खुद बदलता है तभी परिवार बदलता है, समाज बदलता है और फिर पूरा देश बदल जाता है। क्योंकि जब सोच बदलती है तब आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तभी जिंदगी और समाज दोनों बदलने रखते हैं। याद रखिए, छोटी सी अच्छी शुरुआत भी एक बड़े बदलाव की वजह बन सकती है। तो दोस्तों, अब समय हो चुका है एक प्यारे से गीत का, तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म गाइड से ये खूबसूरत सा गीत।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?

0: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
0: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए चलते हैं हमारे अगले क्रम युवा मंच में, जहां सुनेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्राओं से लोक नृत्य के विषय पे शालिनी चौबे की बातचीत।

0: नए जोश, नई उम्मीद, नए ज्ञान के साथ स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके पसंदीदा क्रम युवा मंच में, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त शालिनी चौबे। तो चलिए करते हैं हमारे इस क्रम की शुरुआत अपने कुछ युवा दोस्तों के साथ। दोस्तों, आज जहाँ हमारा जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि हमारे पास हमारे लिए ही फुर्सत नहीं रहती, वहाँ संगीत और आर्ट कल्चर ये हमारे जीवन को थोड़ा आसान बना देते हैं, हमारे स्ट्रेस को रिलीज करते हैं। तो चलते हैं हमारे युवा दोस्तों के पास और जानते हैं उन्हीं से उनका परिचय और जानते हैं कि इस विषय पर उनके क्या विचार हैं।
1: मेरा नाम उन्नति उपाध्याय है, मैं कक्षा 11वीं विज्ञान की छात्रा हूँ। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सूरजपुर बसदई की छात्रा हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस क्रम में। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या विचार है कि जहाँ हमारे आज की जनरेशन आज ट्रेंड के पीछे भाग रही है, उनका मेन मोटिव यही रहता है कि वो कुछ ऐसा करें कि आज का यूथ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, और उसके लिए वो लोग जितने भी वेस्टर्न कल्चर होते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो इस विषय में आप क्या राय रखती हैं?
1: मेरी राय ऐसी है कि अभी जहाँ सबसे ज़्यादा जनरेशन जिस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, उससे अच्छा मतलब थोड़ा सा फोक की ओर भी अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। मतलब सब उसी साइड में जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उस साइड में एक तो कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है, दूसरा थोड़ा सा एक यूनिक वे आपको चूज़ करना चाहिए जिसमें फोक भी बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, जो कि हम लोग प्रेफर करते हैं मोस्टली। अगर आप उस चीज़ को करते जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे कि जैसे पॉप म्यूज़िक होता है, पॉप म्यूजिक भी करते करते बहुत अच्छा लगने लगता है, लेकिन वहीं अगर आप फोक लाइट म्यूजिक लेंगे तो वो भी एक टाइम के बाद आपको उसकी हैबिट हो जाएगी, वो आपको अच्छा लगने लगेगा, उस हिसाब में आप ढल जाएंगे।
0: जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि फोक म्यूजिक भी काफी अच्छा होता है। तो आपका इंटरेस्ट किस ओर है?
1: मेरा इंटरेस्ट तो फोक की ओर तब से ज्यादा हुआ है जब से मैंने फोक को प्रेफर किया, जब से मैं फोक करने लगी हूँ, वरना उससे पहले तक मेरा इंटरेस्ट पॉप में ही था।
0: फोक में जनरली आप किस कल्चर को फॉलो करते हो, आपका क्या इंटरेस्ट है फोक में?
1: फोक में जनरली मैं असम का कल्चर, एक बिहू डांस होता है, उसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली उसी डांस को अभी कर रही हूँ मतलब रिसेंटली में। और पहले मैं छत्तीसगढ़ी, ये सब मेरा, और मैं यूपी से हूँ तो मेरे को यूपी का जनरली कल्चर ये सब बहुत पसंद था, ऐसा वाला करके।
0: आपने नाम लिया बिहू का, तो बिहू जो एक नृत्य शैली है असम की, उसके विषय में हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहेंगे आप?
1: देखिए, बिहू एक तरीके का फेस्टिवल है वहाँ का, वहाँ का एक त्यौहार है। जनरली बिहू बहुत ही ज़्यादा फेमस त्यौहार है असम का। तीन टाइप की बिहू होती है, रंगा बंगाली और खंगाली। तीनों बिहू हार्वेस्टिंग के टाइम पे और हार्वेस्टिंग के फर्स्ट के टाइम पे मतलब जब चलते रहता है तब, और बीच के टाइम पे मनाया जाता है, मतलब न्यू ईयर सेलिब्रेशन को एज अ बिहू की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी ओकेशन पे ना एक अलग सा डांस परफॉर्म करते हैं, जैसे हर स्टेट का अपना अपना होता है वैसे बिहू का भी अलग से, लेकिन बिहू का ट्रेडिशन इतना इंप्रेसिव है, इतना अट्रैक्टिव ट्रेडिशन है कि उसको फॉलो करने के किसी की भी मतलब कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा उस फोक के डांस की ओर।
0: जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। चलते हैं हमारे अगले युवा दोस्त के पास और जानते हैं उनसे उनका परिचय।
2: मेरा नाम अनिशा तिर्की है, मैं पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बसदई में पढ़ती हूँ, कक्षा 11वीं।
0: जहाँ हमारी जनरेशन आज ट्रेंड फॉलो कर रही है, उस ओर जैसा हमारे पहले युवा साथी ने बताया कि जो हमारा फोक कल्चर होता है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, तो इस विषय पे आप क्या राय रखते?
2: जो हम लोग का फोक कल्चर होता है वो इंटरेस्टिंग तो है ही, और जैसे कि इंडिया है उसका हर स्टेट का अपना एक अलग फोक डांस है
0: जी,
2: और पॉप के वजह से वो फोक डांस कहीं ना कहीं छुप जा रहा है। तो वही अगर हम लोग उसमें एंट्री लेंगे, फोक डांस करेंगे, तो वो अपना इंडिया का कल्चर बनाए रखेगा।
0: तो आपको किस फोक डांस में इंटरेस्ट है, आपका कल्चर किस ओर है?
2: मैं भी बिहू ही जानती हूँ और उड़ीसी संबलपुरी।
0: संबलपुरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
2: जैसे कि बोलते हैं कि फोक बहुत लो म्यूजिक है, कि पॉप ज़्यादा वाइब देता है, तो ऐसा नहीं है।

0: संबलपुरी जो है उसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा होता है, बहुत एनर्जेटिक होता है और उसमें बहुत एक्सप्रेशन और बहुत एनर्जी लगता है करने में।
1: तो ये संबलपुरी जो आपने डांस फॉर्म बताया, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे?
0: हाँ, संबलपुर एक जगह है उड़ीसा में, और वहीं के ट्राइबल्स जो होते हैं वो संबलपुरी डांस किया करते हैं। अब वो नया नया फॉर्म लेके अब और बहुत एडवांस हो गया है।
1: काफी इंटरेस्टिंग बात बताई आपने संबलपुरी डांस के बारे में, तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों, पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये।

0: एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का क्रम युवा मंच में। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं फोक डांस के बारे में या कहीं तो इंडियन कल्चर के बारे में, तो इसी विषय पर आइए जानते हैं हमारे अगले युवा साथी से कि उनका इस विषय पर क्या विचार है।
1: मेरा नाम परी गुप्ता है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा हूँ, कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। फोक डांस एक अच्छा है हम लोग के इंडिया के भारत की संस्कृति को बनाए रखने के लिए जी। हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए, इसे बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग के भारत की जो संस्कृति है वो दबते जा रही है आजकल के मॉडर्न डांस संगीत ये सब के चक्कर में। हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट है इसमें, मैं बिहू करती हूँ मैं और छत्तीसगढ़िया डांस भी करती हूँ।
0: छत्तीसगढ़िया डांस में आपका इंटरेस्ट बेसिकली किस ओर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में हमें पता है कहीं कर्मा होता है तो कहीं कुछ दूसरा डांस फॉर्म यूज़ होता है, तो आपका इंटरेस्ट किस ओर है?
1: मेरा कर्मा और

0: और सुआ नृत्य में इंटरेस्ट है
1: जी।
0: और कर्मा एक त्यौहार होता है जिसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो कर्मा उस टाइम किया जाता है और सुआ भी एक त्यौहार पे किया जाता है।
1: सुआ नृत्य के बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहेंगे?
0: हाँ, सुआ नृत्य फसल कटाई के समय पे होता है। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो टोकरी में मिट्टी में लकड़ी का तोता रख के उस नृत्य करती हैं। फसल कटाई के समय होता है और नेचर से कनेक्ट करते हैं। तोता को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
1: जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो चलते हैं हमारे अगले युवा साथी के पास और जानते हैं उनसे उनका परिचय।
2: मेरा नाम श्रेया साहू है, मैं कक्षा 11वीं जवाहर नवोदय विद्यालय बसदई सूरजपुर की छात्रा हूँ और मेरा मेन क्लासिकल डांस है।
1: तो जैसा आपने बताया क्लासिकल डांस, तो क्लासिकल डांस में भी काफी सारे फॉर्म्स होते हैं, तो आप जनरली कौन सा क्लासिकल डांस प्रेफर करती हैं?
2: मैं कथक डांस प्रेफर करती हूँ खुद को।
1: तो ये कथक डांस की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली?
2: मेरा भी इंटरेस्ट पहले तो केपॉप साइट पे ही था
1: जी।
2: पर ऐसे ही स्क्रॉल करते करते मेरे को एक साइट पे बहुत अच्छा ड्रेसअप, फुल ड्रेसअप, मेकअप और एक्सप्रेशन और पोज के साथ एक वीडियो मिला, तो मैं उसको क्लिक की
1: जी।
2: तो जो उनके एक्सप्रेशंस थे, जो उनका गेटअप था, वो मेरे को काफ़ी अट्रैक्ट किया
1: जी।
2: और फिर जब डांस वीडियो प्ले हुआ तो फिर देयर स्टेप्स और एक्सप्रेशंस मेरे को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया खुद के तरफ, तो वहीं से मेरे को इंस्पिरेशन मिला कि हाँ, मैं भी क्लासिकल डांस की कथक के साइड जाऊँ।
1: जनरली हर किसी को पता है कि इंडिया का मोस्ट टफेस्ट डांस फॉर्म कथक, भरतनाट्यम, यही सारी चीज़ें होती हैं। आपको कितना टाइम लगा कथक सीखने में?
2: कथक मैं कहीं से सीखी नहीं हूँ क्योंकि मैं स्कूल में हूँ, तो मैं इसका प्रॉपर कोर्स नहीं कर सकती
1: जी। जी,
2: पर मेरा इंटरेस्ट काफ़ी था और डांस में थी मैं पहले से थोड़ी अच्छी
1: जी। जी,
2: तो फिर 1 वीक में मैं एक सॉन्ग सीख लिया, ऐसा हुआ मेरे साथ।
1: और सॉन्ग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप?
2: उस सॉन्ग के बारे में, वो मेनली शिव स्तुति पे वो गाना था
1: जी,
2: जिसमें फुल एक्सप्रेशंस और मूव्स थे
1: जी। जी,
2: जो कि एक हफ्ते में एक डांस टीचर आती है हमारे यहाँ पे, माया मैम, वो सिखाई थी।
1: हम सब जानते हैं कथक में एक्सप्रेशन और मुद्राओं का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप कुछ बताना चाहेंगी कि आपको एक्सप्रेशन और मुद्राओं को सीखने में डिफ़िकल्टीज आए, कितना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और आपने लास्टली वो अच्छे से कर लिया?
2: एक्सप्रेशन में तो उतना टाइम नहीं लगा क्योंकि अगर मुद्रा और गाना के बोल के बारे में अगर हमको पता है, बीट्स के बारे में, तो अब एक्सप्रेशन बन जाते हैं, पर जो मुद्राएं हैं उनको सीखने में काफ़ी समय लगा, बहुत प्रैक्टिस लगा और धीरे धीरे करके आ गया
1: जी। तो बहुत अच्छा लगा आप सभी से मुझे बात करके और उम्मीद है कि आप सभी ऐसे ही इंडियन कल्चर को प्रमोट करेंगे और अलग अलग डांस फॉर्म सीखकर हमारे देश का नाम ऐसे ही रोशन करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, दीजिए इजाज़त आपकी दोस्त शालिनी चौबे को। नमस्कार।

दोस्तों, अभी आपने सुना क्रम युवा मंच में जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्राओं से लोक नृत्य के विषय पर शालिनी चौबे की बातचीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में फिल्म दिल तो पागल है का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया है उत्तम सिंह ने।

दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सोनू निगम और साथियों की आवाज में फिल्म परदेश का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म परदेश का ये गीत, और इसी गीत के साथ आज की युवाणी बस यहीं तक। जाते जाते आपको बताते हैं कल की युवाणी के मुख्य आकर्षण। कल आप सुनेंगे युवा सोच एक नए विषय पे, फिर क्रम समय की दास्तान और फिल्म संगीत। इसी के साथ आज की युवाणी से दीजिए इजाजत अपनी दोस्त रागिनी चौबे को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बज रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हिंदी समाचार, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स के नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि ये भारत और नेपाल की अटूट मित्रता तथा पारंपरिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में

0: अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में एक सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बीच सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रोट की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। हैदराबाद अंक तालिका में दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर है। आज के मैच का विजेता तालिका में शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है विचार बिंदु। आज का विषय है सत्यता। संकलन एवं वाचन स्वर हैं जयमाला के।
2: सत्यता अर्थात सत्य बोलना, सत्य का पालन करना और जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी बनाए रखना मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। यह केवल एक नैतिक आदर्श नहीं बल्कि समाज और व्यक्ति दोनों के संतुलित विकास की आधारशिला है। सत्यता से ही विश्वास जन्म लेता है और विश्वास से ही मजबूत रिश्ते, स्वस्थ समाज और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण होता है। सत्यता का अर्थ केवल झूठ न बोलना ही नहीं है बल्कि अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में एक रूपता बनाए रखना भी है। जब व्यक्ति जो सोचता है वही कहता है और वही करता है तब वह सच्चा और विश्वसनीय बनता है। ऐसे व्यक्ति पर लोग सहज ही विश्वास करते हैं और उसे सम्मान देते हैं। इतिहास और महापुरुषों के जीवन में सत्यता का विशेष महत्व रहा है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया परंतु अंततः विजय सत्य की ही हुई। सत्य का मार्ग कभी कभी कठिन अवश्य होता है लेकिन यह मन को शांति और आत्मबल प्रदान करता है। जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है वह भीतर से निडर और आत्मविश्वासी होता है। सामाजिक दृष्टि से भी सत्यता अत्यंत आवश्यक है। यदि समाज में लोग असत्य का सहारा लेने लगे तो विश्वास समाप्त हो जाता है और अराजकता फैलने लगती है। व्यापार, शिक्षा, राजनीति और पारिवारिक जीवन में हर क्षेत्र में सत्यता का होना अनिवार्य है। यह सामाजिक समरसता और विकास के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सत्य को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। सत्य का अनुसरण करने वाला व्यक्ति आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। भारतीय दर्शन में सत्यम वद धर्मम चर का उपदेश दिया गया है जो जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। आज के आधुनिक युग में जहां प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ बढ़ते जा

0: रहे हैं, सत्यता का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। हमें अपने जीवन में सत्य को अपनाकर न केवल अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना चाहिए, बल्कि समाज में भी सत्य के प्रति जागरूकता फैलाना चाहिए। सत्यता केवल एक नैतिक गुण नहीं, बल्कि जीवन की वह आधारशिला है जिस पर व्यक्ति का चरित्र और समाज का विश्वास टिका होता है। हर संबंध की नींव विश्वास पर टिकी होती है, और विश्वास का अर्थ है सत्य। चाहे वह परिवार हो, मित्रता हो या कार्यस्थल, जहाँ सत्यता होती है वहाँ संबंध लंबे समय तक टिकते हैं। एक छोटी सी असत्य बात भी रिश्तों में दरार पैदा कर सकती है। विद्यार्थी जीवन में सत्यता का विशेष महत्व है। नकल, धोखा या गलत तरीके से प्राप्त की गई सफलता स्थायी नहीं होती। जो विद्यार्थी ईमानदारी से मेहनत करता है वही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है और जीवन में आगे बढ़ता है। सत्य बोलना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है जहां असत्य बोलना आसान लगता है, लेकिन सत्य पर टिके रहना ही वास्तविक साहस है। यही साहस व्यक्ति को महान बनाता है। भारतीय संस्कृति में सत्य को सर्वोच्च धर्म माना गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ ही है अंततः सत्य की विजय होती है। सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल बाहरी जीवन में सफल होता है, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी प्राप्त करता है। सत्य केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जिसे हमें रोज अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति सत्य का पालन करे तो समाज में विश्वास, शांति और प्रगति स्वतः स्थापित हो जाएगी। अंततः सत्यता ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को महान बनाती है और समाज को मजबूत। इसलिए हमें सदैव सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यही जीवन की सच्ची सफलता का मार्ग है।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: ये रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री है पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा के बचत पर लोगन मल्ले ईंधन बचाए और विदेशी उत्पाद के प्रयोग कम करे के करीन विनती। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA है चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिला पर 3 मई के होए नीट UG परीक्षा ला रद्द करे के फैसला ले है। और दुर्ग जिला के कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज संझा सिलेंडर में विस्फोट होए ले एके परिवार के 4 लोगन के मौत। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा के बचत पर लोगन मन ले ईंधन बचाए और विदेशी उत्पाद के प्रयोग कम करे के विनती करे है। गुजरात के बड़ोदरा में काली एक ठिन जनसभा में प्रधानमंत्री है पेट्रोल और डीजल के उपभोग कम करे और वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षा और वर्चुअल बैठका जैसन कोविड दौर के उपाय अपनाए के अपील कर दोहरेन। इति छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव घलो पश्चिम एशिया संकट ले उपजे हालात के बीच लोगन मल्ले मदद की अपील करे है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA है चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिला बर 3 मई के होए नीट UG परीक्षा ला रद्द करे के फैसला ले है। NTA है बतैन कि सरकार है पेपर लीक के आरोप मन के पूरा जांच पर मामला ला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ला सौंपे के फैसला ले है। NTA है कहिन कि परीक्षा पर 9 तारीख अलग ले अधिसूचित करे जाही। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार के जानकारी और 3 मई के परीक्षा पर चुने गए परीक्षा केंद्र वैसने रही। एजेंसी है कहिन है कि दोबारा परीक्षा पर और पंजीकरण कराए के जरूरत नहीं पड़े और परीक्षा शुल्क घलो नहीं लगाए। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाए जाते। मौका में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति भवन में राखे गए कार्यक्रम में 15 नर्सिंग पेशेवर ले जुड़े नर्सिंग के क्षेत्र में बढ़िया कामकाज पर राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिन। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्स, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षक।

0: ला दे गिस। उन्हें आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौका में छत्तीसगढ़ में घलो कतकोन कार्यक्रम हुआ थे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल है रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में रखे गए कार्यक्रम में नर्सिंग संवर्ग के पदनाम में परिवर्तन करे के घोषणा करीन। नर्सिंग सिस्टर मल्ला अब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर जाने जाही और स्टाफ नर्स के नाव नर्सिंग ऑफिसर हो ही। राज्य शासन है प्रदेश में चरचरावत गर्मी ल देखत स्कूल मन बर गर्मी के छुट्टी घोषित करे जाए के बावजूद कुछ एक प्राइवेट स्कूल मन डहर ले ए बेरा कक्षा लगाए जाते। एला शासन है गंभीरता ले लेवत अपन आदेश के उल्लंघन माने हैं। लोक शिक्षण संचालनालय है शिक्षा विभाग के जम्मो संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी मन ला चिट्ठी जारी करके ऐसन प्राइवेट स्कूल मन के खिलाफ कार्रवाई करे बर कहे है। ये बारे में बिलासपुर उच्च न्यायालय है घलो एक ठिन याचिका दायर करे गई रही से जिला हाईकोर्ट है संज्ञान में ले है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान है कालीले छत्तीसगढ़ के दो दिन के दौरा में रही। अपन प्रवास के दौरान उमन ग्रामीण विकास मंत्रालय को तिले चलाए जात आने आने योजना मन के समीक्षा करी संगे संग ग्रामीण विकास ले जुड़े जनप्रतिनिधि अधिकारी और हितग्राही मन ले गोटबात करी। श्री पासवान है विकसित भारत जी रामजी अधिनियम ले जुड़े तैयारी और ग्राम पंचायत मन में चलाए जात ग्रामीण विकास के बारे में घलो जान वाली ही। अपन प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री है स्व सहायता समूह मन के माइलोगिन और आने आने योजना मन के हितग्राही मन ले गोट बात करी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा है आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के पेंड्रा रोड में न्यायिक कर्मचारी मन बर बनाए जात आवासीय परिसर और मरवाही में नवा सिविल कोर्ट भवन बनाए के भूमि पूजन करीन। ये मौका में मुख्य न्यायाधीश जिला जज और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मन ला निर्देश दिन है कि जम्मो प्रस्तावित काम ला तय करे गए मापदंड के मुताबिक कराया जाए। प्रदेश में नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाई के तहत आदर्श आचार संहिता लागू होए के संग लाउडस्पीकर जैसन यंत्र के प्रयोग पर दिशा निर्देश जारी करे गए है। जौन क्षेत्र में चुनाई होइया है वहां रतिहा 10 बजे ले बिहनिया 6 बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक लगा दे गए है। चुनावी सभा और प्रचार वाले गाड़ी मन में लाउडस्पीकर लगाए पर सक्षम अधिकारी ले अनुमति लेना जरूरी होगी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़ू पांच समाचार को थी। दुर्ग जिला के कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज संझा सिलेंडर में विस्फोट होए ले एके परिवार के 4 जिन लोगन के मौत हो गए। इमा 1.5 साल के एक जिन नोनी घलो शामिल है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर है बताइन कि कपरी रोड स्थित एक ठिन मकान में 60 सर्किट की स्थिति आगे लग गई। आगे के चपेट में आए ले घर में रखे गैस सिलेंडर फट गए और आगे पूरा घर में फैल गए। घर में आगे लगे की स्थिति यहां रहैया परिवार के मनखे मन बाहर नहीं निकल सकिन और जिंदा जल गए। पुलिस मामला की जांच करत है। जांजगीर चांपा जिला के धुरकोट गांव में कलिंदर खाए के बाद एक जिन लड़का के मौत और 3 जिन आने लड़का मन के बीमार होए के मामला आगुआ है। बीमार लड़का मन के इलाज जिला अस्पताल में चलत है और उखर हालत सामान्य बताया जात है। प्रशासन है कलिंदर के सैंपल ला जांच पर भेज दे है। स्वास्थ्य विभाग की टीम है गाँव में लोगन मन के स्वास्थ्य की जाँच करत है। रायपुर पुलिस ऑपरेशन निश्चय के तहत गांजा तस्कर मन के खिलाफ बड़का कार्रवाई करे है। महासमुंद धमतरी और गरियाबंद जिला मन में नाकेबंदी के दौरान फेरी लगा के कपड़ा बेचे के आड़ में करे जात अंतर्राज्यीय तस्करी के खुलासा हो है। पुलिस आरोपी मन के ले 378 किलो ले ज्यादा के गांजा जब्त करे है जेखर भाव बाजार में 1,98,00,000 रुपया बताया जात है। ये कार्रवाई में 11 ठिन गाड़ी जब्त करे गए है और पुलिस 12 जिन तस्कर मन ला घलो गिरफ्तार करे है। ये तस्कर मन है कपड़ा के ढेर के बीच गांजा रख के ओडिशा ले मध्य प्रदेश जावत रहिन। नारायणपुर जिला में जिला सुरक्षा बल मन माओवादी मन डहार ले लुका के राखे गए 1 करोड़ रुपया नकदी के संगे संग बड़ मात्रा में हथियार गोला।

बारूद विस्फोटक जिनिस और रोजे काम में अवैया जिनिस बरामद करे है। जिला के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया सुरक्षा बल मंडहार ने करे गए कार्रवाई के जानबा देवत बताइन कि बछर 2025-26 में जिला में 270 हथियार के रिकवरी हो है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांव गंवई के सड़क मन के बढ़िया रखरखाव में पूरा देश में दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश के सीहोर में राखे गए योजना के रजत जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य ला सम्मानित करीन। राज्य कोतिले पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह

0: प्रदेश के सीहोर में राखे गए योजना के रजत जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य ला सम्मानित करी। राज्य गोती ले पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह और प्रमुख अभियंता के कटारे पुरस्कार लीन। प्रदेश में अब तक 32,000 किलोमीटर लंबा और 8,000 ले ज्यादा सड़क मन के नवीनीकरण करे जा चुके हैं। महासमुंद के जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव ला गैस चोरी के मामला में निलंबित कर दे गए है। पाछू 9 मई के ए मामला के खुलासा करत पुलिस जिला खाद्य अधिकारी के संगे संग 3 झन लोगन मन ला गिरफ्तार करे रहीन। आरोपी मन 6 ठिन LPG गैस कैप्सूल टैंकर मन ले गैस चोरी करके ओला 80 लाख रुपया में बेचे रहीन। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरा होए के मौका में अवैया 30 मई के रायपुर में पत्रकारिता मारतंड उत्सव मनाया जाही। ए बारे में रायपुर के प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल मन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले मिलके उमल्ला कार्यक्रम में शामिल होए के न्योता दिन। मुख्यमंत्री आयोजन के पोस्टर के विमोचन करीन। ए कार्यक्रम में बड़का पत्रकार संपादक और मीडिया विशेषज्ञ मन शामिल हुईन। अब पेशे मौसम के हाल। मौसम विभाग ले मिले जानबा के मुताबिक प्रदेश में काली एक दो जगह में हल्का वर्षा हो या गरज चमक के संग बूंदाबांदी होए के संभावना है। मौसम विज्ञानी आकाशवाणी समाचार ला बताएं कि प्रदेश में अवैया 4 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बढ़ोतरी हो सकते। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रधानमंत्री पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा के बचत पर लोगन मल्ले ईंधन बचाए और विदेशी उत्पाद के प्रयोग कम करे के करीन विनती। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिला भर 3 मई के होए NEET UG परीक्षा ला रद्द करे के फैसला ले है। और दुर्ग जिला के कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज संझा सिलेंडर में विस्फोट होए ले एके परिवार के 4 जन लोगन के मौत। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं सिरावत है। जय जोहार।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों से सजा कार्यक्रम गोधुली। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं कजरी। भोजपुरी लोक गायक राम लोचन यादव एवं साथियों की आवाज़ में

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कार्यक्रम गोधूली की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं डोमकेच गीत सरगुजा लोक गायक हिरोंदी कुजूर एवं साथियों की आवाज में।

सरगुजिया लोक गायक हिरोंदी कुजूर और साथियों की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे डोमकेच गीत। इसी के साथ कार्यक्रम गोधूली समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं चांदनी चौक टू चाइना फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज़ है शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की। संगीत निर्देशन है शंकर एहसान लॉय का और गीतकार हैं रजत सपोरा।

कार्यक्रम माधुरी की अगली प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं अजहर फिल्म का ये गीत। आवाज़ है अरिजीत सिंह एवं आंध्रा मोइत्रा की, संगीत निर्देशन है प्रीतम का और गीतकार हैं मनोज यादव।

कार्यक्रम माधुरी की आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं दिल तो बच्चा है जी फिल्म का ये गीत। आवाज़ है मोहित चौहान की, संगीत निर्देशन है प्रीतम का और गीतकार हैं नीलेश मिश्रा।

मोहित चौहान की आवाज़ में दिल तो बच्चा है जी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम माधुरी बस यहीं तक, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए।

0: घर घर आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
0: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित होने के बावजूद कक्षाएं लगाने वाले अशासकीय स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई। दुर्ग जिले के कुम्हारी क्षेत्र में सिलेंडर में विस्फोट होने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने नर्सिंग स्टाफ का पदनाम बदलने की घोषणा की। नर्सिंग सिस्टर अब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
4: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
3: इधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी पश्चिम एशिया संकट से उपजे हालात के बीच लोगों से सहयोग की अपील की है।
5: प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से वैश्विक परिदृश्य पर आह्वान किया है। पेट्रोल, डीजल, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम हो, ऐसे कुछ आग्रह प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश पर जब भी इस प्रकार की परिस्थितियां आती है, वो देश के नागरिकों के सहयोग से ही उस पर अमल करना संभव होता है। निश्चित रूप से हम सब भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर अमल करने की दिशा में बढ़ेंगे।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने चिकित्सीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित NEET UG परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। NTA ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। NTA ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किए जाने के बावजूद कुछ अशासकीय संस्थाओं द्वारा वर्तमान में भी कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इसे शासन ने गंभीरता से लेते हुए अपने आदेश का उल्लंघन माना है। लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षा विभाग के सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर ऐसे निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इस संबंध में बिलासपुर उच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा है कि यह अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर आज छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम में नर्सिंग संवर्ग के पदनाम में परिवर्तन की घोषणा की है। इसके अनुसार नर्सिंग सिस्टर अब नर्सिंग

0: सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगी, जबकि स्टाफ नर्स का नाम नर्सिंग ऑफिसर होगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान कल से छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपने प्रवास के दौरान वे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे, साथ ही ग्रामीण विकास से जुड़े जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और हितग्राहियों से भी संवाद करेंगे। श्री पासवान विकसित भारत जी राम जी अधिनियम से संबंधित तैयारियों और ग्राम पंचायतों में संचालित ग्रामीण विकास गतिविधियों की भी जानकारी लेंगे। अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री स्वसहायता समूहों की महिलाओं और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से भी बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गौरेला पिंडरा मारवाही जिले के पिंडरा रोड में न्यायिक कर्मचारियों के लिए बनाए जा रहे आवासीय परिसर और मारवाही में नए सिविल कोर्ट भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने जिला जज और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्रस्तावित निर्माण कार्य निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कराए जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में आज शाम सिलेंडर में विस्फोट होने से एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई। इनमें 1.5 साल की एक बच्ची भी शामिल है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर ने बताया कि खपरी रोड स्थित एक मकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग की चपेट में आने से घर में रखा गैस सिलेंडर फट गया और आग तेजी से फैलने लगी, जिसके कारण घर के अंदर मौजूद परिवार के सदस्य बाहर नहीं निकल सके और जिंदा जल गए। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा जिले के धुरकोट गांव में तरबूज खाने के बाद एक बच्चे की मौत और 3 अन्य बच्चों के बीमार होने का मामला सामने आया है। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिता श्रीवास्तव ने बताया कि बिस्तर रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले के सारे तथ्यों का पता चल पाएगा।
1: जो 4 बच्चों ने कुछ तरबूज खाया था और रात में चिकन खाया था, तो उन 4 बच्चों को जिला अस्पताल जांजगीर लेके आए, तो उसमें रास्ते में एक बच्चे की मौत हो गई और 3 बच्चे यहाँ पे भर्ती थे, तो उसके लिए जांच की टीम तुरंत ही वहाँ पे गांव गई उनके, और वहाँ जाके और बाकी भी बच्चों की जांच की। तरबूज में कुछ कीटनाशक किस चीज़ से पकाया था वो नहीं जानते। बाकी जैसे कि ये पता चला है कि वो तरबूज एक दिन पहले का कटा हुआ था और उसके बाद शाम को बच्चों ने खाया, जो कि पूरा दिन इतनी तेज गर्मी है तो उससे सड़ भी सकता है। तरबूज का सैंपल है वो फूड डिपार्टमेंट वालों लेके गए हैं और दूसरा रिपोर्ट हमारे फॉरेंसिक विभाग से आएगी, तभी पता चलेगा कि ये किस कारण से हुआ है।
0: इस बीच बच्चे का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बताया कि मृत बच्चे का बिस्तर सुरक्षित रखा गया है, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए करीब 1 करोड़ रुपए नकदी सहित बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया ने सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि हाल के महीनों में जिले में 270 हथियारों की रिकवरी हुई है।
2: 47 3 SLR, 2 303 315 है, बहुत सारे मोर देन 250-300 लाइव राउंड्स हैं और साथ ही साथ अन्य दैनिक उपयोगी सामान भी मिले। ड्यूरिंग ऑपरेशन डंप से कैश रिकवरी भी हुई, तो 2 जगहों से कुल 1,64,000 रुपया जब्त हुआ है। ये पूरी कार्रवाई में STF नारायणपुर DRG हमारे BSF ITBP का एक संयुक्त योगदान रहा।
0: रायपुर पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत गांजा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जिलों में संयुक्त नाकेबंदी के दौरान फेरी लगाकर कपड़ा बेचने वालों की आड़ में की जा रही अंतर्राज्यीय तस्करी का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों से 378 किलो से अधिक का गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 1,98,00,000 रुपये बताई गई है। कार्रवाई में 11 वाहन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 12 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो कपड़ों के ढेर के बीच गांजा कर ओडिशा से मध्यप्रदेश ले जा रहे थे। महासमुंद के जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव को गैस चोरी के मामले में सम्मिलित पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। बीते 9 मई को इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने जिला खाद्य अधिकारी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने 6 LPG गैस कैप्सूल टैंकरों से गैस चोरी कर उसे 80,00,000 रुपये में बेच दिया था। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के उत्कृष्ट रखरखाव में देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। मध्यप्रदेश के सीहोर में आयोजित योजना के रजत जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य को सम्मानित किया।

0: मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में कल एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रदेश में अगले चार दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।
1: प्रदेश में आज से लेकर आगामी 5 दिन तक मेघ गर्जन का एक्टिविटी एक दो स्थानों पर होने की संभावना है। मेघ गर्जन के साथ तेज हवा लगभग 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा हवा चलने की संभावना है और इसके साथ साथ हल्की वर्षा भी होने की चांसेस है। अधिकतम तापमान के बारे में बात करें तो अधिकतम तापमान आज से लेकर अगले 4 दिन तक लगभग 2 से लेकर 3 डिग्री का क्रमिक वृद्धि जो है वो एक्सपेक्टेड है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित होने के बावजूद कक्षाएं लगाने वाले अशासकीय स्कूलों के खिलाफ होगी कार्रवाई। दुर्ग जिले के कुम्हारी क्षेत्र में सिलेंडर में विस्फोट होने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने नर्सिंग स्टाफ का पदनाम बदलने की घोषणा की। नर्सिंग सिस्टर अब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर कहलाई जाएंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: अभी आप प्रादेशिक समाचार
3: मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बज रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व आइए आपको कल यानी बुधवार के कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षणों से रूबरू करा दें।

रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे हमारे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। दोपहर 1:40 पर वक्त होगा हमारे श्रोताओं के मेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम का शेष भाग आप सुन सकेंगे रात्रि 10:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:15 पर।

सोशल मीडिया पर आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश आप सुन सकेंगे रात्रि 8 बजे। हमारे किसान श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण समय होगा शाम 7:20 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा आप सुन सकेंगे शाम 7:05 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। लोकगीतों से सजा कार्यक्रम गूंजे जंगल आप सुन सकेंगे प्रातः 7 बजे और शाम 6:20 पर आप सुन सकेंगे गोधुली। हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी आप सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय होगा शाम 5 बजे। गैर फिल्मी गीतों व गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा का प्रसारण समय होगा दोपहर 2:30 पर। हमारी महिला श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम घर गोसाइन आप सुन सकेंगे दोपहर 1:10 पर। खेती की बात आप सुन सकेंगे प्रातः 6:45 एवं दोपहर 1:05 पर। शीर्षक गीतों का कार्यक्रम चयन आप सुन सकेंगे दोपहर 12:30 पर। हमारे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन के 11:05 पर।

आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम गांधी चर्चा आप सुन सकेंगे प्रातः 9 बजे। 9:15 पर वक्त होगा बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन का। शहीदों की गाथा और देशभक्ति गीत का कार्यक्रम वीर बंदन आप सुन सकेंगे प्रातः 8:30 पर। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आप सुन सकेंगे प्रातः 7:30 पर।

तो ये थे कल यानी बुधवार को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण। और आज के शेष कार्यक्रमों में आपके लिए खास है रात्रि 10:30 पर हमारे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम मन भावन का। रात्रि 10 बजे वक्त होगा हमारे श्रोताओं के मेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम ईमेल की गूंज। रात्रि 9:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। और रात्रि 8 बजे वक्त होगा सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश का। और शाम 7:20 पर किसान श्रोता सुन सकेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। और अब लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह और चित्रा की जगजीत सिंह की आवाज़ में इस गज़ल के साथ।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया। कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
1: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: कार्यक्रम रजनीगंधा में अब लीजिए सुनिए अशोक खोसला की आवाज में ये गजल। शब्द रचना है जफर गोरखपुरी की।

अशोक खोसला की आवाज़ में अभी आप ये गज़ल सुन रहे थे। कार्यक्रम रजनीगंधा बस यहीं तक, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे किसान श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल

0: अग्नु भैया राम राम
1: राम राम भजन भैया।
0: रौरे से ढेरे दिन बाद दे भेंट मुलाकात हर होते हैं, तो पहले तो हाल चाल ला
1: भाई। देखा हाल चाल ठीक है, बाकी अभी इतना गर्रा घटाइस नहीं कि जीव हर वही भुलाए रही किसे गहूँ वाला सकेली किसे उन्हारी वाला सकेली। बाकी सकेल धारे ही आजकल तो देखा मशीन का जमाना नहीं, वही जो काटा वही जो मिसा भूसा ला धरा दाना ला अंदर करा नहीं।
0: हाँ भाई थ्रेसर आई गई से है, बाकी मैं एक बात देखे पर भेटायल थ्रेसर में तो हमन करत रहन, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है कबर की हुरहा थुरहा करे चक्कर में नहीं कोनो दे हाथ मन लगावा देते नहीं।
1: हाँ भाई देखा का हो नहीं कि अगर कृषि यंत्र जो है वो हर उत्पादन में हम उनके बढ़ोतरी तो करी से हम अगर खूब उत्पादन करत हन तो ओकर पीछे कारण है कहीं ना कहीं यह है कि हम काम हो जल्दी उसरत है। नहीं अगर हम 10 एकड़ 15 एकड़ में धान लगाए दें 10 एकड़ में गेहूँ लगाए दें थोड़ा बड़ा मुश्किल है कि मजदूर बुलाए के वाला चाहे नागर जोतवाएला नहीं कि पाटा फूंदवाएला कि बुनवाएला तो ये सब बड़ा दिक्कत है, फिर कटाई मिसाई सब में मुश्किल है। लेकिन जब से दे मशीन बनाई नहीं तब से सब काम हर आसान हुई
0: हो और आसान हो एक संग हमार काम हर दे हालू हालू उसरे घर नहीं। बाकी आज दिन विशेष कर वेट करिए अग्नु भैया, देखिए भाई आज है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, देखिए 12 मई के मनाल जाते और एकर उद्देश्य यही है कि हमार जो हमार मनसे मन है जो पौधा है ओकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, ये समझें कि भाई स्वास्थ्य पौधा ही स्वस्थ जीवन का आधार हवे और हमार पर्यावरण कर गोट तो हमन करवे करती है कि नहीं। तो जो पौधा लगाए हैं ओकर तीहा जतन करना और संगे संगे हमन ला ये ध्यान रखना कि भाई आज कर समय में जो पेड़ पौधा है बोला सही तरीके से भाई सुरक्षित रखी एकर जिम्मेदारी हमन ला निभाना पड़ी।
1: और देखा पौधा कहले नहीं कोई चीज़ के भी पौधा रहे, वो पौधा हर मानव जीवन का एगो आधार है। अगर घर जगह अगर दो चार गो बढ़िया कहीं फलदार पौधा लगाए दी तो तुके फल दही, हरियाली वाला पौधा लगाया है तो बढ़िया ऑक्सीजन दही, तो चारों तरफ कर वातावरण ला बढ़िया रखे बर चाहे हमर का जीवन बर हमर खान पान बर मतलब पौधा हर मानव जीवन का एकदम साथी है।
0: मने रौरी कहा थे कि भाई दे खान पान घलुक भेटा ही ऑक्सीजन घलुक भेटा ही संगे संगे दवाई मन घलुक
1: कहते नहीं कि दुनिया में लगभग 80% जो भोजन हमारा प्राप्त होता है ओकर स्रोत पौधा मना है नहीं। और लेकिन कीट होगी रोग होगी जलवायु परिवर्तन होगी एकर कारण जो हमन का पौधा है पेड़ है कहीं चीज कर भी ओला प्रभावित तो कराता है।
0: बिल्कुल भाई, तो हमन ला ध्यान रखना है भाई जो भी हमन पौधा लगाए हैं खास करके देखिए भाई पौध में देखिए कीट रोग मन ला बचाए कर प्रति हमन ला जागरूक रहना है और संगे संगे भाई जो टिकाऊ कृषि हुई जिला खेती बाड़ी हमन करके अच्छा उत्पादन करी हमारे पर्यावरण हर बढ़िया बने रहे एकर बढ़ावा देना भी एकर उद्देश्य है। और संगे संगे रौरे जैसे कहें भाई खान पान कर वेट करें वो हर बढ़िया रहे स्वस्थ तो हमार जीवन रहे और बढ़िया हमन जो है खेती पाती करी और आगू बढ़ी।
1: और ये बात कर भी ध्यान दे कि अगर हम कहीं जब पौधा लगा थे

0: फलदार पौधा अगर हम लगाती तो फायदा ये है कि जो नीचे का जमीन रहे ओला भी हम उपयोग कर सकते थी। ऐसा नहीं है कि हमन आम कर बगीचा लगा दें कि नींबू के बगीचा लगा दें कि और कोई भी पौधा लगा दें, तो जो खाली जगह है छाया जगह है पहले कहें कि छाया में खेती नहीं हो वो खेती नहीं हो, बाकी कंदा वाला खेती हो सकता है। नहीं हम लहसुन लगा सकती, प्याज लगा सकती, अदरक लगा सकती हूँ मैं, तो ये सब चीज कर सकती हम, तो दोहरा लाभ भी कमा सकती।
1: बहुत सुगर रौरे कहत हन भाई कि हमनला भाई दोहरा लाभ कमाना है तो हमनला जागरूक रहना है, काबर कि भाई जो भी हमन आज अगर गोइट करत हन भाई पौधा के बारे में तो पौधा हर हमर जीवन कर आधार तबे होइल जब हमन ला स्वास्थ्य कर प्रति ध्यान रखब, ओकर बढ़िया देख रेख करब, ओकर तिहा जतन करब। और संगे संगे बात करी देखी जहाँ हमन अभी दे भाई घाम घलो बढ़त है नी, ऐसन में खेत कर जो भाई तैयारी है ढेला पसई मन है ओला अभी करे कर समय बढ़िया बता रहे।
0: हाँ बढ़िया बता रहे, और ये समय नहीं अगर हम अपन खेत का तैयारी करब और खेत मतलब बढ़िया मजबूत रखे रह तो पूरा तैयार करके फिट रखे रह तो जो मानसून आई नहीं ते कहीं हम लोग फायदा भेटा ही कि हम अपन पैर झार मतलब बढ़िया करी, हम अपन खेत मतलब जोताए जोत के बढ़िया रखे रही। तो आजकल तो पहले रोज देखे हो कि 5 बजे 4 बजे भोर में उठें और नागर बैला लेके और 9 बजे 10 बजे लेकर हम नहीं घमना तो करते रहे। देखिए समय हर बदल गए, अब सब जन मशीन लाना था है और उनमें जुताई होता है और हम देखती कि तरह तरह के मशीन आएगी सर, नहीं ट्रैक्टर में ही बीहन बुने वाला सीड ड्रिल होगी, रिपर होगी, हार्वेस्टर होगी, पावर टीलर है, स्प्रेयर है, थ्रेसर है। स्प्रेयर ला मैं हमेशा कहता था कि एगो समय रही हम उनका जानत ले कि बाल्टी में दवा ला घोर ली नहीं और जो ठूठी बहरी जिला कहते हैं छोटे छोटे भारत भारत जी बहरी ठूठाई जाए तो तनी उनी बाँचे रहे तो लोग कहें अच्छा छिरके ले में। तो मैं देखत रहे कि खेत लेज के उमें इसे छिरके फुहारा निकल जाए, बाकी बदलाव कितना जल्दी है इस कि हमन बाद में हवा भरे वाला स्प्रेयर पंप निकाल दें ओकर बाद लगे कि भाई दिन भर उतार के हवा भरना पड़े तो घूमत घूमत वाला आएगी से एगो हाथे हवा भरत रहा छिरकत रहा, लेकिन लगे कि भाई कितना बढ़िया एक बाकी आज हम बात करत हन ड्रोन कर ऊपर ले दवाई छिड़क दे
1: उड़त रहे
0: कितना तेजी से कर विकास हुए, कहाँ झाड़ू से दवाई छिटत रहे हमन कर देखल
1: बिल्कुल सही कहन दो कथे अग्निया जी भाई ये कहे कि कृषि यंत्रीकरण उपनिषद सरकार कर यही उद्देश्य है घलोक नहीं कि भाई हमर जो किसान भैया बहनी मन है मन आधुनिक जो यंत्र है ऊपर से जुड़े संगे संगे भाई खेती में लागत कम होए और उत्पादन जो है बगरा होए।
0: अभी देखिए नहीं कि अगर टमाटर लगाना है भिंडी लगाना है मिर्चा लगाना है तो पहले गोटा ज्वार भेर अगर एक एकड़ में आदमी लगे ही नहीं है तो कई दिन तक वो मेड़ बनाए तब वो में लगा पा रहे। अभी तो देखिए बढ़िया मशीन आए लगे आधा घंटा में बनाए के रेंग दे तो कितना अच्छा है। और कहे ना कि ढेला पसाई तो ढेला पसाई कर समय भी बीत गया
1: बिल्कुल,
0: आजकल तो जोताई ये सब फुरहुर होता है कि कहाँ का ढेला
1: बरन बरन कर वही यंत्र आएगी इसने ट्रैक्टर में लगा लाओ बढ़िया फुरहुरा कर दा।
0: तो बहुत बदलाव ऐसा है खेती में और आधुनिक जो यंत्र हैं कृषि यंत्र हैं यमन में उत्पादन कर वृद्धि हुई से कर कारण, लेकिन हमला ये बात का ध्यान देना है कि जितना भी कृषि यंत्र हैं हमला ओकर रख रखाव बहुत अच्छा रखना है, हमला सावधानी से ओकर उपयोग करना है, हमला देखना है कि जब थ्रेसर में चलत रहे अभी गहूँ मिसाई और अंतिम चरण में चलत है और धीरे जन देखिए गाँव में नहीं ये कथे कि तनि ठंडा में मिसब और साँझ के जिसे अंधार हो तो लाइन के कोठारी लगाए दही तेकर ये दे तनि मनी ये सांप के जाना था
1: भाई
0: तो लगाए थकाए के अगर गई कोनो लुंगी पहने रही कोनो चादर ओढ़े रही और कहाँ जब का मशीन घूमता है ताओ में जाके चढ़े नहीं रहता तो ये सावधानी बरतें कई गो दुर्घटना भी हो चुकी से तो बहुत सावधानी से हमला कृषि यंत्र का उपयोग करना है तबे हमला एकर लाभ भर पेटाही और सुरक्षित हम खेती कर पाब।
1: देखिए बहुत रौरे कहें कि भाई अभी के समय में जो कृषि यंत्रीकरण उपमिशन कर गोट ला बताएं जो हमारे किसान भैया बहनी मन है मुख्य उद्देश्य रौरे कर कहे कर मतलब कि भाई आधुनिक खेती ला तो जुड़ना है लेकिन सावधानी से जुड़ना है, काबर के अगर हम चेटको असावधानी से कहीं तरंग लठंग करें तो यदि भाई जोखिम घलू का है तो सावधानी से हमन काम बूता ला करी आधुनिक जो यंत्र है उसका प्रयोग करी। तो यही उद्देश्य है कि भाई हमार जो खेती है अधिक लाभकारी हुए और संगे संगे टिकाऊ बने और वे दे मेहनत घलू कम लागे। बाकी देखिए अब घड़ी कर कंटा घलू कहता है कि हमन चलते भाई किसानवाड़ी कार्यक्रम में। बाकी आए

0: हेलो किसानवाड़ी सुनैया जम्मो किसान भैया बहनी मनकर स्वागत करत हन। और अग्नु भैया देखिए आज हेलो किसानवाड़ी में कौन हमर जो है विशेषज्ञ ही ना है ओला बताते ना कौन विषय में हमन को एक बात ना कर
1: भाई। देखा आज हमन जग डॉक्टर पी के भगत जी आई ना है, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, सहायक प्राध्यापक हैं कीट विज्ञान कर और राजमोहनी कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र जीरमा में पदस्थ हैं। और संगे संगे मैन पाटला भी देखते हैं वहाँ आलू अनुसंधान केंद्र मल्ला। और इनका से आज हम उनकर गोठ हुई मधुमक्खी पालन एक उत्तम कृषि व्यवसाय होगी से एकर बहुत अच्छा जानकार हैं और कितना किसान मल्ला लाभान्वित भी करते हैं सीधे। और नया जो कृषि के छात्र हैं मतलब पढ़ात भी हैं कि भाई मधुमक्खी पालन कैसे करना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मधुकर उत्पादन होते ला। और साथ में हम और भी गोट बात करब जो किसान भाई में सवाल करें और हमारे कृषि विज्ञानी बैठी ना जवाब दें।
0: तो सबसे पहले राहुल के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आए। और भाई बताते हैं भाई मधुमक्खी पालन जो काज कर जरूरत है तो एक विषय में रौरे चटिक भूमिका बताते हैं।
2: सबसे पहले किसान भाई मल्ला नमस्कार। और जैसे हम देखते हैं कि हम उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र जो सरगुजा अंचल है या 5 जिला 6 जिला जतक भी है यहाँ हम निवासरत हन। और हमन आज देखत हन कि हर किसान भाई के एक ज़रूरत रथे, तो हर किसान भाई निश्चित रूप से सोचते कि मोर करा जो है पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, तो एकर लिए जो है हमनला सिर्फ खेती किसानी से ही हमनला जो है आय के उत्पादन नहीं हो पाए। तो हमनला ये प्रयास करना चाहिए कि जब भी हमन बात करी तो हमनला जो है एक मिश्रित खेती की हम जहाँ बात करतन तो मिश्रित खेती में हमारे जो है मधुमक्खी पालन एक बहुत अच्छा जो है लाभ के एक स्रोत है। तो ये चीज ला हमला किसान भाई मनला अपन जहाँ भी अपन खेत के चार दीवारी है, जहाँ भी जगह है, वहाँ हमला निश्चित रूप से जो है मतलब पेटी रखना चाहिए और पेटी रख के जो है हमला ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहिए। और दूसरा चीज़ हम ये देखते हैं कि हम उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ भी हम निवासरत हन तो यहाँ हम देखा था कि जल जंगल जमील सारो चीज़ यहाँ मौजूद है। तो इस प्रकार की स्थिति में बहुत सारा चीज़ जो है हमला यहाँ उपलब्ध हो जाते तो हमला
0: मधुमक्खी
2: डॉक्टर यहाँ जो है हमला
0: थोड़ा सा बात ला रुक आगे बढ़ब एक फोन आता है झोंक ले थी। हेलो किसानवाड़ी, हेलो किसानवाड़ी, हेलो किसानवाड़ी, लगत है संपर्क टूट गई अग्नु भैया।
1: हाँ भाई देखा तकनीकी खराबी में आत रहते हैं बाकी किसान भाई मन तो फोन ला लगाता है तो डर सब और गोट लागू करत रहते फोन आ रही तो फिर झोंकब।
2: हाँ तो जैसे मैं अभी बतात रहे कि हमन विशेष करके जो है जब भी हमन मधुमक्खी पालन की बात करथन तो ओकर लिए सबसे पहले जो हमला व्यवस्था ये करना है कि चारा की व्यवस्था करना पड़ेगी। तो चारा ऐसा है कि हमला साल के 12 महीने जो है निश्चित रूप से जैसे हमन पूरा 12 महीना का जो एक पंचांग देखथन ना तो पंचांग के अनुरूप ही हमला जो है उसी प्रकार के फूल के हमला एक पंचांग बनाना चाहिए। जब इस प्रकार से हमन पंचांग बनाबो तो निश्चित रूप से हमारे मधुमक्खी के जो भागे की जो समस्या है वो समस्या निश्चित रूप से हमारे कम होगी। अब दूसर चीज़ ये देखना है कि किसान भाई मल्ला जो है हमला कौन से इस प्रकार के मधुमक्खी है जिला हमन पाल सकते हैं। ये में थोड़ा सा अगर हमन थोड़ा सा वर्गीकृत करबो तो कुछ इस प्रकार के मधुमक्खी है जिला हमन जो है पाल सकत हन, जिला हमन जो है पालतू मधुमक्खी कह सकत हन, जिला बंद बक्सा में हमन पाल सकत हन, जैसे हमन कथन सतघरवा एक जिला देसी जाति कथन। दूसरा हमन जो है विदेशी मधुमक्खी जो है एपिस मेलीफेरा कथन जो इटालियन बी के नाम से जाना जाते और तीसरा जो है डंखिन मधुमक्खी है। तो ये जो मधुमक्खी है जिला हमन पाल के निश्चित रूप से ज़्यादा हमन मुनाफा कमा सकत हन। ऐसी जो है दूसरा जो मधुमक्खी है जिला हमन आंशिक रूप से हमन पाल सकते हैं जिसमें जो है एक छोटी मधुमक्खी जिला हमन कथन लिटिल भी जिला हमन

0: कथन, और एपिस फ्लोरिया, एकर बहुत ज़्यादा शहद जो है बहुत ज़्यादा मीठा होते, लेकिन ये जो है एक जगह नहीं टिक पाए। और तीसरा जो है जो जंगली प्रजाति है जेला हमन कथन एपिस डोरसेटा या भावर के नाम से हमन जानथन, ये मधुमक्खी ला हमन निश्चित रूप से नहीं पाल सकत हन। ये बहुत ज़्यादा क्रोधित नेचर के होते और एक स्थान से ये टिके भी नहीं और बंद बक्सा में मलाल पाल नहीं सकत हन। लेकिन फिर भी जब भी हमन बात करथन कि जहाँ भी शहद के उत्पादन होना है तो हमन ये सारा चीज़ से भी हमन जो है मधुमक्खी से शहद हमन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ ला हमन ला जो है निश्चित रूप से अपन खेत में, खेत के चारों ओर जहाँ भी हमार मेड़ है वो जगह पे जो है हमन चाहे सदघर वाला रख सकते हैं, चाहे विदेशी मक्खी इटालियन बीलर रख सकते हैं, चाहे हमार जो है एक डंखीन मधुमक्खी कथन एक छोटा सा, ये तीनों मधुमक्खी ला पाल के जो है हमन ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अब दूसरा चीज़ में किसान भाई मन ये भी बताना चाहूँ कि मधुमक्खी से ऐसा का चीज़ मिलते जेकर माध्यम से हमन ला जो है पैसा मिल सकते हैं। तो पहला जो बहुमूल्य जो पदार्थ है जेला हमन जो है शहद के नाम से जानथन, तो हर व्यक्ति ला जो है मीठा पसंद है और शहद ऐसा गुणकारी चीज़ है जेला हमन हर जगह में उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा जो है शहद के साथ साथ जो है आजकल हम देखथन ओकर से जो मोम निकलते, तो मोम ला भी हमन इकट्ठा करके जो है बाजार में बेच के अपन जो है आय के साथ स्रोत हमन बढ़ा सकते हैं। तीसरा जो है मधुमक्खी के जोहर जो बेनोम हमन कथन, तो मधुमक्खी के जहर ला भी इकट्ठा करके जो है हमन लाखों कमा सकते हैं। आजकल जो है एक चौथा जो चीज़ है जिला हमन प्रोपोलिस कथन, प्रोपोलिस मतलब जैसे हमन देखथन कि जतक भी हमार जो पेड़ के जो छाल से जो रिस के जो गोंद बनते वो चीज़ ला भी है जो है मधुमक्खी के माध्यम से हमन इकट्ठा करके जो है प्रोपोलिस हमन निकाल के बाजार में बेच सकते हैं। और आजकल रॉयल जेली हो गए है, तो इस प्रकार के जितना भी बहुमूल्य पदार्थ एक साथ साथ किसान भाई मन के एक ऐसा मित्र है यह कि जोन खेत में यदि मधुमक्खी नहीं जाते हैं तो वहाँ के उत्पादन घट जाते हैं, ऐसा एक कहावत है। तो एकर ये मतलब है कि निश्चित रूप से जो है किसान भाई मन ला मधुमक्खी पालन करना चाहिए तो ताकि हमारे खेत के आय बढ़े, खेत के उत्पादन बढ़े, तो वहाँ पोलिनेशन की है तो पोलिनेशन बढ़िया हो, परागण अच्छा हो, तो निश्चित रूप से परागण अच्छा हो तो निश्चित रूप से हमारे जो है खेत के उत्पादन हमारे बढ़ी।
1: डॉक्टर साहब रोरे इतना साल से मधुमक्खी कर विषय में जानकारी ले थी, मधुमक्खी पालन के बारे में बता थी, का संभावना देखी सरगुजा क्षेत्र में मधुमक्खी कर का स्थिति है? किसान भाई मन तो पुरातन काल से देखती हम कि एगो न दो गो डब्बा रखे रहते हैं, बाकी अभी का स्थिति है, रुझान है किसान भाई मन कर?
0: बिल्कुल, किसान भाई मन के रुझान जो है इस दिशा में बहुत बढ़िया है, लेकिन किसान भाई मन जरा सा थोड़ा सा हार मान जाते हैं। अब हमन देखत हन कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में
2: रुके एक फोन ऐसे है झोंक लेते हैं। हेलो किसानवाड़ी, हाँ रौरे अपन परिचय ले बताइए।
3: हाँ भैया, राम राम भैया, मैं चंद्र भान रजवाड़े बात कर रहा हूँ, गाँव अनुजनगर बिलासपुर छत्तीसगढ़ ले।
2: हाँ हाँ, तो सवाल लद रखी
3: तो भैया दे मोर मन में दो से सवाल आवत है और दोनों सवाल मैं बारी बारी से रखना चाहूंगा मन के बीच में। और पहला सवाल तो है भैया कि अभी हम जो मधुमक्खी जो है ओकर पालन करना चाहते तो एकर जो का व्यवस्था कौन टाइप से करना रहते और एकर जो मधुमक्खी कहाँ ले हम की व्यवस्था हो पाई यहाँ मन कर व्यवसायिक रूप से रख पाई मन। और दूसरा सवाल ये रही कि अभी मक्का वगैरह की कुछ खेती करे ना मन, लेकिन मैं भुट्टा वगैरह चालू होगी लगे बार है ना, लेकिन मैं देखा थी कि कीड़ा बहुत ज्यादा लगा था एक फसल में, तो उसका बकाव क्या कर
0: पहला मैं आप मन के जो जवाब ला देत हूँ आप मन कि मधुमक्खी पालन के बारे में आप मन सोचत है बहुत बढ़िया सोचत है और जितना जल्दी हो सके तो आप ये सारी चीज़ ला जो है आप एडॉप्ट कर लहा। और मोर कहे के मतलब है कि आप प्रारंभिक स्तर पे आप मन के जहाँ जगह हुई तो 5 पेटी ले कम से कम चालू करा, तो 5 पेटी ले चालू करी हो तो धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे आप मन के पास फूल की व्यवस्था हो जाही तो उस प्रकार की स्थिति में 5 पेटी से आप मन 10 पेटी बढ़ा सकता है। लेकिन आप मल्ला ये ध्यान करना है कि आप मल्ला निश्चित रूप से आप मन के जो पेटी ला है वो पेटी आप अक्टूबर से चालू करा कि अप्रैल से लेकर सितंबर के जो महीना है ये सीजन में काफ़ी ज़्यादा जो है हमार मधुमक्खी यहाँ स्थल भागते काबर के सीजन में हमार करा फूल की उपलब्धता कम होते। तो और किसान भाई मन का इतना ज़्यादा जो है समय नहीं रहते कि एक स्थान से दूसरे स्थान वो चीज़ ला जो है स्थानांतरण कर पाए पेटी मल्ला, तो ये भी एक दिक्कत होते। और किसान भाई आप मन के सवाल के एक जवाब और भी देना चाहूँ कि आप जब कभी भी जो है मधुमक्खी पालन के बारे में आप मन सोचा था पेटी कहाँ ले मिली कैसे मिली, तो आप निश्चित रूप से जो है आप मोर से संपर्क करा तो आप मल्ला जो है जितना पेटी चाहिए उतना पेटी जो है आप मन के घर तक पहुँच जाएगा।

0: है ना भाई।
1: हाँ
0: दूसरा का क्या
2: बात, मक्का के बारे में पूछ रहे हैं कि कीट लगाता है।
0: हाँ दूसरा चीज क्या है, आपमन की खेती में जो है मक्का भी आपमन लगाया है, और मक्का में जो है एक निश्चित रूप से मैं देखा तो हूँ कि जो आर्मी वर्म है, आर्मी वर्म के साथ साथ जो है फाल आर्मी वर्म हम लगा था, तो ये फाल आर्मी वर्म के बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत आते हैं। तो आपमन विशेष करके ये मैं ध्यान दहा कि आपमन अगर जो है आपमन करा समय है, जैसे पिप्रोनील ले लहा, पिप्रोनील जो दाना है तो ओकर जो है जो गाभा है वो गाभा में दो दो दाना डाल सकता है, या क्लोरोसाइपर है, इमामेक्टिन बेंजोएट है, क्लोराट्रेनिप्रोल है, ये दवा के आप उचित मात्रा ले के जो है आप सुबह में अलग स्प्रे करा तो निश्चित रूप से मक्का में समस्या जो है आप मतलब।
1: हेलो
2: हेलो डॉक्टर साहब एक बार फोन
1: है कि हमन ने अभी तक
3: हेलो
1: कि अगर हमन काटते करे
2: तो हेलो हेलो
3: हेलो किशन बड़ी।
2: हाँ हेलो किशन बड़ी लगे बतावा कहाँ ले बोला था।
3: मैं परियाराम बोला था उदयपुर ले।
2: हाँ हाँ लगे तो पूछा सवाल ना, कहा है सवाल।
3: मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण कब कब होते और कहाँ होते।
0: हाँ तो किसान भाई सबसे पहले राम राम, और मैं आप लोग बताना चाहूँ आप मन जैसे उदयपुर ज़्यादा दूर के नहीं है, और हम समय समय पे जो है मधुमक्खी के प्रशिक्षण जो है हमारे कृषि महाविद्यालय राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र अजीरमा में हमेशा जो है हम मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण देते रहते हैं। और आप मन जब कभी भी आप मन ला आना हो ही, प्रशिक्षण नहीं भी हो ही, तो भी आप मोर से संपर्क करें, हम आप मतलब जो मधुमक्खी के बारे में निश्चित रूप से प्रशिक्षण आप मतलब प्रदान करबो। हेलो
3: सर, तो हम मतलब कैसे पता चली जिसे आए की पता कर ले वो।
0: नहीं नहीं नहीं आप मन मोर नंबर ला आप मन ले ली हो, और कभी भी आप मन लाना हो ही, अंबिकापुर आना हो ही, एक बार जरूर मोर से मुलाकात करा, और ऊपर बाद में पूरा जो है आप मतलब शेड्यूल बता के जो है, या एक आध दो दिन के समय हो ही तो उस पीरियड में हमन आप मतलब प्रशिक्षण दे के जो है।
3: ठीक है सर, ठीक।
2: बहुत बहुत राज पर धन्यवाद, सवाल करें और अच्छा जानकारी वाला सवाल करें, सभी किसान भाई मन पर सवाल है। तो भजन भी देखा हम उनका कार्यक्रम जब लाइव चले ना। हेलो
4: तो सर लगा देखिए फोन भर आवत है।
2: हाँ सर लगा आता है बाकी ना लाइव कार्यक्रम चलत है तो देखिए कि घरे लेकर छुआ उन भी गांव की जी कर तो यही तो एक मजा है।
4: देखा तो एक फोन आवत है।
2: हेलो
5: हाँ हेलो किसानवाड़ी।
2: हाँ हेलो किसानवाड़ी लगे बताओ तो कहाँ ले बोला थी।
5: करी चलगली से बोलत हूँ भैया।
2: हाँ हाँ
5: बलराम मिश्रा।
2: हाँ बलराम मिश्रा जी आरोप बहुत बहुत स्वागत है। लगे तो सवाल करी डॉक्टर साहब बैठी ने जवाब दे बार
5: जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँ, बड़ा अच्छा विषय आप मन आज रखे है मधुमक्खी पालन विषय पर, जेमे की हमारे किसान भाई मन और हमन अधिक से अधिक जो है मुनाफा में कमा सकती अपन कृषि कार्य कर अलावा। जैसे डॉक्टर साहब के मैं सुनत रहे अभी वो बताइन कि जो है शुरुआती कैसे हमन मधुमक्खी पालन कर सकती। अब मैं ये जानना चाहूँ इनका से कि शुरुआती खर्चा जो है वो कितना लगभग आई। वो डॉक्टर साहब तो बताइए कि मोर पास संपर्क कर सकता भाई, 5 पेटी से शुरुआत कर सकता, लेकिन शुरुआती खर्चा जो है वोला बता देते हैं, और एक का सुरक्षा करना पड़ी हम जब अपन घरे पालन करब तब, थोड़ा विस्तृत बढ़िया से बता देते हैं डॉक्टर साहब।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मन थोड़ा सा ध्यान देहा कि जब कभी भी आप जो है मधुमक्खी पालन के बारे में सोचा था और निश्चित रूप से आप मन करे के प्रयास करे सारी चीज़ ला, और ओमे ये देखथन कि देखा कि मैं सतघर वाला करना चाहत हूँ कि हमन जो है विदेशी मधुमक्खी ला करना चाहत हूँ कि हमन जो है डंखिन मधुमक्खी ला, तो ये निर्भर करते और तीनों के अलग अलग है रेट अलग अलग है। तो एक कम से कम जो है आप 5 पेटी अगर करता है तो जो सतघरवा के जो रेट है लगभग लगभग जो है 3,000-3,500-3,500 रुपये जो है हम सप्लाई करके देते हैं, और जो इटालियन भी है जो जो विदेशी मधुमक्खी है वो कम से कम जो है 5,000 पर पेटी देते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में आप 5 पेटी भी करता है 3,000 के रुपये हिसाब से आप मान के चला तो कितक होगी 5-15 हज़ार करीब जो है, तो करीब जो है आप 20,000 रुपये में जो है आप आसानी से जो है ये सारी चीज़ें कर सकता है। और लेकिन उगर मैनेजमेंट आप इतना बढ़िया करा कि हमारे मधुमक्खी जो है जहां हमें 5 पेटी जो है ले रहे हैं, और कल के दिनों 5 पेटी से मैं 10 पेटी

0: बेटी बढ़ा सकत हो, 15 कर सकत हो डिवाइड करके, तो ये विशेष करके ध्यान देने वाली बात है। लेकिन हमन सिर्फ मधुमक्खी पाले से मतलब नहीं है, ओकर लिए हमन ला साल के 12 महीने जो है हमन ला चारा की व्यवस्था करबो, चारा नहीं रही तो पलायन जो है बहुत जल्दी कर देते। तो इस प्रकार की स्थिति में हमन ला जो है जो पंचांग है, जो फूल के जो पंचांग है, साल के 12 महीने जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक हमन ला बनाए के चलना पड़ी, ताकि हमार फूल जो है वाला खाए में जो है मदमस्त रहे और हमार जो है कॉलोनी बढ़े और किसी प्रकार के दिक्कत मत हो। तो ये थोड़ा सा व्यवस्था आप मन ला करना पड़ी, और कर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आते, समय समय पे जो है हर 2 दिन में आप पेटी मन ला चेक करत रहा, चेक करी हो तो क्या है बाहरी जतक भी जो है विषम परिस्थिति जो आते या बाहरी जो जतक भी जो विपरीत प्रकार के जो कीड़ा आते और जो दुश्मन होते, ये सारे चीज़ ला आप मन ला ध्यान दी हो तो निश्चित रूप से दिक्कत आप मन ला नहीं आई और उत्पादन जो है आप हर 15 दिन 20 दिन में आप जो है निकालत रही हो शहद।
1: हाँ, और कोई सवाल है राहुल कर? हाँ बलराम जी, लगत है कि उनकी लाइन कट गई साहब। डॉक्टर साहब राहुल अभी बताते रहे, बड़ा अच्छा है, सवाल राहुल जवाब दें कि भाई खर्चा कम है तो, और एगो बोलें कि चारा पानी कर कैसे व्यवस्था हो सकता है, तो चारा पानी कर हम देखते कि का चीरा लगाही, कौन सा फूल कौन सा सीजन में लगाही, कैसे होकर उत्पादन ला ज़्यादा से ज़्यादा करें कि मधुमक्खी मनोला चूसें और ज़्यादा से ज़्यादा मधुरस उत्पादन करो कर लाभ मिले।
0: देखा वास्तव में हमन ये प्रकृति में हमन जहाँ तक हमन बात करते हैं, चाहे दलहनी फसल हो गए, खाद्यान्न फसल हो गए, तिलहनी फसल हो गए, या हमन जो है जतक भी ऑर्नामेंटल क्रॉप्स हो सकते हैं, या हमार जो है फूल वाला जतक भी फसल हो सकते हैं, और इस नेचर में जतक भी जो पेड़ पौधा के माध्यम से मिलते हैं तो मिलते छे। अभी हमन देखा था कि जो करंज के जो सीजन है तो करंज में इतना ज़्यादा जो है फूल आते हैं तो ऊपर से भी एक बहुत बढ़िया जो है एक स्रोत मिल जाते। दूसर चीज़ अभी जो है हमन बात करते रहे, जैसे जतक भी जो कद्दू वर्गीय फसल है, जैसे कद्दू वर्गीय फसल में आप मन देखोगे कि जो है कोहड़ा है या खीरा है, ये लौकी है या करेला है, तो कद्दू वर्गीय फसल में आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो है आजकल ऐसा व्यवस्था होगी से है कि हमन जो है कोई भी फसल ला कोई भी सीजन में लगा सकते हैं। अभी आप मन टाऊ लगावा, अभी आप मन जो है रामतिल लगावा, अभी आप मन जो है सरसों लगा सकते हैं। तो हमन ला जो है एक अल्टरनेट जो है हमन ला व्यवस्था बना के चलना पड़ी कि एक फूल जैसे हमार जो है ख़त्म होए की स्थिति में है तो दूसरा फूल हमल जो है तैयार हो जाए, तो ओमन ला जो है हमन इतना जो है खाए में हमन मग्न कर देबो तो वो मक्खी जो है भागे के प्रति जो है सोच ही नहीं पाई। तो अगर जो है हमार करा जो है व्यवस्था नहीं है, चारा की व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित रूप से कहा हो ही कि हमार जो है पलायन बहुत जल्दी कर जाए और मधुमक्खी दोबारा लौट के नहीं आ पाए। तो इस प्रकार की स्थिति में किसान मन क्या करते हैं कि मधुमक्खी जो है तुरंत भाग जाते, और साथ ही साथ हमन ये भी देखते हैं कि किसान भाई मन जो है इतना अलर्ट हो जाए कि हमार कर चारा की व्यवस्था यदि नहीं है तो हमन तुरंत जो है अपन पेटी लो उठाए कि जहाँ भी हमारे आस पड़ोस जहाँ भी व्यवस्था है वहाँ जहाँ खेती करीन है तो वहाँ हमन जो है पेटी ला शिफ्ट कर दी। तो इस प्रकार से हमन अगर शिफ्ट करत जाते हैं तो हमारे कॉलोनी भी बढ़िया बढ़ी, और कॉलोनी अच्छा बढ़ी तो हमारे जो नंबर ऑफ पेटी बढ़ा सकते हैं, और नंबर ऑफ पेटी बढ़ाए के साथ साथ जो है हमारे शहद के उत्पादन भी बने हो ही। तो शहद के उत्पादन के साथ साथ जो है आजकल हमन देखते हैं पराग के उत्पादन करना, तो पराग हमन देखते हैं कि हमार जतक भी लोग लड़का मन आजकल जो है जिम के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, बॉडी बनाते हैं, तो बासी भात खाने बॉडी नहीं बने, तो ओकर लिए हमन ला जो एक सप्लीमेंट्री फूड चाहिए, हमन ला प्रोटीन के डाइट चाहिए। तो ये जतक भी जो पराग है, पराग के उत्पादन करके भी हमन जो है बाजार में बेचबो या हमारे घर के उत्पादन हमारे घर के जो है खाए में हमन प्रयोग कर सकते हैं, प्रोपोलिस ला हमन बेच सकते हैं, तो बहुत सारा फायदा है इस प्रकार के। तो ओकरे लिए हमन ला प्रयास करना चाहिए कि हमन ला जो मधुमक्खी पालन ला हर किसान भाई मतलब मैं कहूँ कि अपन खेत के चार दीवारी में जहाँ भी है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक आदमी सीखे, हमार घर के जतक भी लोग लड़का हैं सब जन ला हमन ला जो है मधुमक्खी के जानकारी होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो है अगर सब जन हमन हाथ बटावो तो निश्चित रूप से हमारे जो विकास अच्छा हो।
1: डॉक्टर साहब हम एक चीज जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा फूल है जिनमें ज़्यादा मधुरस उत्पादन होए कर ज़्यादा मिठास वाला, ज़्यादा जो जिला मधुकत है वो बहुत अच्छा मधुरस गुणवत्ता युक्त हो, ऐसा कोई पुष्प रहे का?
0: देखा वास्तव में हमन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। अभी जैसे लीची के सीजन हुई, लीची के फूल अभी ख़त्म हो गए से लीची के अभी जो है फल बनाते हैं जिनमें जो है रस बनाते हैं, तो जब तक हमन जो है लीची के फल हमन तोड़ के ख़त्म नहीं कर दाबो तब तक जो है हमार मधु के उत्पादन होत रही। तो लीची के जो शहद

0: होते, काफ़ी गुणकारी होते, काफ़ी खाए में जो है काफ़ी पौष्टिक होते। दूसरा जो है, हमन देखते हैं कि मेन पार्ट के जो क्षेत्र है जहाँ जो टाऊ के सीजन रहते, तो टाऊ में भी बहुत ज़्यादा हमार जो है पोलन और नेक्टर
1: अच्छा
0: दोनों मिलते और इतना बढ़िया जो है वो शहद निकलते, लेकिन थोड़ा सा बदबू आते। तो खाए में जो है मीठा तो है पर लेकिन थोड़ा सूंघे में अलग टाइप के
1: रहते। बिसर बिसर
0: साथ ही साथ हम जैसे देखते हैं कि हम जो है रामतिला जानते हैं, तो रामतिला जो है हम देखते हैं रामतिला से भी बढ़िया हमारे निकलते पीला फूल होते। और मधु के मधुमक्खी के एक ऐसा जो है नेचर है कि जतक भी जो पीला फूल जहाँ दिखिस तो एकर प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते। तो हमारे जो है रामतिला के जो भी हमारे शहद मिली ना, वो थोड़ा सा हल्का सा कड़वापन आई। साथ ही साथ जब हम सरसों के सीजन में, रवि में देखते हैं कि सरसों के सीजन है तो सरसों भी बहुत ज़्यादा अच्छा फूल आते, तो वहाँ से जो भी मिली तो सरसों के जो रवाए के जो गंध है ना वो भी बहुत है। और साथ ही साथ ओकर अलावा तो जतेक भी चाहे सरई के फूल होगी, चाहे करंज होगी, चाहे नीम के फूल होगी, और भी जो है ऑर्नामेंटल होगी, आजकल हमन देखते हैं कि जहाँ जहाँ गुलमोहर के पौधा है, तो इस प्रकार के सब चीज ला मिला के जो शहद के निर्माण करते जिला हमन मल्टीफ्लोरा कथन। तो विशेष करके हमारे उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में जो लीची के जो शहद है बहुत अच्छा माना जाते, खाए में जो है काफ़ी मिठास है, काफ़ी अच्छा पौष्टिक है। तो हमन ला जो है ये लीची के शहद मतलब प्रयोग।
2: डॉक्टर साहब, हम देखे रहें कि कृषि विज्ञान केंद्र में धर गए रहें तो रौरे जहाँ जगह मधुमक्खी के पालन करवाया रहा, जहाँ डब्बा रखे रहा, वो जगह धनिया कर भी खेती हो रही, तो धनिया के फूल हर कितना महत्वपूर्ण माना जा सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, धनिया के फूल से भी बहुत बढ़िया होते। धनिया होगी साफ मतलब साथ साथ जो है सौंफ होगी, तो यहाँ जो है धनिया में बहुत अच्छा जो है हमारा उत्पादन होते, काबर के ओकर फूल भी काफ़ी ज़्यादा स्टिक थे। आज हमन व्यवस्था करके चला था कि हमारे जो है सूरजमुखी के चारों ओर हम सूरजमुखी लगाए हैं, साथ ही चारों ओर जो है हमन कद्दू लगाए हैं, तो एक एक कद्दू के जो फूल है वो कद्दू में भी इतना ज़्यादा जो है हमार बढ़िया मक्खी आते और उनमें से जो है पराग इकट्ठा करते। तो पराग और जो है जो मकरंद ये दो चीज़ मिल के जो है हमारे शहद के निर्माण होते। तो ओकरे लिए हमने प्रयास करना चाहिए कि जो भी हमार आजकल एक हमेलिया और साथ ही साथ मैं ये कहूँ आज ये जो उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में हमन देखते हैं एक धवई करके एक फूल है जो एक जंगली प्रजाति है, तो धवई के फूल में जो है इतना मिठासपन है, वाला चूसियो तो पूरा जो है इतना मिठासपन आते, तो वहाँ से भी जो इतना ज़्यादा जो है नेक्टर की मात्रा, इतना ज़्यादा मकरंद की मात्रा के स्रोत जो है वो एब्जॉर्ब करते, अवशोषित करते, और उकर बदले में जो है एक बहुमूल्य पदार्थ जो है मतलब जो प्रदान करते, जिला हमन शहद के नामकरण के नाम से जानते हैं, है ना। तो किसान भाई मतलब हमेशा कुछ ना कुछ जो है फूल, चाहे ऑर्नामेंटल कुछ भी हो, सीजनली फ्लावर कुछ भी हो, तो हमारे सारी चीज़ जो है मतलब व्यवस्था करके चलना पड़ेगी।
1: अग्नि भैया, देखिए बहुत सुघर इधे गुठियावत हैं मधुमक्खी पालन कैसे करें और कौन तरह से भाई पुष्प कर चयन करें, बाकी मैं कहते रहें कि कुछ संदेश मना है बोला सुन लेते हैं
2: लगे तो सुना जाए।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
7: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान
1: इस अंशदायक योजना

0: योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
0: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भजन भैया, बड़ा बढ़िया गोट कर रही थी, मतलब एगो मधुमक्खी कर दुनिया हर ही अलग है।
4: हाँ।
3: तो हम भी देखती कि कृषि विज्ञान केंद्र में जाती तो बड़ा लगन से लगे रहते हैं और कृषि के छात्र मतलब भी पढ़ाते हैं। और तो डॉक्टर साहब जानना चाहती कि कृषि के छात्र मतलब कौन तरीका से कर पढ़ाई करा थी और कैसे ओमन ये सीखता है और सीखता है तो अपन गाँव में जहाँ जाते हैं वहाँ भी एक प्रयोग मतलब करवाते हैं कि कैसे।
5: नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हमन जहाँ भी हमर जो चतुर्थ मतलब प्रथम वर्ष से लेकर चतुर्थ वर्ष के जतक भी जो छात्र हैं तो इमन ला हमन जो है जो सैद्धांतिक साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान तो हमन जरूर देवन देवेज करथन और हमन ये प्रयास करथन कि आप मन जो है ये मधुमक्खी के पेटी ला आप मन देखा, हर चीज़ ला आप मन जो है निकाल के देखा कि इतना फ्रेम होते, किस प्रकार की कर बनावट होते, मधुमक्खी जो है इटालियन भी किस प्रकार के होते, ओकर रानी कैसे होते, ओकर सैनिक कैसे होते, ओकर मोम के छत्ता हमन कैसे बनाथन, तो ये तमाम जानकारी जो है हमन ला ओमन ला साक्षात्कार जो है हमन दिखा बिल्कुल दिखाथन और दिखाए के साथ साथ जो है मन ला करते हुए सिखाथन करना चाहिए। भाई पढ़ाना अलग चीज़ है और खुद ऑपरेट अगर करते हैं तो बहुत जल्दी उस सीख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है वाला बराबर मात्रा में हमन ओमन ला ये भी दिखाथन कि ये फलाना फूल है, एकर इस प्रकार के नेक्टर होते कि इसमें जो है पोलन होते, पराग होते कि मकरंद होते, एकर बारे में भी हमन जानकारी देथन। साथ ही साथ ओमन ला ये भी दिखाथन कि आने वाले समय पे समय समय पे जो है देखा जतक भी जो है मधुमक्खी पालन में जो है कुछ व्यवधान भी पैदा होते कि कभी कभी जो है जैसे हमारे उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में देखथन कि भालू के प्रकोप भी बहुत ज़्यादा है, तो भालू ला भी बहुत ज़्यादा जो है शहद की पसंद है। साथ ही साथ हमन ये देखथन कि आजकल जो है जो हमन ततैया जिला बर्रे कथन तो बर्रे भी बहुत ज़्यादा नुकसान करते आजकल, ओकर साथ साथ हमन ये भी देखथन कि जो भी हमर जो है आजकल ग्रीन बीटर कथे एक छोटा सा चिड़िया है जैसे गोरैया टाइप के है।
4: अच्छा।
5: और ब्लैक ड्रोंगो है, तो इस प्रकार के बहुत सारा जो है कीट पतंगा है ये में से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होते, तो समय समय पर हमन ला एक ध्यान ये देना है कि हमला जो पेटी के जो है समय समय पे जो है हर दो दिन तीन दिन में जो है निरंतर हमला जो साफ सफाई करत रही, तो साफ सफाई करे से हमें ये पता चल जाए कि वास्तव में कहीं जो है रानी सेल तो नहीं बन गई से, तो रानी सेल ला हमला तोड़ना पड़ी, रानी सेल अगर नहीं तोड़त हन तो जो है पुराना रानी जो है उड़ के कहीं से चल जाही तो हमार पेटी खाली हो जाही, तो ओकर लिए हमला सारा जो है व्यवस्था करके चलना पड़ते। और साथ ही साथ अगर भोजन नहीं है, आजकल भोजन की समस्या थोड़ा सा अप्रैल से लेकर जो है सितंबर तक के महीना में थोड़ा दिक्कत हुई, ओकर लिए हमला जो है आर्टिफिशियल डाइट हमन देबो जो जेमे जो है हमारे शहर शक्कर के जो घोल है आजकल हमन जैसे शरबत पीथन ना, तो गर्मी में वही हिसाब से पतला हमन जो है ओकर लिए भोजन देबो। और आजकल जहाँ जहाँ जो है हमन देखतन कि जहाँ जहाँ गन्ना के जो पेराई चलत है तो ओहूला हमन जो है पानी के साथ मिला के जो है हमन दे सकते हैं बढ़िया मिठास आई, तो ये सब चीज ला हमन जो है निश्चित रूप से करबो तो हमन ला किसी प्रकार की दिक्कतें हमन ला नहीं आए।
3: भजन भी हम लोग का समय भी होता है लेकिन जात जात देखा किसान भाई उनको फोन हर तो आई तो झोंकब, लेकिन हम अपन तरफ से पूछ ली कि मधुमक्खी ला खतरनाक भी मानल जाए तो ये कहाँ तक है, कैसे सुरक्षित रहें, हमें जो समय भी कम है वही हिसाब से रूरी बताते हैं कि सुरक्षित रह के कैसे उत्पादन ले सकते हैं।
5: बिल्कुल बिल्कुल, देखा ओकरे पर मैं शुरू में ही आप किसान भाई मतलब बताएं कि हमन वही मक्खी वाला हमन पाल सकते हैं जे जेघर जो है बंद बक्सा में हम पाल सकते हैं और क्रोधित नेचर ओकर कम होते, जैसे सतघरवा है, सतघरवा जो है कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं करे, डंक भी मार दे कोई दिक्कत नहीं है, डंक लगना और अच्छी बात है। आजकल हमन देखते हैं कि हमारे जो है जगह जगह जोड़ के दर्द होते हैं, कई प्रकार के जो है परेशानी होते हैं, तो हमला जो है किसान भाई मतलब डंक भी लगवाना चाहिए तो उकर जो बेनौम अंदर जाए तो कहीं ना कहीं दवा के रूप आई। दूसरा हमारे जो है विदेशी मधुमक्खी है तो एहूला जो है हमन पाल सकते हैं अच्छी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, और एक जो है डंकहीन मधुमक्खी, तो ये तीन मधुमक्खी ला हमन जो है बेफिक्र हो के किसी प्रकार से दिक्कत ना हो के पाल सकते हैं, तो एक से हम शहद के उत्पाद कर सकते हैं। अगला जो है जो हमन देखते हैं जो जो भांवर है, तो ये भांवर मधुमक्खी जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करते, काफ़ी एग्रेसिव नेचर के होते, एक कारण जो है हमारे अंबिकापुर में बहुत ज़्यादा मौत भी हुई से है, तो ऐसे मधुमक्खी ला जो है हमन पाल भी नहीं पक सकते हैं, तो ऐसे ही मधुमक्खी ला हमन ला पालना भी नहीं चाहिए। हालांकि ओकर शहद के उत्पादन बहुत ज्यादा है, लेकिन निश्चित रूप से जो है हमन वो चीज ला नहीं पाल सकते, इसलिए हमन ला प्रयास करना चाहिए।

0: कि जो मधुमक्खी ला हमन पाल सकबो वही चीज ला हमन ला पाले के प्रयास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहिए।
1: तो अग्नु भैया देखिए ऐसा लगता है कि गोट ला तो सुनते रही
2: भाई एकदम कहानी नहीं हाँ। बढ़िया जी मधुरस कर गोट करती लेकिन
1: इनकर गुरतुर बोली
2: गुरतुर बोले हर भी एकदम हाँ। लाकर
1: सिखाता है बाकी घड़ी कर कांटा घलु कहता है कि विदा लेहल जाए। आज हमारे बीच रहिन भी डॉक्टर पीके भगत वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक प्राध्यापक कीट विज्ञान राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अजीमा अंबिकापुर ले। तो इनकर बहुत बहुत धन्यवाद करत है।
2: हाँ भाई
1: चलल जाए
2: हाँ।

0: ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रही
1: कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: दो एक घंटा होता
3: भजन भैया बात करने में। भजन भैया देखा है दे हम उनकर चौपाल भी विद्यालय के जुआर हुई नहीं तो आन दिन फिर भेटा वो चल जाए राम राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल, मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आधारित हमारे श्रोताओं के किए गए फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज, इंस्टा फरमाइश।

0: लुटे कोई बातों में, देखे कोई प्यार से।
1: कौन मैं?
2: हाँ तुम, बस तुम।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश पर अभी आप सुन रहे थे अजनबी फिल्म का ये गीत। आवाज़ है उदित नारायण, अलका याग्निक एवं अक्षय कुमार की। संगीत निर्देशन था आनो मलिक का और गीतकार हैं समीर। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता जिला नांदेड़ इतला महाराष्ट्र से शंकर जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद एवं दुर्गेश्वरी जायसवाल। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति एवं भूमिका अरोड़ा। जिला कोरबा से ओम प्रकाश यादव, संतोष तारा, सरोज संध्या साक्षी एवं गया प्रसाद यादव। अमगासी कुन्नी चौक नवापारा लखनपुर डिस्ट्रिक्ट सरगुजा छत्तीसगढ़ से मुनीश राम, शालिनी, रुचिका, अनिका, मनीष, संचिता, चांदनी, दीपांशु एवं परिवार के सभी सदस्य। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार ने भवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता एवं परिवार के सभी सदस्य। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खटसे एवं विनोद खटसे। जामनगर गुजरात से सावित्री जोशी, बाबू जोशी, प्रिंस कृष्णा, आनंद, रेणुका, हिमेश, श्वेता।

तपस्या माही। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना एवं राजेंद्र सिंह ओबेराय। दयानंद कॉलेज भवानी पेट सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्किन, रितिका वानी आरव चंद्रकला गणेश काशीनाथ, संगीता आरोही एवं प्रियांशी सोनी। ग्राम पेपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति एवं शिवांश वर्मा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म साथिया से। आवाज़ है साधना सरगम एवं मुर्तजा खान एवं कबीर खान की। संगीत निर्देशन है ए आर रहमान का एवं गीतकार हैं गुलजार।

साथिया फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे सादा सरगम मुर्तजा खान और कादिर खान की आवाज़ में। इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी हमारे श्रोता बीर सिंह पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश से, संतोष कुमार राव, भारती राव, बेला सिंह, विकास सिंह, ओम प्रकाश सिंह, शुभम विश्वकर्मा एवं अरुण विश्वकर्मा, परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश संघई एवं परिवार के सभी सदस्य, मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जिया और रहमान, शेख अता और रहमान एवं शेख हबीबुर रहमान, ग्राम पंचायत सिरकोतंगा महादेव पारा पोस्ट लहपटरा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम राजवाड़े, परमान राजवाड़े, लल्लू बल्लू, घनु, अमित कुमार, अभिजीत, गोविंद, तरुण, सकल राम, प्रियांशु, राजकुमारी, नेहा नायरा, समायरा, खुशी, सौम्या, उमेश्वरी, मुन्नीबाई, सोनामती, माया राजवाड़े, सिमरन राजवाड़े एवं परिवार के सभी सदस्य, ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेलसाय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, लकी सीताराम एवं सितंबर मरकाम। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में आइए सुनते हैं अगला गीत अनकही फिल्म से। आवाज़ है केके की, संगीत निर्देशन है प्रीतम का और गीतकार हैं अमिताभ वर्मा।

सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाज़ में दबंग 2 फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन था साजिद वाजिद अली का और गीतकार थे इरफान कामिल। इसी के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से

0: sports. This is what I feel is a situation where India is standing at the threshold of not just being a large market for toys, but we are now also globally recognized for safe, innovative, culturally rooted, and high-quality toy manufacturing led by micro and small enterprises.
1: Okay, that's quite an introduction as to what triggered the transformation. What were the key policy measures, Vinod, that made the imports fall by up to 52%, which is quite a massive drop? So what were the measures taken that made this happen?
0: Almost 6-7 years back, if you look at, we imported a large percentage of our toys, especially low-cost plastic and electronic toys and all that. And majority of our imports were largely dominated by Chinese manufacturing ecosystems. Whereas Indian toy manufacturers struggled to compete on pricing, scale, and so on and so forth. This was primarily linked to, I'd say, six things. So you had the mandatory BIS quality standards for toys that came in. We had the higher custom duties. We had stricter compliance and testing requirements for imported toys. And we also brought in the anti-dumping and quality control measures. Now, these four, along with the vocal for local push and Make in India push, which sort of saw enhanced manufacturing capacity locally for toys, and the consumer sentiment, which basically pushed against using imported toys, which was so easy, so cheap, and it was almost like majority of the toys were dumped into India.
1: We also have with us at this point of time a toy maker, Chitari. He joins us from Maharashtra. Let's hear what he has to say about toy making and what transformation that has come into the toy industry. Chitari, आपका बहुत स्वागत है मनी टॉक्स में.
2: थैंक यू सर.
1: आप बताइए कि आपकी कहानी क्या है.
2: मेरा नाम अमित चितारी है. मैं सावंतवाड़ी से आर्टिजन करके हूँ. और हम लोग एक मेरी ये फोर्थ जनरेशन है. अभी भी हम लोग वुडन टॉयज बना रहे हैं इधर सावंतवाड़ी में.
1: ओके.
2: स्पेशली हमारा जो टॉयज है वो गंजीफा आर्ट रिलेटेड है. गंजीफा ट्रेडिशनल आर्ट है. उससे जो कलर स्कीम है वो उसमें जुड़ी है.
1: ओके. तो आप मुझे ये बताइए कि कुछ सालों से आपने क्या बदलाव देखा है टॉय इंडस्ट्री में आते हुए.
2: अभी लोगों का माइंड थोड़ा चेंज हो गया है. लोग फिर से वुडन टॉयज के बढ़ रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक वगैरह को ज्यादा यूज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक जो मतलब जो लकड़ी का खिलौना है ना उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग अभी.
1: ओके. और आपको क्या सरकार की योजनाओं से कुछ फायदा हुआ है.
2: बिल्कुल फायदा हुआ है. उसकी वजह से हमने थोड़े हमारे वर्कशॉप में ऑटोमेशन मतलब सीएनसी मशीन्स वगैरह खरीद लिए हैं तो उससे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है हमारा.
1: और आप क्या सोचते हैं कि आजकल जो आपके ग्राहक हैं वो ज्यादा अवेयर हैं सस्टेनेबिलिटी के. वो जानते हैं कि प्लास्टिक से कितने लाभ नहीं मिलते हैं जितना लकड़ी के टॉयज से मिलते हैं. बच्चों के लिए वो ज्यादा सेफ हैं. क्यों आजकल ये अवेयरनेस आ गई है क्या लोगों के बीच में.
2: बिल्कुल सर आ गई है क्योंकि ज्यादा करके लोग है ना अपने बच्चों के तरफ से ज्यादा सेफली सोचना शुरू कर दिया है क्योंकि लकड़ी का कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता. और हम लोग जो लकड़ी यूज करते हैं वो स्पेशली जामुन की लकड़ी यूज करते हैं.
1: ओके.
2: बच्चे के लिए तो जामुन की लकड़ी जो रहती है ना वो अगर बच्चों ने ना मुंह में डाली तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है.
1: तो आप क्या आपके ये जो टॉयज हैं ये भारत से बाहर भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं.
2: हाँ सर होते हैं लेकिन हम लोग नहीं करते. हमारे से लेके दूसरे लोग करते हैं.
1: चितारी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए.
2: Thank you, sir.
1: So, Vinod, coming back to you after listening to what Chitari said to us that he's been in this business for the past 4 decades, where China has dominated the global toy market. Now, how is India now competing, like people like Chitari competing with them? And what is our edge over Chinese manufacturers?
0: If you look at the overall toy ecosystem, I feel micro and small enterprises have largely responded very, very positively to the government's initiatives in the toy sector. And I think the policy push is one of the strongest examples of how targeted regulatory and industrial interventions can primarily revive domestic manufacturing ecosystem. So many toy manufacturers used to talk to us about the fact that there was intense pressure from low-cost imports, especially in those that were in the unorganized and mass market segments. A large number of small manufacturers shut down operations or shifted to trading imported products due to unsustainable competition. The government's interventions, especially the mandatory BIS quality standards and the high import duties, fundamentally changed the industry sentiment

0: नमस्कार, मंथन कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित गोयल। आज हम चर्चा करेंगे विकसित भारत जी राम जी के बारे में। हमारे साथ आज जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: आशुतोष जी। जैसा कि ये विकसित भारत जी राम जी योजना, जिसके बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया था, दिसंबर में इस बात की घोषणा करी थी, तो क्या मानते हैं किस तरह से ये एक गेम चेंजर के रूप में आएगी?
1: गेम चेंजर इस सेंस में इसको कहना चाहिए कि जो खामियां थी, लंबे अरसे से चली आ रही थी, लगातार खामियां, करप्शन हो रहे थे, लोगों के नाम गलत तरीके से चढ़ा करके कोई और पैसे वसूल रहा था, ये खामियां दूर होंगी। और जो विकसित भारत की सोच है कि अगर देश का विकास होना है तो जो भी निर्माण हो वो स्थायी हो, उस दिशा में ये जी राम जी की पहल जो है वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी दिशा में जाएगी। और अगले 5-7 साल में जब इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा, तब ये पता चल जाएगा कि जिस सोच के साथ इसे जमीन पर उतारने की कोशिश हुई है वो पूरा हो गया, और सही तरीके से अगर इसका कार्यान्वयन हुआ तो मुझे विश्वास है कि वो पूरा होगा।
0: जी, चलिए सुनते हैं हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी जानकारी देते हुए क्या कहा और कब से लागू हो रही है इसके बारे में उन्होंने बताया।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1 जुलाई से अब विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार चाहने वाले हमारे मजदूर भाइयों को, बहनों को अब 100 नहीं, साल में 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। बीच के समय में मनरेगा के सारे प्रावधान लागू रहेंगे। अधूरे काम अभी 1 जुलाई के पहले तक मनरेगा के अंतर्गत ही पूरे किए जाएंगे। अभी व्यापक पैमाने पर राज्यों से सलाह मशवरा करके नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है। विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत अधिकतम राज्यों को 6 माह का समय रहेगा अपेक्षित तैयारी के लिए।
0: आशुतोष जी, जिस तरह से मंत्री जी ने भी कहा कि 6 महीने का समय दिया गया है तैयारी करने के लिए, लेकिन जब तक, जैसे कि 1 जुलाई से ये प्रावधान लागू होने हैं और तब तक मनरेगा के प्रावधान ही लागू रहेंगे, तो इसमें क्या कहीं कोई संशय है या कुछ इस तरह की बात है जिसमें लोगों को समझ नहीं आ रहा या राज्यों से कोई अपेक्षा समर्थन नहीं मिल पा रहा?
1: जो विपक्षी राज्य हैं उनकी ओर से ये सवाल उसी समय से उठने शुरू हुए थे कि इसमें अगर 40% राज्यों को खर्च करना पड़ेगा तो राज्यों पर भार पड़ेगा और वो समस्या होगी। तो विपक्षी राज्यों की ओर से ये समस्याएं आ रही, वो उनकी ओर से ये सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन जो दूसरी बातें हैं इसमें कि देखिए, जो नए प्रावधान इसमें किए गए कि भाई आप 125 दिन की का गारंटी देंगे, आपकी जो निगरानी व्यवस्था होगी, निगरानी तंत्र होगा, वो बिल्कुल जमीन पर मौजूद होगा। अगर 1 सप्ताह का साप्ताहिक कोई काम होता है तो सप्ताह खत्म होते ही उसे तत्काल पेमेंट होना चाहिए, इस तरीके की तैयारियां। और प्लस ये कि आप एक तैयारी इस लिहाज से करते हैं कि हमें किस तरीके के कंस्ट्रक्शंस करने हैं, क्योंकि इसमें पंचायतों की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। बहुत सारी योजनाएं जो पहले से चल रही थी उसको इसमें समाहित किया जाना है, तो इस तरीके की तैयारी की बात थी। देखिए, अदरवाइज तो क्या है, 2005 से ही ये योजना चल रही थी तो चल ही रही थी। जो बदलाव हुए उसको देखते हुए जो तैयारी राज्यों को करनी है, उस लिहाज से जो ग्रामीण विकास मंत्री ने जो बात कही, मुझे वही लगता है इसमें बहुत कंफ्यूजन की बात नहीं है।
0: और 1 जुलाई से इस तरह की योजना लागू हो रही है और इसमें जिस तरह से आपने भी बताया कि इसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं, नए कामों को भी, और साथ ही साथ समय से भुगतान को सुनिश्चित किया गया है, और अगर भुगतान अगर समय से नहीं होता तो क्या किसी तरीके का उनको हर्जाना भी मिलने की इसमें कुछ प्रावधान है?
1: जी बिल्कुल, ये अच्छी बात इसमें है, क्योंकि देखिए जो पुराने रिकॉर्ड जो बताते हैं मनरेगा के टाइम से जो चलती रही थी बात, उसमें ये समस्या शुरुआत से आ रही थी कि काम कर लिया, भुगतान नहीं हो रहा है, महीनों महीनों पड़े हुए हैं, और फिर देने के लिए जो है सो मजदूर को रिश्वत देनी पड़ रही है, इस तरीके की समस्या। तो इसमें बकायदा ये इंतजाम किया गया, क्योंकि ये तो रिकॉर्ड में होगा ना कि आपने आज से काम शुरू किया और अगले 20 दिन तक पहले काम किया, ये रिकॉर्ड में है। और उसमें प्रोविजन है कि आपको जो है

0: कार्य संपन्न होने के बाद मैक्सिमम जो है 15 डेज का दिया गया है कि उसके बीच में आपको भुगतान करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो पर डे के हिसाब से हर्जाना उसमें जोड़ना होगा। तो ये अच्छी बात है क्योंकि मुझे लगता है कि तभी तंत्र ज्यादा मजबूती से काम कर पाता है जब उसमें एक जवाबदेही तय कर दी जाती है। तो यहाँ जवाबदेही की गई है।
1: जवाबदेही की आपने बात करी तो इस बारे में भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ जानकारी दी है।
2: दीक्षित भारत जी राम जी के अंतर्गत रोजगार देने के लिए भारत सरकार ने ही अपने बजट में 95,600 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान किया है। राज्यों ने भी अपने अपने बजट में विकसित भारत जी राम जी को लागू करने के लिए प्रावधान किया है और केंद्र और राज्यों की कुल राशि अगर जोड़ ली जाए तो 1,51,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। मजदूरों को भुगतान DBT के माध्यम से उनके बैंक या डाकघर में जो अकाउंट है उसमें किया जाएगा। कोशिश होगी कि 3 दिन के अंदर हो लेकिन अधिकतम 15 दिन के अंदर प्रक्रियाएं पूरी करके उनके खाते में पैसा आ जाए। 15 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं आया हमारे मजदूर भाई बहन विलंबित भुगतान के पात्र भी होंगे। जो देरी से देंगे तो उस पर एक निश्चित राशि अलग से देनी पड़ेगी और मांगने पर अगर रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ेगा।
1: जिस तरह से मंत्री जी ने कहा कि अगर मांगने पर रोजगार नहीं मिलता तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा तो कहीं ना कहीं कोई संशय की गुंजाइश तो बनती नहीं है। ये योजना पहले की योजना से किस मायने में अलग देखते हैं आप?
0: 2-3 बड़े अंतर है अगर सिर्फ प्रावधान की बात करें। प्रावधान की सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर उसमें 100 दिन की गारंटी थी तो इसमें 125 दिन की गारंटी है और राज्यों को ये तय करने का अधिकार दिया गया कि आप कौन सा लीन पीरियड मानते हैं और कौन सा ऐसा पीरियड मानते हैं जिसमें काम नहीं दिया जा सकता। ये दोनों चीजें हैं उसमें। रेनी सीजन है, अब पता चला उस बीच में कोई रोजगार मांगने आ जाए तो कैसे देंगे आप, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम होना है वहां पर। तो इस तरीके की छूट भी है राज्यों को। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है कि ये थोड़ी बहुत घटनाएं होती थी कई जगहों से कि काम मांगने पर भी काम नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि इंतजार करवाते थे वो जो जिलाधिकारी होते थे, वो ये देखते थे कि भाई अभी काम शुरू करना है तो फिलहाल इसको टाल कर रखो। जो एक होता है ना कि फिलहाल आप इसको नजरअंदाज करो, फिर कोई काम शुरू होगा तो फिर महीने भर बाद 45 दिनों बाद एक कोई काम शुरू हो रहा है तो उसमें जोड़ने की कोशिश होती थी। इसमें जो अच्छी बात है नई स्कीम में क्या है कि विभिन्न योजनाओं के तहत बहुत सारे कार्य राज्य सरकारों के भी चल रहे होते हैं। गांव में हॉस्पिटल बन रहे हैं, कोई और काम हो रहा है, बहुत तरीके के काम, कोई तालाब खुदाई की बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो उसको इस सकता है। जो इन्होंने बात कही कि केंद्र और राज्यों के पैसे मिला करके केंद्र ने 95,000 करोड़ रुपीस का इसमें प्रोविजन किया है और राज्यों की ओर से जो 40% की बात थी उसको जोड़ करके उन्होंने वो कहा। अब इसमें बहुत सारे काम हो सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई व्यक्ति जो अनस्किल्ड लेबर जिसकी बात हम करते हैं, चूंकि इसमें अनस्किल्ड लेबर को ही मिलता है, वो कोई काम मांगे और उसे काम नहीं दिया जा पाए, मुझे ऐसी कहीं गुंजाइश नहीं दिखती है। फिर भी अगर कहीं इस तरीके की स्थिति होती है तो मुझे लगता है वहां जरूर जानबूझकर लापरवाही हो रही है। ये एक सबसे बड़ा अंतर है कि बदलाव दिखेगा मुझे लगता है।
1: जी, क्या इसमें राज्य सरकार या पंचायत के स्तर पे भी जो कुछ कार्य होते थे उसमें इसमें समाहित किया गया है उनको, और जिससे कि आपने भी जैसे बताया कि बहुत सारे कार्य अलग अलग तरीके से चलते रहते थे लेकिन सबको एक समाहित करके जिसमें कि धन का आवंटन की कमी ना आए, क्योंकि एक बड़ा भाग इसमें बजट में भी इसके लिए प्रस्तुत किया गया है।
0: यही बात जो राज्य विरोध कर रहे थे उनको यही समझाने की कोशिश हुई थी कि 40% ये आप पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ रहा है। अगर कोई भी निर्माण हो रहा है राज्य में तो वो राज्य के फायदे के लिए है या नहीं, तो राज्य के लिए फायदे क्या है तो राज्य उसमें हिस्सेदारी क्यों नहीं करेंगे। राज्य के लोगों के फायदे के लिए है कि नहीं कि उन्हें रोजगार मिलेगा तो फिर राज्यों की हिस्सेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारी और जवाबदेही, ये दोनों चीज इसमें समाहित किया गया है, जिससे मुझे लगता है ये ज्यादा प्रभावी होगा, जमीन पर ये दिखना शुरू होगा।
1: जी, इस बारे में केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि एक बड़ी धनराशि इसके लिए रखी गई है और इसमें कौन कौन से कार्य कराए जा सकते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ जानकारी दी है।
2: 1,51,000 करोड़ से ज्यादा की विशाल धनराशि से गांव में इंफ्रा के सारे काम व्यापक पैमाने पर होंगे। जल संरक्षण के काम, गाँव में अधोसंरचना के काम, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, खेत, सड़क जो जरूरी है सब किए जा सकेंगे। आजीविका मूलक काम भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदी हो, FPO हो, उनके लिए वर्किंग शेड जैसी कई अधोसंरचनाएं भी बनाई जा सकेंगी और प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए भी संरचनाएं जैसे रिटेनिंग वाल वगैरह, अगर नदी के किनारे कोई गांव है या जहाँ पानी भरता है तो वैसे काम भी लिए जा सकेंगे।

0: इस योजना के अंतर्गत जो काम करने वाले हमारे कर्मचारी साथी है उनको पर्याप्त और समय पर वेतन का भुगतान हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यय को भी बढ़ा के 6-9% कर दिया गया है। मजदूरों की जिंदगी में एक नए सवेरे का आगाज हो रहा है और विकसित भारत के लिए विकसित गांव बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी का पूरा करने में यह योजना मील का पत्थर साबित होगा।
1: जैसे केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विकसित गांव बनाने की तरफ ये एक बड़ा कदम है, तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि क्या गांव के आसपास ही उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा, इसके लिए समर्पित होगा, या उसमें कहीं दूरी का भी कोई प्रावधान नहीं है?
2: जो इसकी मंशा है वो यही है कि गांव के आसपास जो जहां के रहने वाले हैं उसके आसपास ही रोजगार मुहैया हो। और चूंकि बहुत बड़े स्तर पर कार्य चल रहे होते हैं हर जगह, कार्य और नए शुरू किए जा सकते हैं। अब जैसे इन्होंने बात कही कि जल संरक्षण, अब जल संरक्षण आज देश के की प्राथमिकता में शामिल है, तो जल संरक्षण को सबसे ऊपर रखा गया। इसके अलावा एक खूबसूरत बात इसमें जोड़ी गई है कि आपदा से निपटने की तैयारी। अब देखिए, आपदा से निपटने की तैयारी कई मिनिस्ट्री के लेवल पे चल रही है, जिसमें होम मिनिस्ट्री भी शामिल है और उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्री शामिल है, उसमें वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री भी शामिल है, केंद्र से लेकर के राज्य तक, यानी एक पूरे सहयोग की बात होगी। हर मिनिस्ट्री केंद्र से लेकर के राज्य तक एक दूसरे से सहयोग करके ऐसी अधोसंरचना का, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा होगा जो स्थायी होगा और वो हमेशा के लिए देश के काम आएगा। तो जाहिर तौर पर उसमें गांव तो शामिल होंगे ही। आप ये मान के चलिए कि अधिकतर जो इसमें लाभ मिलना है वो गांव को मिलना है। शहरों में तो बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं से, गांव में ही समस्या सबसे ज्यादा खड़ी होती है, जहां राज्य सरकार भी कई बार हिचकिचाती है और केंद्र सरकार से जो पैसे जा रहे हैं कई बार वो खर्च नहीं हो पाते हैं ढंग से, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इस स्कीम के जरिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा गांव को होगा। और इसीलिए बात हो रही है ना कि गांव, हम लोग तो हमेशा से बोलते रहे कि भारत गांव का देश है, बचपन से हम लोग ये पढ़ते भी रहे हैं, गांव विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा, यही इसकी मंशा है।
1: और शहरों पे भी जो ग्रामीण का जो बोझ होता है, अचानक से शहरों पे शहरीकरण का बोझ है, शायद उसको भी कम करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्र का भी विस्तार होगा। एक महत्वपूर्ण जो मैं इसमें बात देख रहा था कि 5 किलोमीटर से अगर दूर होगा कोई कार्यस्थल तो उसके लिए मजदूरों को कुछ अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा, ये शायद इस योजना को काफी आकर्षक बनाता है।
2: जी बिल्कुल। अब अगर कोई गाँव का एक मजदूर, आप उसे 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक काम दे रहे हैं और दिन भर की दिहाड़ी के हिसाब से, जो चूंकि इसमें मिनिमम वेजेस का ही ये एक हिसाब होता है
1: जी,
2: उस पे तो वो बहुत आकर्षक कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ये बात देखिए, जो पहली योजना थी मनरेगा, उसमें भी ये बात थी कि उस घर के आसपास, लेकिन उसमें कोई एक डिस्टेंस को डिमार्केट नहीं किया गया था कि हाँ 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो आसपास आप कुछ भी बोल सकते थे, 10 किलोमीटर भी बोल सकते थे। तो ये बताना कि भाई 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में, ये बहुत आकर्षक बनाता है। तो एक तो 125 दिन की गारंटी, दूसरा पेनल्टी अगर उनको समय पर भुगतान नहीं किया जाता है उनका जो वेतन है, और तीसरा गांव के बिल्कुल आसपास, ये तीनों चीजें हैं जो इसे बहुत ही आकर्षक बनाएगी
1: जी। क्योंकि ये एक अधिनियम ऐसा है जिसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय योजनाओं का भी समन्वय है, तो एकल योजना बहुवित्त पोषण दृष्टिकोण को इससे काफी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आता है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि राज्य सरकार पे अलग योजनाएं चल रही हैं उसी मतलब की, और केंद्र सरकार भी इसी तरीके की कोई योजना चला रही है, और शायद गांव के लेवल, पंचायत लेवल पे भी, स्थानीय स्तर पे भी इस तरह की कभी कभी योजनाएं आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका समावेशीकरण हो जाएगा तो उसमें बेहतर होगा कि एक तरह की योजना जिसकी की खासतौर पर जरूरत है ग्राम के क्षेत्रों को, उसका पूरा भरपूर लाभ मिल सके।
2: बिल्कुल, यही मंशा है, कन्वर्जेंस। जितनी स्कीम चल रही है उसका कन्वर्जेंस होना चाहिए, तभी क्या है कि आप पैसे को सही तरीके से खर्च कर पाएंगे और सही तरीके से निर्माण भी हो पाएगा। ये बहुत जरूरी इसका हिस्सा था और वही जरूरी है देश के लिए हर तरीके से।
1: चलिए, तो मोटे तौर पे ये मान लिया जाए कि गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार मिलेगा, जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा और चरम मौसम से बचाव संबंधी कार्य इसमें लागू किए जा सकेंगे, 100 दिन के मुकाबले 125 दिन का रोजगार इसमें सुनिश्चित किया गया है, और साथ ही साथ भुगतान भी समय पे मिले इसकी गारंटी भी की गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो शायद इस योजना को पहली योजना से ज़्यादा आकर्षक बनाती हैं और साथ ही साथ जिम्मेदारी भी तय करती हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। आशुतोष जी, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे श्रोताओं के ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में मैं रितिका आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, दिल है कि मानता नहीं, फिल्म से। आवाज़ है अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का और गीतकार हैं फैज़ अनवर।

दिल है कि मानता नहीं फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनने के लिए हमें मेल किया है हमारे श्रोता मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला एवं ओम कुमार, ग्राम धुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार एवं युवराज साहू, नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी, पिंकी साहनी, अफजल मलिक, निप्पी साहनी एवं सुनीता साहनी, अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, दिव्यानी एवं गणेश कामले, मछलीगोदाम कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा, लीलू एवं रीतु सिंह, चंदुलाल पटवा, सुनीता, हर्ष कुमार, विनीता कुमार एवं क्रिस्टी पटवा, दतरेंगी से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा एवं नोखेलाल वर्मा, ग्राम सौंगा मगरलोट से फनेश कुमार चंदन, सावित्री मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार एवं हेयांश कुमार, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदुलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा एवं वान्या सिंगरौल, इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस एवं गंगा देवी विश्वकर्मा। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

0: मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो, माइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगराडे, साफिया अरहान एवं मोहम्मद हसनैन पवार। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ एवं चंद्रकला रेवाड़। सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारसताल सोनगरा से, सारसताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मेर साय, भगत हेमंत कुमार एवं राम खिलावन सिंह पैकरा। डेरपाटन गुजरात से धीरज वी रबारी। सहारनपुर से आशा नारंग सोनाली एवं सुरेश नारंग। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़ एवं विशाल। ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता एवं पांडे राम राजवाड़े। बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र मखीजा, सविता मखीजा, स्वाति मखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी एवं परिवार के सभी सदस्य। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, रिफ्यूजी फिल्म से। आवाज़ है उदित नारायण, अनु मलिक का संगीत निर्देशन है और शब्द रचना है जावेद अख्तर के।
1: जी खड़े खड़े क्या देख रहे हैं आप?
2: कमाल है, उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका।
1: तो चांद को ही देखिए ना।
2: मगर वो सांस नहीं लेता।

के एस चित्रा एवं साथियों की आवाज़ में अशोका फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी हमारे श्रोता तिलक नगर नई दिल्ली से आर एस स्वीटी एवं आर के शुक्ला, उदयपुर से रमेश नचानी, भारती विनीत नचानी एवं बाबू भाई, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा।

रिफ्यूज़ी फ़िल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी हमारे श्रोता सांगली महाराष्ट्र से हनुमंत शिंदे एवं ऋषिकेश शिंदे, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक एवं बलवीर सिंह, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति एवं ओजस्वी यादव, बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता साक्षी, जयश्री, अंजलि करवा एवं बाला साहेब करवा, नर्मदा पार्क मंगलबेड़ा से अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल एवं नदीम पटेल, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया एवं नमन ढींगिया, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गांवड़कर, सरिता, प्रणिता, सिद्धांत एवं टुकटुक गांवड़कर, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर एवं साजिद शाहिद, ग्राम सिद्धमा बाजारपारा जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका, शिवांश, राम भरोसे पैकरा, नरेश सिंह एवं परिवार के सभी सदस्य। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म इंतहा से। आवाज़ है सोनू निगम एवं श्रेया घोषाल की, संगीत निर्देशन है अनु मलिक का और गीतकार हैं राहत इंदौरी।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में इंतहा फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल किया था हमारे श्रोता राजौरी गार्डन नई दिल्ली से ध्वनि और सानवी, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता एवं गीता, रायगढ़ से रोहित, जयलक्ष्मी, ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान एवं अबान अब्बासी, गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना, हसन एवं इब्राहिम, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार, जोई, यामिनी तिवारी एवं उषा तिवारी, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन, रोशनी एवं प्रियांशी, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा एवं गौरव शर्मा।

शर्मा, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम का अंतिम गीत। इसी के साथ कार्यक्रम ईमेल की गूंज समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन।

कार्यक्रम मन भावन में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज आपके साथ हूँ कार्यक्रम में मैं आपकी रेडियो साथी रितिका। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

किशोर कुमार की आवाज़ में अनुरोध फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीतकार थे आनंद बख्शी। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता कटघोरा चिरमिरी रोड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से नयनदास दीवान, शीला, ओम प्रकाश, रूपमणि, जयप्रकाश, प्रीति, सिद्धांत एवं परिवार के सभी सदस्य, ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, रियांश, गुड़िया एवं परिवार के सभी सदस्य, वसुंधरा विहार गोधनपुर से जयेश प्रसाद शुक्ल एवं परिवार के सभी सदस्य, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार एवं परिवार के सभी सदस्य, फुटानी चौक नारायण स्टेट से फुलेश्वरी देवी, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, आराध्या एवं ललन मिश्रा, मिसर मोहल्ला नारायण बाजार से बीके मिश्रा, लल्लू पंडित एवं विनय सुर गनैया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जीवा फिल्म से। आवाज़ है आशा भोसले एवं अमित कुमार की, संगीत निर्देशन है आर डी बर्मन का और गीतकार हैं गुलजार।

जीवा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन में। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता कासम कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से यूनस खत्री, शफी, इंद्रिस, नूर मोहम्मद, कासिफ, हासिम, इरफान, मीना एवं परिवार के सभी सदस्य, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबिता, निखिल, अंकित, मोनी एवं परिवार के सभी सदस्य, अंबिकापुर से राकेश श्रीवास्तव, महिमा, नितिन, सोनू, वंदना एवं परिवार के सभी सदस्य, अंबिकापुर से ही राजकुमार नेभवानी, संगीता, आकाश, पप्पू, हेमलता, पूजा, सीता, प्रभा, सविता, सागर, आयुषी एवं परिवार के सभी सदस्य, ग्राम मुथली पोस्ट थाना चांदनी बिहारपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से लक्ष्मण, गोलू, दीपू, ललित, सतीश, संदीप, प्रदीप, रामसेवक, श्याम, कार्तिक, सुरेश, अरविंद, रेणु, चंदा, रीना, हीना एवं परिवार के सभी सदस्य। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन भावन की अगली प्रस्तुति के रूप में हीरा पन्ना फिल्म का ये गीत। आवाज़ है किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर की, संगीत निर्देशन है आर डी बर्मन का और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

कार्यक्रम हीरा पन्ना से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता जसपुर नगर छत्तीसगढ़ से परमानंद नागदेव, मालती कुमारी सोनाली, मयंक अनिमेश एवं असल नागदेव। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, करण, गीतू, निहारिका, वंश एवं परिवार के सभी सदस्य। इस्लामापुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, रमेश गौण एवं मोहम्मद शादाब खत्री। बिलरगांव से हवा से मिथिलेश देवांगन, मधु, हिमांशु, अंकित एवं परिवार के सभी सदस्य। बेरड़ी से हुकुम कमरकर, सुनीता, हार्दिक एवं तनु कमरकर। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत जूली फिल्म से। आवाज़ है किशोर कुमार की, संगीत निर्देशन है राजेश रोशन का और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

जूली फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन की आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता ग्राम पंचौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक एवं आराध्या। नवागढ़ कटई छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांता, सीमा शारदा एवं दामिनी वर्मा। शिवाजी चौक राजीव से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी एवं लवी श्रीवास्तव। इसी के साथ कार्यक्रम मन भावन बस यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी समाचार, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित

0: इस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशियाई की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education,